एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 और 35 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिली किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई OMR शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE

0: जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

शांत और निर्मल हृदय परमार्थ के लिए आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के द्वेष से भरे हृदय में परमात्मा के आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? हमारा शरीर एक मंदिर के समान है, इस मंदिर को प्रभु के रहने योग्य बनाना चाहिए। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रभु के अनेक नाम हैं। सच्चे मन से हम जिस नाम से भी प्रभु को याद करते हैं, उसी रूप में प्रभु हमारी रक्षा करते हैं और भवसागर से पार लगाते हैं।

श्रद्धापूर्वक आचरण में लाए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है, श्रद्धा से ही प्रभु संतुष्ट होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। डीजे सुनिए श्री रामचरितमानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 152।

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल

होकर माता मुझे याद करें, तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खो, रीछ बाघ भेड़िये सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिली किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:40 पर सुनिएगा हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम शुभ प्याग। 8:30 पर आप सुनेंगे गाने सुहाने। स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुन सकेंगे सुबह 9:00। विषय रहेगा उच्च रक्तचाप, कारण, लक्षण और बचाव। मानव औषधि विशेषज्ञ डॉक्टर कविता ठाकुर से विषय संबंधी प्रश्न पूछने हेतु स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। सुबह 10:00 हम लेकर आएंगे कार्यक्रम गीतों का कारवां। पहाड़ों के सुर ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। 11:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम साहित्य सुमन। तराने मन के कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 11:30। 12:00 सैनिक भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे सैनिकों के लिए। 12:30 पर

होगा नन्हे श्रोताओं का कार्यक्रम बाल सभा। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनिएगा फिल्मों से भजन। वीकली पल्स ये विषय है आज की युवा मंच कार्यक्रम का। सुनिएगा शाम 5:25 पर। शामे गजल ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 6:05 पर। 6:30 पर महिला साथियों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा प्रसारित किया जाएगा। 7:10 पर किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे खेती बाड़ी। सबरस कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:00। 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्म निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। आकाशवाणी शिमला से 9:20 11:00 3:00 शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिली किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से ही हम रिली करेंगे रविवासरीय संगीत सभा 10:00 से 11:00 तक। आकाशवाणी दिल्ली से रिली किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा 8:00 समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 1:00 शाम 5:00 7:00 और 11:00 हिंदी में समाचार। 1:05 शाम 5:05 7:05 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News at 9.

तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: विंशतिः प्रतिशतम् इथेनाल् मिश्रणस्य उपलब्धिं भारतस्य अत्यन्तं परिणामी नीतिसफलतासु अन्यतमम् इति कथयन् सः अवदत् यत् एतेन उपक्रमेण कृषककल्याणं ग्रामीणविकासः सहकारीयसंस्थाः ऊर्जासुरक्षा पर्यावरणस्य स्थायित्वं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु युगपत् औन्नत्यं दृष्टम्। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया समीक्षार्थम ओएमआर पत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य विषये छात्राणां अभिभावकानां च कृते सचेतक पत्रं प्रकाशितम्। एनटीए इत्यनेन प्रकाशितं यत् अद्यतनकाले समीक्षार्थं प्रदत्तानि बहूनि ओएमआर पत्राणि कृत्रिमाणि प्राप्तानि। एनटीए इत्यनेन उक्तं यत् प्राप्तस्य प्रत्येकस्य पत्रस्य सक्रियरूपेण परीक्षणं क्रियते, परन्तु यदि कृत्रिमं अथवा एआई जनितानि ओएमआर पत्राणि प्रस्तूयन्ते तर्हि गभीराः न्यायिकपरिणामाः भवितुम् अर्हन्ति इति सचेतना दत्ता। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऐषमः दशमकक्षायाः द्वितीय बोर्ड परीक्षायाः परिणामः घोषितः। ये छात्राः द्वितीय बोर्ड परीक्षां लिखितवन्तः ते डिजी लॉकर रिजल्ट इत्यस्य माध्यमेन तेषां परिणामान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः अनुशंसानाम् अनुरूपं सीबीएसई संस्थया दशमकक्षायाः कृते अस्मात् वर्षात् बोर्ड परीक्षाद्वयं प्रवर्तितमासीत्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः एस्टोनिया देशस्य आधिकारिक यात्रायाः समये टेलिन नगरे भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चं संबोधितवान्। अस्मिन् अवसरे सः व्यापारे निवेशे नवीनतायां प्रौद्योगिक्यां च गहन सहकार्यस्य आह्वानं कृतवान्। मञ्चे द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यस्य सुदृढीकरणाय नूतनानां मार्गाणाम् अन्वेषणार्थम् उभय देशानां वरिष्ठ सर्वकारीय प्रतिनिधयः उद्योगनेतारः व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य च सदस्याः एकत्र आगताः सन्ति। जम्मू कश्मीरे श्री अमरनाथजी यात्रा प्रतिकूल ऋतोः पूर्वानुमानं दृष्ट्वा पहलगाम बालताल इति द्वयोः मार्गयोः अपि अद्यारभ्य स्थगिता जाता। एकः अधिकारी अवदत् यत् भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन यात्रिकाणां सुरक्षां कल्याणञ्च सुनिश्चित्य आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु ऋतोः प्रतिकूलतायाः पूर्वानुमानस्य अनन्तरं एषः निर्णयः कृतः। अधिकारी अवदत् यत् यावत् अग्रिम आदेशः न भवति तावत् बालताल नूनवान चंदनवारी आधारशिला शिभरात् यात्रीणाम् अग्रे गमनस्य अनुमतिः न भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जाँच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने

0: खातों में सीधे 1408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मायामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency NTA has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. The NTA stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or AI-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through the DigiLocker results portal. In line with the recommendations of the National Education Policy, the CBSE had introduced 2 board examinations for Class 10 from this year. The main board examination was conducted from 17th February to 11th March, followed by the second board examination from 15th May to 21st May this year. The CBSE said that the overall pass percentage after combining the results of the main and the second board examinations of this year was 96.78%. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal addressed the India-Estonia Business Forum in Tallinn during his official visit to Estonia, calling for deeper collaboration in trade, investment, innovation and technology. The forum brought together senior government representatives, industry leaders and business delegations from both countries

0: सुबह सुहानी।
1: दोस्तों नमस्कार, सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत विचार के साथ। आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया उसने ईश्वर को मूर्तिमान कर लिया। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम ज्ञान की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब अपने जीवन में इन बातों को उतारने या उस ज्ञान को अपनाने की बात आती है तो हम किनारा कर लेते हैं, कल पर टाल देते हैं। वास्तव में यदि हम अपने से ही शुरुआत करें और ज्ञान को आचरण में लाएं तो अपने भीतर एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। यही परिवर्तन हमें ईश्वर के बताए मार्ग की ओर ले जाएगा।

ये दिन खास बन गया। 1995 की बात करते हैं। आज के दिन रूस और उससे अलग हुए गणराज्य चेचेनिया के बीच रूसी महासंघ में ही संप्रभु गणराज्य का दर्जा देने संबंधी समझौता संपन्न हुआ। 2001 की बात करें तो आज के दिन नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2003 में रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी माले थांको अंतरिक्ष में विवाह रचाने वाले पहले व्यक्ति बन गए। बात करते हैं वर्ष 2004 की। 3 बार टाले जाने के बाद विश्व के सबसे बड़े दूर संचार उपग्रह को लेकर एरियन 5 फ्रेंच युगाना से कोरू प्रक्षेपण केंद्र से रवाना किया गया। किन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए आपको बता देते हैं। 1827 में आज के दिन जन्म हुआ था महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का। इनके विषय में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। पहले आपको बता देते हैं वर्ष 1900 में किन का जन्म हुआ। 1900 में जी हाँ, जन्म हुआ था महान स्वतंत्रता सेनानी, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के महान नेता और साहित्यकार खूबचंद बघेल का जन्म हुआ। आज के दिन 1938 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म हुआ। साथ ही आपको बता दें कि महान हस्तियों के निधन आज के दिन हुए। 1988 में आज के दिन निधन हुआ था महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी राजीव संधू का। बात करें वर्ष 2018 की तो आज के दिन हिंदी साहित्यकार, शिक्षक और गीतकार गोपाल दास नीरज का निधन हुआ। जी हाँ दोस्तों, गोपाल दास सक्सेना एक भारतीय कवि, गीतकार और साहित्यकार थे जिन्हें हम नीरज के नाम से भी जानते हैं। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जन्मे नीरज हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में निपुण थे। लेखन के अलावा उन्होंने एक महाविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। गोपाल दास नीरज ने चा चा चा, कन्यादान, मेरा नाम जोकर, प्रेम पुजारी, शर्मीली, गैम्बलर और तेरे मेरे सपने जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे जो बेहद लोकप्रिय हुए। भारत सरकार द्वारा 1991 में उन्हें पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनकी कविताओं के संग्रह का नाम काव्यांजलि है जो वर्ष 2014 में प्रकाशित हुआ था। 19 जुलाई 2018 आज के दिन 93 वर्ष की आयु में गोपाल दास नीरज का निधन हो गया।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, आज 19 जुलाई है और आज के दिन को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन 19 जुलाई 1969 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बड़ा आर्थिक कदम उठाया था, जिसमें 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे पहले इन बैंक्स का नियंत्रण बड़े औद्योगिक घरानों के पास था, जिस कारण इनका लाभ केवल शहरों तक ही सीमित था। सरकार का मुख्य लक्ष्य वित्तीय समावेश, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना था। इसके बाद वर्ष 1980 में एक और चरण के अंतर्गत सरकार द्वारा 6 और निजी बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, आज 19 जुलाई है। महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई यानी आज के दिन 1827 को उत्तर प्रदेश की बलिया जिला के नगवा गांव में हुआ था। मंगल पांडे देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महानायक थे। मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री में सिपाही थे, जिन्हें तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने बागी करार दे दिया था। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की ये चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि भयंकर अग्नि रूप धारण कर समूचे उत्तर भारत में फैल गई। उनके द्वारा किया गया ये विद्रोह ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब शुरू करते हैं सिलसिला खबरों का। समाधान समारोह विशेष लोक अदालत 2026 सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाने के लिए 31 जुलाई तक करें आवेदन। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला के सचिव आर मेहुल शर्मा ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह एवं मध्यस्थता से निपटाने के लिए गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सुलह एवं मध्यस्थता से निपटाने की इच्छुक पक्षकारों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है।

जी हाँ दोस्तों, इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वन टॉप स्टॉप सेंटर से संपर्क किया जा सकता है, जिसके दूरभाष नंबर 0112311646, 0112311646, 0112311242 और 0112311252 हैं। इसके अतिरिक्त CRP निदेशक से दूरभाष नंबर 0112311556 पर भी संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने पर यात्रा पुनः आरंभ कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें, माता वैष्णो देवी यात्रा भी मौसम की खराबी के चलते अस्थायी रूप से रोक दी गई है। अगली सूचना तक आप यहां जाने के लिए इंतजार कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान चंबा, कांगड़ा और मंडी सहित 5 जिलों में प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 23 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका है, जिसके चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। लगातार होने वाली इस वर्षा से भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और नदी नालों के उफान पर आने का खतरा रहता है। ऐसे में पर्यटकों और अन्य स्थानीय निवासियों से सावधान रहने और नदी नालों के समीप ना जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। और दोस्तों, सुबह सुहानी कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत।
1: सुबह सुहानी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शुभ प्याग।

अभी आप सुन रहे थे देश गान FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात, और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिलीज किए जाएंगे।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर

0: नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी,
2: भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
1: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपा

0: सोनीपत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
1: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन की लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में

0: उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई। बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर। रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे। 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया। खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर। गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है, नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू। दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश। फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट कन्वीन्स ऑल पार्टी मीटिंग टुडे अहेड ऑफ मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिनिंग टुमारो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वॉर्न्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अगेंस्ट सबमिटिंग फेक और एआई जनरेटेड OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
3: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking firm steps to verify authenticity before proceeding with any rechecking requests. The advisory underscores the growing challenge posed by artificial intelligence in academic and administrative processes. With easy access to AI image generation tools, some individuals appear to be attempting to fabricate evidence to challenge exam results. The NTA has made it clear that such practices will not be tolerated and will invite strict legal action. Manik Sharma, Akashwani News, Delhi.
2: The Central Board of Secondary Education.

गाने सुहाने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के गाए आई मिलन की रात फिल्म के इस गीत के साथ। शब्द रचना है समीर की, संगीत आनंद मिलिंद का है।

0: Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
6: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
7: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर सूर्या फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था अलका याग्निक ने।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
3: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
4: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
3: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
5: Nexa.
6: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
7: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
8: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
9: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। यह आवाज है मोहम्मद अजीज की। निगाहें फिल्म का ये गीत है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, हम आपको याद दिला दें, सुबह 9 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम का विषय है उच्च रक्तचाप, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ डॉक्टर कविता ठाकुर से विषय संबंधी प्रश्न पूछने हेतु आपको डायल करना होगा स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर 01892224391। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मिस्टर आजाद फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

मिस्टर आजाद फिल्म के इसी गीत के साथ आज का गानी सुहाने कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने को हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।

0: नमस्कार श्रोता मित्रों, आरोग्यम कार्यक्रम के इस अंक में मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मानव शरीर में बहुत सी क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होती हैं। हमारा हृदय लगातार धड़कता है, सांसें चलती रहती हैं, हमारे गुर्दे लगातार रक्त को छानते रहते हैं, हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त का प्रवाह निरंतर बना रहता है। कई बार रक्त वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, ऐसे में समस्या आती है उच्च रक्तचाप से संबंधित, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। उच्च रक्तचाप, कारण, लक्षण और बचाव, यही विषय है आज के आरोग्यम कार्यक्रम का। इस विषय पर अधिक जानकारी और आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने हेतु आज आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर कविता ठाकुर, जो एक कुशल चिकित्सा अधिकारी हैं और खंड चिकित्सा अधिकारी शाहपुर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद संजीव जी, आपके रेडियो के श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: जी डॉक्टर साहब, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि उच्च रक्तचाप है क्या और सामान्य रूप से रक्तचाप कितना होना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उच्च रक्तचाप हम तब बोलते हैं या हाई ब्लड प्रेशर तब बोलते हैं जब नॉर्मल से हाई लेवल पे ब्लड प्रेशर जब हम नापते हैं तो उसकी रीडिंग आती है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है किसी का तभी बोलते हैं अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से कम आता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो

0: जो डायस्टोलिक है 80 और 85 के बीच में रह रहा है, तो इस केस में हम जब बोलेंगे कि हाई नॉर्मल रह रहा है, पर जब बार बार किसी का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो है 140 से ऊपर आ रहा है और डायस्टोलिक जो है वो 90 से ऊपर रह रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर है।
1: जी
0: तो ऐसे मरीज को हॉस्पिटल जाना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए और साथ में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया, लेकिन ये ब्लड प्रेशर जो है ये तो घटता बढ़ता रहता है, और आमतौर पर होता क्या है कि कई बार हम चल कर आते हैं,
0: बिल्कुल
1: दौड़ कर आते हैं, या कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन हम कर लेते हैं
0: जी
1: जिससे एकदम से बढ़ जाता है और
0: जी
1: बाद
0: जी
1: में कम भी हो जाता है।
0: जी
1: तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं और फ्लक्चुएशंस भी आती हैं। नॉर्मली भी अगर आप डे टाइम का ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू रात का ब्लड प्रेशर।
1: जी
0: रात को ब्लड प्रेशर थोड़ा कम ही रहता है और इसको हम नॉर्मल डिपिंग बोलते हैं ब्लड प्रेशर की। सेकंड चीज़ है, जब भी किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है या फिर कुछ लक्षण आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में जब आता है तो पहले उसको आके 3 से 5 मिनट के लिए डॉक्टर
1: बिठाया
0: के
1: जाता
0: कैबिन
1: है।
0: के बाहर बैठना चाहिए।
1: जी।
0: उससे पहले चाय का सेवन नहीं होना चाहिए, कॉफ़ी का सेवन नहीं होना चाहिए और जो ब्लैडर है वो भी खाली होना चाहिए,
1: जी
0: रिलैक्स्ड होना चाहिए, फिर आकर ब्लड प्रेशर जो है डॉक्टर के पास जो है वो चेक कराएं। और चेक ऐसा नहीं है कि एक बार हमने चेक किया तो हाई रीडिंग आ गई है तो दैट मींस कि वो उसका ब्लड प्रेशर हाई है। हम रिलैक्स करा के पेशेंट को बिठाते हैं, एक रीडिंग ले ली, थोड़ी देर रिलैक्स कराया, 2 या 3 रीडिंग्स लेनी है।
1: जी
0: 3 रीडिंग्स लेने के बाद अगर हमें लगता है कि फर्स्ट रीडिंग को हम एक्सक्लूड कर देंगे, जो सेकंड थर्ड रीडिंग्स आएंगी उसका हम मीन लेंगे, उसमें अगर लगता है कि वो हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ रहा है तो हम उसको रख लेंगे कि क्वेरी हाइपरटेंशन है।
1: जी
0: सेकंड चीज़ ये है कि एक हम उसको ऑप्शन ये दे सकते हैं कि घर में अपना 2-4 दिन तक अपना जो ब्लड प्रेशर है वो चेक करें, रेगुलरली
1: जी
0: चेक
1: जी जी
0: करें, या फिर पास के किसी स्वास्थ्य केंद्र में रेगुलरली, जिस तरीके से मैंने बताया
1: जी
0: है कि
1: रेगुलरली में ये कितने दिन के
0: हर
1: अंतराल के बाद?
0: पहले 4-5 दिन तो रोज़ कराएं
1: जी।
0: जाके, है ना, तो उसकी रीडिंग जो है वो लिख लें।
1: जी डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड प्रेशर है ये उम्र के हिसाब से भी घटता बढ़ता है?
0: जी, उम्र के साथ जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है,
1: जी
0: क्योंकि उम्र के साथ जो हमारी आर्टरीज हैं, जो धमनियां हैं, उनकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, वो उस तरीके से जो है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं जैसे कि एक नॉर्मल मतलब बच्चे की हैं या यंग एडल्ट की हैं, उस हिसाब से वो नहीं मतलब उनका फंक्शन कर पाती हैं,
1: जी
0: तो एज के साथ जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता जाता है।
1: जी श्रोताओं, उच्च रक्तचाप, कारण, लक्षण और बचाव, इस विषय पर यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। डॉक्टर कविता ठाकुर हमारे साथ हैं जो आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ देंगे। 01-892-224-391 ये है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। फोन नंबर एक बार फिर से सुनिए, 01-892-224-391। डायल कीजिए और हमसे बात कीजिए, अपनी जिज्ञासाएं शांत कीजिए उच्च रक्तचाप के बारे में।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
1: लगता है एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
5: हेलो।
1: जी, नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
5: जो है ना, नाम मेरा
1: जी कहाँ से बोल रहे हैं?

0: जी कहिए, क्या पूछना चाहती हैं?
1: सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कभी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो कभी लो, तो इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या होगी?
0: जी ये पूछना चाह रहे हैं कि कभी बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर,
1: हाँ
0: कभी
1: जी,
0: कम
1: हाँ
0: हो
1: जी,
0: जाता
1: हाँ
0: है, तो ये किस वजह से होता है?
1: जी, सर।
2: अगर ये दवाई ले रहे हैं, कोई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अगर दवाई ले रहे हैं और उसके बाद लो होता है, तो कृपया अपने डॉक्टर से दोबारा जांच कराएं। हो सकता है कि दवाई की जो डोज़ है वो एडजस्ट करनी पड़े या फिर दवाई चेंज करनी पड़े।
0: जी और कुछ
1: लेकिन
0: पूछना
1: उनके
0: चाहेंगी?
1: जो जिसे मारते हैं ना, वो तो कभी दूसरी मशीन है, वो पंप करने वाली नहीं, दूसरी, तो उसमें आप भी बताता है
0: जी आप कार्यक्रम को
1: जी।
0: ध्यान से सुनिए, इस बारे में हम कार्यक्रम में आगे बात करने वाले हैं। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जी दोस्तों, आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, 01-892-224-391 यह है स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। डॉक्टर साहब, कारणों की बात करते हैं, क्या कारण रहते हैं कि रक्तचाप जो है वो बढ़ जाता है?
2: जी, रक्तचाप बढ़ने के कारण हैं, एक तो हम लाइफस्टाइल से रिलेटेड कारण ले सकते हैं। लाइफस्टाइल में जैसे हमारी अगर फिजिकल एक्टिविटी है वो हमारी बहुत कम है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है जिसमें हम बैठे रहते हैं, एक कारण वो है। दूसरा है मोटापा, मोटापा जो है बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर रहता है।
0: जी
2: स्मोकिंग है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो इसके ये ज़्यादा रिस्क पर हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के। अल्कोहल, सेकंड चीज़, कुछ एक हम दवाइयाँ लेते हैं वो भी हम हमारा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा सकते हैं। आजकल नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है,
0: जी
2: वो
0: बिल्कुल, और
2: जो,
0: इसके
2: हाँ
0: लिए तो
2: जी
0: सरकार अपने तरीके से इस
2: बिल्कुल
0: कर
2: बिल्कुल,
0: रही है
2: हाँ जी,
0: तैयारियां।
2: हाँ जी। डाइट, आप डाइट जो है उसमें अगर आपका सोडियम कंटेंट, नमक ज़्यादा है, वो एक बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर होने का।
0: जी
2: अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल जो है, मतलब जिसको हम डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर हाई रहने का।
0: जी डॉक्टर साहब, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? सांस फूलता है या सर में दर्द होता है? किस तरह के लक्षण आते हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है?
2: ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एक, हम उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। 90% केसेस में पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होते, उसे तभी पता चलता है जब वो किसी कारणवश हॉस्पिटल जाता है और अपनी जांच करवाता है, तब कई लोगों को तो तब पता चलता है कि हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर हाई है। बाकी जो कुछ ही केसेस हैं उसमें लक्षण हो सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, छाती में दर्द होगी, कईयों को देखने में प्रॉब्लम आती है, मतलब कि जो ब्लड हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आना शुरू होती हैं, तब जाके जो व्यक्ति है वो हॉस्पिटल जाता है और जब जांच में पाया जाता है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है।
0: जी किस आयु वर्ग में ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है?
2: पहले जो हमारी स्टडीज़ होती थी उसमें था कि जो हमारे एल्डरली हैं, हाई जो, मतलब 40-50 से ऊपर जो हैं, वो ब्लड प्रेशर हाई होने के ज़्यादा चांसेस हैं।
0: जी
2: पर आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से हमारे पास यंग यंग पेशेंट भी आते हैं, 18-18, 20-20 साल के बच्चे भी आते हैं हमारे पास जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है।
0: जी
2: और इस संदर्भ में ये है कि 18 साल से ऊपर जो भी हैं उनको साल में अपना एक आध बार जो है ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए।
0: जी
2: और गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोग्राम के अंडर जो है वो 30 साल से ऊपर तो रिकमेंडेड है कि उनका ब्लड प्रेशर हो गई होगा चेक।
0: जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
3: हेलो,
0: जी, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश कानपुर के पास से, कानपुर से बात कर रहा हूँ।
0: जी, कार्यक्रम का विषय आपको मालूम है? आज हम बात कर रहे हैं उच्च रक्तचाप, कारण, लक्षण और बचाव, इस विषय पर। और डॉक्टर कविता ठाकुर हमारे साथ हैं। बीपी से यानी ब्लड प्रेशर से संबंधित यदि कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ सकते हैं।
3: बीपी से, तो
0: जी
3: बीपी भी जिनको ज़्यादा नमक खाते हैं, कम खाते हैं, तो बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो इस मामले में जानता हूँ।
0: जी आपने कभी कराया है? कितनी उम्र है आपकी?
3: 24,
0: 24। कभी कराया है
3: अभी
0: चेक आपने? कभी लक्षण आए हैं कोई?
3: तो नहीं कराया।

0: जी, घर में कोई मरीज तो नहीं है बीपी का?
1: वो थायराइड वाले हैं।
0: जी, चलिए अच्छी बात है, होने भी नहीं चाहिए। और कार्यक्रम को आप ध्यान से सुनिए। जी, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हम उम्र आयु वर्ग की हम बात कर रहे थे, और कहीं ना कहीं खान पान की अगर हम बात करें तो आजकल जो फास्ट फूड का चलन है या एक जगह पर बैठे रहना, एक्सरसाइज ना करना,
2: जी
0: युवाओं में ये भी एक बड़ा कारण हो सकता
2: बहुत
0: है।
2: बहुत बड़ा कारण है ये।
0: जी हेलो जी, एक श्रोता जुड़ना चाहते थे, लगता है संपर्क टूट चुका है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि उच्च रक्तचाप जो है ये अनुवांशिक होता है या किसी भी इंसान को हो सकता है?
2: अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है तो उस व्यक्ति को जो है वो रिस्क ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई होने का रिस्क ज़्यादा है। जी
0: जी, शुरुआत में जब ये सभी लक्षण लेकर, सांस फूलना या सिर में दर्द है, आंखों में धुंधला दिख रहा है, ये लक्षण लेकर कोई मरीज आपके पास आता है तो किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, क्या उसके साथ किया जाता है?
2: जी, अगर ऐसे लक्षण के साथ कोई भी व्यक्ति आता है तो सबसे पहले उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है कि लक्षण कब से हैं और कैसे डेवलप हुए। रिलैक्स कराया जाता है। नेचुरली जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उस पेशेंट के एक तो पास्ट के बारे में, हैबिट्स के बारे में, उसके लक्षणों के ड्यूरेशन के बारे में हम डिटेल में जानते हैं, और बात करते करते पेशेंट जो है वो रिलैक्स हो जाता है।
0: जी,
2: जब हम उसको एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर और उसकी पल्स यही देखते हैं।
0: जी
2: जी, और मान लिया कि इस लक्षण के साथ कोई पेशेंट आता है और उसका हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको हम फर्दर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, ECG करा लिया, जो बेसिक ब्लड टेस्ट हैं उससे रिलेटेड किडनी के टेस्ट हो गए, लिवर के हो गए, साथ में जो हमारा लिपिड प्रोफाइल होता है, ये सारे टेस्ट, आँखों की एग्जामिनेशन कराते हैं, इसमें हार्ट के लिए देखते हैं। क्योंकि अगर मान लिया कि इस लक्षण के साथ, हाई ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट आता है तो हम ये सोच के चलते हैं कि शायद उसके जो टारगेट ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं।
0: जी
2: जी,
0: तो ऐसे में आपने बताया कि आँखों पर प्रभाव पड़ता है, किडनीज पर भी प्रभाव पड़ जाता है, या फिर हृदय संबंधी रोग उसको हो सकते हैं।
2: मस्तिष्क, जी,
0: तो दवा कब से शुरू हो जाती है?
2: कॉम्प्लिकेशंस के साथ ऐसे लक्षणों के तो उस टाइम पे हम शुरू कर देते हैं दवाई।
0: जी, डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जब शुरुआत में मरीज आता है और उसको ये मालूम हो जाता है कि मुझे उच्च रक्तचाप हुआ है, और दवाई की बात जब आती है तो वो दवा लेना नहीं चाहता, क्योंकि कई बार ये भ्रांतियाँ होती हैं कि एक बार दवा शुरू हो गई तो उसके बाद ये उम्र भर लेनी पड़ेगी, तो वो कुछ अन्य जो देसी इलाज जिसको बोलते हैं उसकी तरफ बढ़ जाता है। ऐसे में कितना खतरा है?
2: देखिए, मैक्सिमम लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं और फर्स्ट टाइम आते हैं तो वो हमेशा डिनाइल में होते हैं कि नहीं, एक तो हमें ब्लड प्रेशर हाई हो नहीं सकता।
0: जी,
2: उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। सेकंड, उनका क्वेश्चन यही होता है जो आपने पूछा है कि क्या ये दवाई उम्र भर खानी पड़ेगी। तो मेरी सीधी सी एडवाइस है कि वो हाइपरटेंशन के लिए जो हम दवाई देते हैं वो उसको कंट्रोल करता है, उसको क्योर नहीं करता है कि दवाई खाई और वो बीमारी बिल्कुल ठीक होगी।
0: जी,
2: जब तक आप दवाई खाएंगे तब तक कंट्रोल रहेगा ब्लड प्रेशर।
0: जी,
2: और वो उम्र भर खानी ही पड़ेगी। उसकी डोज कम या ज़्यादा या चेंज हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि बंद हो जाए कि महीना भर दवाई खाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया। और बहुत सारे लोग पेशेंट आते हैं ऐसे, एक महीना भर दवाई खा ली फिर दो तीन महीने आएंगे नहीं। जी नहीं, वो तो आपने एक महीना बोला था हमने खा ली,
0: जी, जी,
2: उसके बाद
0: तो उसके बाद ठीक हो गया तो छोड़ दी दवाई अपनी मर्जी से।
2: जी,
0: लेकिन
2: जी,
0: ये
2: जी,
0: बहुत घातक सिद्ध हो सकता है।
2: बिल्कुल घातक है। देखिए, ऐसा है कि ब्लड प्रेशर जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे जो है हमारे टारगेट ऑर्गन होते हैं जैसे गुर्दे हैं, हृदय है, आँखें हैं, हमारा ब्रेन है, इसके ऊपर धीरे धीरे जो है वो उसके दुष्प्रभाव आना शुरू हो जाते हैं अगर कंट्रोल नहीं रहे।
0: जी,
2: ठीक है। तो जैसे ब्रेन का है, कई बार मरीज हमारे पास आता है कि जी एक साइड बाजू नहीं चल रही है, टांग नहीं चल रही है, मुंह टेढ़ा हो गया है। ठीक है, कई बार ऐसे भी आता है दिख नहीं रहा है पेशेंट को।
0: जी, कई बार नाक से खून,
2: नाक से खून आना शुरू हो जाता है,
0: आंखें लाल हो जाती हैं बहुत ज़्यादा।
2: हाँ जी,

0: कई बार तो ऐसे भी आते हैं फर्स्ट टाइम मरीज जिनके किडनी के ऊपर इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ गया होता है कि वो एंड स्टेज किडनी डिजीज़ की तरह उस रूप में जो है वो प्रेजेंट करते हैं।
1: जी, तो देखिए दोस्तों, कितना घातक हो सकता है ब्लड प्रेशर होने पर दवा ना लेना। इस विषय पर आगे और भी बातें करेंगे। अभी वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के 5 जिले अगले 4 माह में हेलीपोर्ट सुविधा से जोड़े जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं 2026 की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम किया घोषित। प्रदेश में मौसम ने ली करवट। मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। संसद का मॉनसून सत्र कल से होगा शुरू, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और खराब मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध श्री अमरनाथ जी यात्रा व श्री वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल स्थगित की गई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों को हेलीपोर्ट नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। कल चंडीगढ़ में लीडरशिप कॉन्क्लेव और 23वीं वार्षिक आम बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के 5 जिले अगले 4 माह में हेलीपोर्ट सुविधा से जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे चंडीगढ़ से शिमला और चंडीगढ़ से पालमपुर के बीच आवागमन और अधिक सुगम व सुविधाजनक हो जाएगा।
1: सारे ही 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे हेलीपोर्ट से अगले 4 महीने में जुड़ जाएंगे। यानी कि चंडीगढ़ से शिमला आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से 20 मिनट में पहुंच जाओगे, आप 50 मिनट में चंडीगढ़ से पालमपुर पहुंच जाएंगे। 2-3 सालों में आप पूरे हिमाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखेंगे। तो ये सब चीजें चेंजिंग की दृष्टिकोण से हो रही है। हमारा एक गोल है कि हम सेल्फ रिलायंट स्टेट बनना चाहते हैं और बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। CBSE के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। बोर्ड ने यह भी बताया कि विदेशों में स्थित CBSE से संबद्ध स्कूलों के छात्र भी अपने परिणाम और डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज डिजी लॉकर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से रात भर से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रदेश में मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा व शिमला जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी बारिश से का रेड अलर्ट जारी किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया।

0: है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच किन्नौर जिले के सांगला घाटी में कल शाम बादल फटने से मस्तरंग के पास गार्गी नाले में बाढ़ आ गई, जिससे सांगला छितुर्ग सड़क बंद हो गई। वहीं आईटीबीपी कैंप से गुमटी और मंदिर बहने का समाचार भी हुआ है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि मेले व त्यौहार हमारी संस्कृति पहचान के भिन्न अंग हैं। शिमला जिला के जुब्बल क्षेत्र के 3 दिवसीय जिला स्तरीय रामपुरी जातर मेले के समापन अवसर पर उन्होंने समृद्ध संस्कृति व परंपराओं के संरक्षण के लिए सांझे प्रयासों पर बल दिया। रोहित ठाकुर ने बताया कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से करीब 550 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य प्रगति पर हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। केंद्र प्रायोजित एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत जनजातीय जिला किन्नौर में किसानों और बागवानों की आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा हाइब्रिड सब्जियों व प्याज लहसुन के उत्पादन पर 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन से किसानों को पारंपरिक खेती की तुलना में बेहतर आय प्राप्त हो सकेगी और इससे स्थानीय स्तर पर बीज उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: योजना के अंतर्गत टमाटर, गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, ब्रसलर स्प्राउट, बीन्स, हरा मटर, शिमला मिर्च, करेला, गाजर, मूली, चुकंदर, शलगम, नोलखोल सहित अन्य सब्जियों के उत्पादन के लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक सहायता मिलेगी। प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए की स्वीकृत लागत पर 80% यानी अधिकतम 24,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक परागण वाली प्याज एवं लहसुन की फसलों के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए की लागत पर अधिकतम 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान का प्रावधान है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से रोक दी जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम के अनुमान के बाद तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। इधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। सिरमौर जिले के नाहन में भगवान जगन्नाथ जी की 18वीं रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस रथ यात्रा को लेकर शहर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। संत हरिवल्लभ ने बताया कि रथ यात्रा को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु सड़कों के किनारे फूल लेकर रथ यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं और भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के रथ पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि आयोजन समिति की ओर से रथ यात्रा के दौरान स्वच्छता और व्यवस्थाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
3: हिमाचल में जब यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है तो ऐसी फीलिंग आती है हम जगन्नाथपुरी में। हाँ, सिर्फ ये फर्क होता है कि यहाँ पे एक रथ में बलदेव, सुभद्रा, जगन्नाथ होते हैं, वहाँ पे 3 रथों में होते हैं। यहाँ पे अगर हजारों में है तो वहाँ लाखों में, और भक्तों का बड़ा उत्साह रहता है, पूरा शहर इन्वॉल्व रहता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे रथ के पीछे कुछ यूथ होता है, उनका काम ये है।

0: जो पीछे हमारा वेस्टेज पड़ी होती है वो गंदगी कोई रहे ना, वो साथ साथ में उसको उठा, तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है सोसाइटियों की। अगर आप सनातन धर्म का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो समाज में पीछे गंदगी ना दिखे।
1: और अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। हिमाचल दस्तक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, हमीरपुर में 300 करोड़ से बनेगा डेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर। दैनिक जागरण के शब्द हैं, राजीव गांधी के नाम पर होगा डेंटल कॉलेज शिमला। दैनिक भास्कर की एक खबर है, शिक्षा विभाग में आउटसोर्स भर्ती पर रोक, अब वित्त विभाग की मंजूरी के बाद होगी। मौसम पर अमर उजाला का शीर्षक है, सांगला में बादल फटा, आईटीबीपी कैंप से गुमटी व मंदिर बहा। दिव्य हिमाचल के अनुसार, मॉनसून सीजन का पहला रेड अलर्ट, प्रदेश के 5 जिलों में 20-21 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी एडवाइजरी जारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के 5 जिले अगले 4 माह में हेलीपोर्ट सुविधा से जोड़े जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं 2026 की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम किया घोषित। प्रदेश में मौसम ने ली करवट, मौसम विभाग ने 22 जुलाई तक राज्य के अधिकांश भागों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। संसद का मॉनसून सत्र कल से होगा शुरू, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और खराब मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध श्री अमरनाथ जी यात्रा व श्री वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल स्थगित की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
3: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
2: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
3: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद आरोग्यम कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आरोग्यम कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं उच्च रक्तचाप कारण लक्षण और बचाव विषय पर। हमारे साथ हैं मानव औषधि विशेषज्ञ डॉक्टर कविता ठाकुर। 01892224391 यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं जी, लगता है संपर्क टूट चुका है, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, बात हम कर रहे थे किन किन अंगों पर प्रभाव डालता है उच्च रक्तचाप, तो बात मधुमेह की जब आती है या हृदय संबंधी रोगियों की जब बात आती है तो कितनी संभावना रहती है उच्च रक्तचाप होने की?
5: जी, जो डायबिटीज या मधुमेह के जो मरीज होते हैं उनमें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये दोनों जो हैं वो बीमारियां साथ साथ चलती हैं मैक्सिमम लोगों में।
4: जी
5: जी,
4: यानी ये ज़रूरी है कि अगर कोई मधुमेह से पीड़ित है या हृदय संबंधी रोगी है तो उसको ब्लड प्रेशर होना ही होना है।
5: होना ही होना है
4: जी। और या फिर जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उसे भी भविष्य में ये सब होने की संभावना रहती है?
5: रहती है।
4: साथ में जो किडनी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है या आँखों से संबंधित प्रॉब्लम है ये भी रहती हैं।
5: जी जी
4: जी, तो ऐसे में नियमित रूप से जांच कराना बहुत ज़रूरी है।
5: बहुत ज़रूरी है। जब भी जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, अब जब भी अपने चेकअप के लिए जाते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाएं।
4: जी डॉक्टर साहब, आँखों की बात करते हैं तो कई बार जब धुंधला दिखता है तो क्या ये सामान्य होता है या रेटिना पर भी प्रभाव पड़ सकता है?
5: जो ब्लड हाई ब्लड प्रेशर है वो रेटिना पे इस चेंजेस आते ही आती हैं, इसके दुष्प्रभाव पड़ते ही हैं।
4: जी,
5: और कई बार तो मरीज़ ऐसे आते हैं कि एकदम से दिखना धुंधला दिख रहा है या दिखना बंद हो गया है।
4: जी,
5: तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन के साथ भी मरीज़ आते हैं।
4: तो ऐसे में उनकी आँखों की रोशनी वापस आ सकती है?
5: वो डिपेंड करता है कि कितनी डैमेज हुई है।
4: जी,
5: मान लिया जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जब भी पहली बार वो डायग्नोज होते हैं तो उनको अपनी आंखों की जांच करवानी है। एक बेसलाइन जो है वो अपना फंडस की

0: एग्ज़ामिनेशन करानी है, रेटिना की जांच करानी है, और बाद में अपने डॉक्टर के सुझाव से 3 साल के बाद या साल के बाद, जैसे वो नियमित रूप से उनको बताते हैं, उनको अपने रेटिना की जांच करवानी है।
1: जी डॉक्टर साहब क्षमा चाहेंगे, एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो संजीव जी, नमस्कार।
1: जी। नमस्कार, नाम बताइए।
2: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव मेहतापुर से महेंद्र सिंह राणा।
1: जी राणा जी, कहिए, ब्लड प्रेशर की समस्या तो नहीं है आपको?
2: नहीं, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार सर।
2: देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ आदमी का जो रक्तचाप है
0: जी,
2: वो किस मतलब हद तक होना चाहिए, 120 से के ऊपर होना चाहिए या 100 मतलब 40 हो जाए तो क्या उसको बड़ा हुआ रक्तचाप
1: जी
2: कहते
1: राणा
2: हैं
1: जी,
2: या
1: लगता
2: कम
1: है
2: है?
1: आपने रेडियो सेट जो है वो देर से आज ऑन किया है, क्योंकि इस विषय में हम पहले भी बात कर चुके हैं।
0: जी, तो जो
2: हाँ
0: एक
2: जी, हाँ
0: जी जी
2: जी,
0: जी एक जो स्वस्थ आदमी है और कोई दवाई नहीं ले रहा है ब्लड प्रेशर के लिए, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 120-80 से कम ही होना चाहिए जी। अगर 140-90 होता है तो उसको अपनी ज़रूर जांच करवानी चाहिए, और अगर डॉक्टर उसको सलाह देते हैं तो उसके लिए मेडिसिन भी स्टार्ट करनी चाहिए
1: जी
0: जी
1: राणा जी, और
0: जी
1: कुछ
0: जी
1: पूछना चाहेंगे?
2: जी मैं इतना चाहता हूँ कि इसकी क्या मतलब मापदंड क्या होता है, यही जानना चाहता हूँ।
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ब्लड प्रेशर के लिए जो मापदंड हैं, जैसे वो अलग अलग सोसाइटी जो है डिसाइड करती हैं, जैसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हाइपरटेंशन है, और अमेरिका की जो है, अमेरिका जो कार्डियोलॉजी की एक काउंसिल होती है वो करती है, तो अलग अलग जो WHO की अलग से एक स्टैंडर्डाइजेशन होती है, तो इसके लिए जो मापदंड हैं कि दवाई शुरू करनी है या नहीं करनी है, नॉर्मल है, हाई नॉर्मल है या हाइपरटेंशन है, तो ये इन मापदंडों के आधार पर ही हम किसी मरीज को बोल सकते हैं कि उसको हाई ब्लड प्रेशर है जी।
2: ठीक है जी डॉक्टर साहब, बाकी तो सुनते रहेंगे कार्यक्रम में, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और देते भी रहेंगे। बहुत
0: जी
2: बहुत
0: धन्यवाद,
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद,
1: जी, बहुत बहुत
0: धन्यवाद सर।
1: शुक्रिया राणा जी, आपने कार्यक्रम में फ़ोन किया। इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग। श्रोताओ, आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, 01-892-224-391 यह है स्टूडियोज़ का टेलीफोन नंबर। आज कार्यक्रम में हमने जो विषय रखा है, उच्च रक्तचाप, कारण, लक्षण और बचाव। हेलो हेलो
3: जी राम राम जी।
1: जी, राम राम। रेडियो सेट से थोड़ा दूरी बना लीजिए या आवाज़ कम कर दीजिए उसकी। जी कश्मीर जी, कहिए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
3: सर मैं बीपी का मरीज हूँ, 70 ईयर ओल्ड है मेरी।
1: जी,
0: जी
1: कब से मरीज हैं आप?
3: तो ये तो 15 साल हो गए, कम से 15-16 साल, 2005 से।
0: जी जी
3: और दवाई खाते खाते मेरा बीपी 185-90 है,
0: जी जी
3: मेरी इससे कम नहीं होता है। तो मैंने डॉक्टरों से बात की, वो बोलते हैं इसका तो कोई नहीं कर सकते, एज के हिसाब से ठीक है भैया।
0: जी, आप अपने जो निकट जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या उनसे, डॉक्टर से परामर्श करिए जी, हो सकता है कि आपकी कोई दवाई जो है वो चेंज करनी पड़े। जब दवाई खा रहे हैं, जो व्यक्ति दवाई खा रहा है, तो दवाई के साथ जो उसका बीपी है वो 130 और 80 के नीचे ही रहना चाहिए। जी जी
3: मेरा नहीं
0: जी
3: कम नहीं होता है ना, कि मैंने उन्हें दवाई बदली भी उन्होंने तो
0: जी जी जी नहीं, आपको फिर से
3: पहले
0: हाँ जी
3: 10-15 साल, 10-12 साल में मैंने एक ही दवाई खाई ना जी,
0: जी जी
3: और
0: जी
3: डॉक्टर डॉक्टर धीरज ने लिखी थी मेरे को टांडा में 2005-06 में।
0: जी जी नहीं, आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर साहब से दवाई ले रहे हैं, आप दोबारा जाके चेक करा सकते हैं जी, और हो सकता है कोई दवाई बदल दें वो आपकी ना।
1: जी, और साथ ही
3: साल से बहुत
1: आपको
3: इसको शुगर
0: जी जी
3: शुगर की तो हो गई, शुगर की समस्या भी हो गई अभी
0: शुगर
3: साल
0: की
3: से।
0: समस्या भी है। हाँ जी हाँ जी, तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब दोनों बीमारियाँ एक साथ हो जाती हैं तो इनकी जो दुष्प्रभाव हैं वो बढ़ जाते हैं। जी,
1: जी, आप और कुछ पूछना चाहेंगे?
3: बस तो यही पूछना था भाई, ऐसे
1: जी
3: डॉक्टर से सलाह लेना पड़ी
1: जी
3: थी
1: देखिए, डॉक्टर
0: जी
1: साहब के पास
0: जी
1: आप जाइए और हो सकता है आपकी दवा को बदलना पड़े, और या फिर जो डॉक्टर साहब दवा के साथ साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें भी आप फॉलो कीजिए। व्यायाम करिए, खाने पीने पर अपना कंट्रोल रखिए, तो आप स्वस्थ हो जाएंगे।

0: जी शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, ये
1: जी
0: कई बार देखने में आता है कि दवा ले रहे हैं लेकिन उसके बाद भी ब्लड प्रेशर
1: जी
0: जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता।
1: जी जी इसमें ऐसा हो सकता है कि जो दवाई जैसे बताई है या तो उसको प्रॉपर ढंग से लिया नहीं जा रहा है,
0: जी
1: और उसके साथ आपने जैसे बताया है कि जो बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं
0: जी जी
1: कि रेगुलर वॉक है, आधा घंटा सैर करनी ही करनी है तेज़ तेज़ डेली,
0: जी
1: वो नहीं है। खाने पीने का जो है वो ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और नमक ज़्यादा है, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा हैं।
0: जी
1: और थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि जो दवाई है वो हो सकता है उसको चेंज करना पड़े या उसकी डोज को एडजस्ट करना पड़े,
0: जी
1: ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो ऑप्टिमम लेवल पे आ जाए।
0: जी डॉक्टर साहब, दवाई लेने का जो सही तरीका है वो क्या है? कई बार होता है कि सुबह उठते ही दवाई लेने की सलाह दी जाती है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: दवाई का वही तरीका जैसे डॉक्टर बताते हैं कि एक फिक्स टाइम होना चाहिए, कि मान लें कि सुबह 9 बजे ले रहे हैं तो अगले दिन भी 9 बजे ही लेने चाहिए।
0: जी
1: ऐसा नहीं है कि कभी सुबह ले ली कभी शाम को ले ली, उसका फिक्स टाइम नहीं है।
0: यानी एक बार जो आपने दवा
1: हाँ
0: ले
1: जी
0: ली
1: जी
0: उसका जो
1: जी
0: असर है वो 24 घंटे तक रहता
1: जी
0: है।
1: जी जी मैक्सिमम दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका 24 घंटे असर होता है,
0: जी जी जी
1: जो एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं।
0: जी
1: जी
0: और वॉक की आपने बात की है, ब्रिस्क
1: जी
0: वॉक यानी थोड़ा तेज़ चलना है, तो
1: जी
0: तेज़
1: जी
0: चलने पर कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, तो ऐसे में मरीज़ क्या करे?
1: नहीं ऐसा नहीं है। तेज़ वॉक मतलब कि इसमें आपको जो फिजिकल एक्टिविटी हम तभी समझेंगे कि फास्ट फास्ट चलें,
0: जी
1: आधा घंटा चलें और उससे मतलब पसीना आए, थकें,
0: जी जी
1: तब हम सोचेंगे कि नहीं जो मेटाबॉलिज्म है वो चलने से जो है वो बड़ा है और कुछ जो है वो एग्जॉस्ट हुआ है, आपका
0: जी जी
1: फैट
0: जी
1: या
0: जी
1: एनर्जी जो है वो उसमें लगी है। ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है,
0: जी जी
1: नहीं बढ़ता है
0: चलने से नहीं
1: उससे,
0: बढ़ेगा
1: नहीं बढ़ेगा।
0: जी। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि साथ में और
1: अगर
0: भी बहुत से रोग हो
1: बहुत
0: सकते हैं,
1: सारे
0: तो
1: चीज़ें
0: ऐसे में
1: हो
0: अपने
1: सकती
0: जी
1: हैं
0: शरीर की क्षमता
1: कि
0: के हिसाब से
1: हिसाब से
0: ही
1: ही
0: आप चलें तो
1: चलें।
0: ज़्यादा अच्छा
1: और
0: रहेगा।
1: सेकंड चीज़ ये है कि मान लिया चलने पे किसी को चेस्ट पेन होती
0: जी
1: है
0: जी
1: या
0: जी
1: सांस फूलती है तो चलना जो है वो बंद कर दें।
0: जी जी जी
1: हाँ जी मतलब बैठ जाएं, रेस्ट लें
0: जी जी
1: और
0: जी
1: उस अपना जो है एडवाइस लें अपने चिकित्सक
0: जी ये
1: से।
0: बहुत अच्छी
1: जी
0: बात आपने कही
1: जी
0: डॉक्टर साहब।
1: जी
0: कार्यक्रम में यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
2: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
3: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
2: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
3: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available.
2: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
2: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
3: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
2: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
3: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
2: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available.
2: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.70 lakh.
3: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.
0: ब्रेक के बाद आरोग्यम कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में जो विषय हमने लिया है, उच्च रक्तचाप, कारण, लक्षण और बचाव, ये है। और इस विषय पर जानकारी देने हेतु स्टूडियोज में हमारे साथ

0: मौजूद हैं डॉक्टर कविता ठाकुर। 01892-224-391 है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर, और एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नाम बताइए।
1: हरी सिंह राणा बोल रहा हूँ जी, दादी से।
0: जी राणा जी, बताइए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से।
1: मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि हाई बीपी एंड जो हार्ट बीटिंग है, इसमें जो रिलेशन आप बता रहे हैं, बीपी हाई होगा तो हार्ट बीटिंग भी ज्यादा होगी। दूसरी बात है कि जो शुगर पेशेंट है उनको क्या बीपी होना जरूरी है? मैं बीपी नहीं है मेरा, मेरा शुगर है, बीपी 130 और 80 रहता है, तो क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तीसरी बात ये कि गिरिराज सिंह जी कहाँ है आजकल?
0: हेलो जी, डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि बीपी के बारे में क्या।
2: जी जी जी, कि इनको शुगर है पर बीपी नॉर्मल रहता है।
0: जी जी,
2: तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सबको ज़रूरी है शुगर वाले पेशेंट को कि बीपी हो, शुगर वाले पेशेंट को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
0: जी जी,
2: क्योंकि शुगर के साथ जो है हमारे जो ब्लड में डिसलिपिडीमिया जो होता है, एक बुरी प्रकार के जो एक लिपिड्स होते हैं
0: जी जी,
2: उनकी मात्रा कॉन्स्टेंटली ब्लड में रहती रहती है, उसकी वजह से जो है वो धीरे धीरे हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनकी उन पे मतलब उसका दुष्प्रभाव रहता है
0: जी।
2: तो ओवर द टाइम मतलब जो है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के जो चांसेस हैं शुगर पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि इनको शुगर है पर ब्लड प्रेशर इनका कंट्रोल है, अभी इनको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है
0: जी।
2: पर ये जब भी जाएँ अपनी चेकअप के लिए तो अपना ब्लड प्रेशर हमेशा चेक करवाएं। अगर इन केस अगर हाई आता है तो फिर तो दवाई लेने की तो ज़रूरत है ही है। 130 80 से नीचे रहता है तो दवाई की ज़रूरत नहीं है, पर ये है कि ऑब्जर्वेशन में रखें, अपने फॉलोअप लेते रहें
0: जी, यानी डॉक्टर्स के संपर्क में रहें और नियमित रूप से जांच जरूर
2: करवाएं अपने। जी
0: जी डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड प्रेशर है जब बढ़ता है और पहले से मधुमेह भी है या हृदय संबंधी कोई रोग है या किडनी से संबंधित कोई रोग है
2: जी जी,
0: तो कितना घातक हो सकता है अगर कोई मरीज जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए दवाई ना ले पाए?
2: देखिए ऐसे जो मरीज हैं उनको अपने ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी ही पड़ेगी, नहीं है तो ये ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकता है। मान लिया कि कोई हार्ट का पेशेंट है, ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा है और ब्लड प्रेशर की दवाई साथ में, अगर ब्लड प्रेशर है और दवाई नहीं ले रहा है तो हार्ट के संबंधित जो बीमारी है उसके बढ़ने के ज़्यादा आसार हैं
0: जी।
2: वैसे ही किडनी का है, किडनी भी दो तरह की है, एक तो किसी मरीज़ को पहले से हाई ब्लड प्रेशर है और सालों के अंतराल के बाद धीरे धीरे उनकी जो किडनीज हैं उनके ऊपर असर होना शुरू हो गया और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही जो उनको किडनी की प्रॉब्लम आई है। तो ऐसे पेशेंट का तो देखिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ उसका मतलब आगे हम जो किडनी की जो प्रॉब्लम है वो ना बढ़े, उसके लिए उसका यही इलाज है कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। सेकंड ऑप्शन ये हो सकती है कि किसी पेशेंट को एकदम कोई किडनी की प्रॉब्लम है किसी दूसरी वजह से है, और क्योंकि किडनी जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है
0: जी।
2: तो जब किडनी अपने आप में जो फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन है वो होती है, और ऐसी हाइपरटेंशन जो है वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होती है और उसके लिए दवाइयाँ भी अलग होती हैं, वो किडनी के हिसाब से चलती हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, कई बार तनाव में इंसान होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है?
2: जी, तनाव जो है या स्ट्रेस है वो हमारे बॉडी के जो सिंपथेटिक सिस्टम होता है उसको वो एक्टिवेट करता है, और उसकी वजह से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो बॉडी में ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है
0: जी। और नमक की आपने बात की थी, नमक की सही मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितना नमक इंसान को लेना चाहिए कि वो ब्लड प्रेशर जैसे उचित रक्तचाप जैसे रोग से बच सके?
2: जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो नमक की मात्रा पर डे एक इंसान को 5 ग्राम
0: जी,
2: 5 ग्राम नमक या फिर जो है 2 ग्राम जो है

0: उसमें सोडियम जो होता है उतना जो पर डे रिक्वायरमेंट होती है, इससे अगर ज़्यादा कोई लेगा तो वो हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस है। अब बात करोगे कि अब 2 ग्राम को सोडियम को कोई कैसे
1: कैसे नापेगा?
0: नापेगा,
1: जी
0: तो एक जो छोटा चम्मच होता है ना उसमें जो नमक होता है उसमें अराउंड 2.3 ग्राम जो सोडियम होता है वो,
1: जी जी
0: तो मतलब पूरे दिन में है इतना नमक जो है उस, जो इतना अगर खाएंगे
1: जी
0: तो वो हमारा ब्लड प्रेशर के लिए मतलब हानिकारक नहीं होगा। उससे अगर ज़्यादा ओवरऑल खाएंगे
1: जी
0: तो फिर वो ब्लड प्रेशर पे इफ़ेक्ट डाल सकता
1: डाल
0: है।
1: सकता है। डॉक्टर साहब, कई बार भ्रांतियां होती हैं और कहा जाता है कि जो सेंधा नमक है या काला नमक है, इस तरह के नमक खाने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे?
0: नमक की जो क्वांटिटी है ना, देखो हम नमक में जो सोडियम है ना उसकी जो मात्रा है वो ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करती है।
1: जी
0: तो आई थिंक जो सोंधा, ये जो सेंधा नमक है या रॉक सॉल्ट और ये जो हम नॉर्मल सी सॉल्ट खाते हैं,
1: जी
0: सोडियम की क्वांटिटी सेम ही होती है,
1: जी जी
0: बस वो उसकी प्योरीफिकेशन प्योरिटी पे जो है वो फ़र्क होता है कि जो हम पैकेट्स में वो खा रहे हो ज़्यादा रिफाइंड उसमें होता है,
1: जी
0: रॉक सॉल्ट वगैरह है तो वो आई थिंक डायरेक्ट ही उसकी जो प्योरिटी है उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकती,
1: जी जी
0: बट
1: जी
0: सोडियम कंटेंट जो है ऑलमोस्ट सेम होता है
1: जी
0: सबका।
1: डॉक्टर साहब, सोडियम की आपने यहाँ पर बात की है, और कई बार जब ब्लड प्रेशर से पीड़ित मरीज़ आपके पास आता है
0: जी
1: और उसको इस तरह की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे यूरिन जो है वो ज़्यादा आता
0: ज़्यादा
1: है और
0: आता है ना।
1: सोडियम की मात्रा भी उससे कम होने लगती है,
0: जी
1: तो ऐसे में सोडियम अगर शरीर में कम हो जाए तब क्या होता है?
0: जो सोडियम नॉर्मल से कम होना जब शुरू हो जाता है शरीर में तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पेशेंट का। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के साथ आ रहा है
1: जी
0: पेशेंट, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता है, बेहोश है, मतलब बेहोश इन द सेंस कि उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसको हम ऑल्टर्ड सेंसोरियम, इस तरीके से भी आ सकता है पेशेंट।
1: जी
0: तो जब हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि इसको हाइपोनेट्रीमिया, लो सोडियम लेवल, तो उस टाइम पे ऐसी दवाइयाँ जो ब्लड प्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से सोडियम कम होता है, जैसे डायूरेटिक्स होते हैं, तो उनको हमें बंद करके और बाहर से जो उसके कंट्रोल्ड रेट पे हमें सोडियम जो है पेशेंट को देना पड़ता है,
1: जी
0: और इस इन चीज़ों को जो है वो टाइम पे संभालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए या ओवर ट्रीट किया जाए तो उसके जो है ब्रेन पे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ परमानेंट इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं।
1: जी तो देखिए दोस्तों, कितना घातक है। नमक कम करना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना। कम करने का मतलब है कि जैसे ऊपर से कई बार कोई सलाद में अपना नमक डाल
1: जी
0: रहा है,
1: जी जी
0: फ्रूट में डाल रहा है, वो नहीं करना है। नॉर्मल जो है लाइट नमक आपने अपने खाने में रखना है,
1: जी
0: बंद नहीं करना
1: बंद
0: है,
1: नहीं करना
0: बंद
1: है।
0: नहीं करना है।
1: जी
0: और जो पैक्ड जैसे वो चीज़ें हैं जिनके एज ए प्रिजर्वेटिव मतलब यूज़ होता है और उसमें हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, वो
1: जी
0: वाली चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी
1: जी
0: है।
1: खान पान के विषय में हम आगे बात करेंगे। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताइए।
2: जी, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, 36 घर से।
1: जी योगेश जी, बताइए, ब्लड प्रेशर के विषय में कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
2: जी, जब मैं थोड़ा लेट से सुनना शुरू किया हूँ तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो मोटापा और जो मानसिक तनाव होता है ये
0: जी
2: कितना मतलब जिम्मेदार होता है?
0: जी ये बहुत बड़े फैक्टर हैं किसी का ब्लड प्रेशर हाई करने के लिए। जो तनाव है, नींद नहीं आना, ये चीज़ें जो हैं ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, तो इनको कम करिए। मोटापा जो है वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। जी
1: जी योगेश जी, और कुछ पूछना चाहेंगे?
2: धन्यवाद।
1: जी शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, मोटापे की बात की है और खान पान की बात हम पहले से ही कर रहे थे, तो खान पान
0: जी
1: कैसा होना चाहिए कि इस तरह की जो समस्या है उच्च रक्तचाप की, वो हमें ना झेलनी पड़े?
0: ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए एक डाइट होती है जिसको हम डैश डाइट बोलते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें जो है वेजिटेबल्स ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, कम नमक होना चाहिए, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं मतलब वो कम फैट वाले होने चाहिए, मतलब हमारे जो प्लांट ओरिजिन के जो फूड हैं हमारी डाइट में ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो हमारे एनिमल ओरिजिन के।
1: जी यानी नेचर
0: जी
1: की तरफ हम बढ़ें।

0: तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
1: जी
0: डॉक्टर साहब, योग या अन्य जो एक्सरसाइज होती हैं, व्यायाम होते हैं, इसका कितना प्रभाव रहता है?
1: काफ़ी प्रभाव होता है जब हम योगा करते हैं, जैसे कई तरह के आसन हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये चीज़ें क्या करती हैं कि हमारी जो मेंटल पीस है उसको बढ़ाती हैं,
0: जी
1: मानसिक शांति देती हैं। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है कि हमारा जो एक हार्मोनल एक्सिस होता है उसके ऊपर इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो केमिकल रिलीज से रिलेटेड हैं, हार्मोन से रिलेटेड हैं। तो योगा और जो आसन्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं और
0: जी
1: ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में इनका बहुत रोल है।
0: जी डॉक्टर साहब, समय अब हमारे पास बहुत कम बचा है, और कई बार क्या होता है कि हम कई बार जल्दी में होते हैं, या कोई इस तरह की हमारे पास सिचुएशंस आ जाती हैं, या गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में
1: जी
0: ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: क्या ये हमेशा रहता है या बाद में ठीक हो सकता है?
1: देखिए, गर्भावस्था में जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, या तो वो पहले से मदर को पहले से हाइपरटेंसिव है, वो कंडीशन जो है वो बढ़ गई है प्रेगनेंसी के दौरान।
0: जी
1: सेकंड है कि प्रेगनेंसी के दौरान ही पहली बार जो है उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, तो ऐसे में जो हाई ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में है वो मदर के लिए एज वेल एज जो बच्चा है उसके लिए, दोनों के लिए हानिकारक होते हैं
0: जी
1: और उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जैसे डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद कुछ एक पेशेंट्स में जो होता है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है, और वो आता है जो प्रेगनेंसी के दौरान जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है।
0: जी
1: तो फिर भी ऐसे पेशेंट को फॉलोअप पे रखते हैं कि अगर नॉर्मल आ रहा है तो उसकी दवाई जो है डिसकंटिन्यू हो जाती है,
0: जी
1: बट जिनका परसिस्टेंटली डिलीवरी के बाद भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनको जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ती है।
0: जी और जब गर्भावस्था के दौरान अगर किसी को पहले से ही ये समस्या है और वो इसके लिए दवाई ले रहे हैं, तो इसका
1: जी,
0: बच्चे पर कोई दुष्प्रभाव?
1: गर्भावस्था के दौरान जो हम दवाइयाँ देते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं, सभी तरह की जो हम मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर के लिए नहीं दे सकते हैं,
0: जी
1: तो जो मेडिसिन है वो हमें चेंज करनी पड़ती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल अवस्था में रखना पड़ता है। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और जो दवाई है वो एडिक्वेटली दे रहे हैं गर्भावस्था के हिसाब से, तो बच्चे पे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कंट्रोल नहीं होगा ब्लड प्रेशर तो डेफिनेटली बच्चे पे उसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू
0: जी
1: हो जाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, सामान्यतः है जब एक मरीज जो है वो उच्च रक्तचाप के लिए कोई दवा ले रहा है,
1: जी
0: तो बहुत से दुष्परिणाम दवा के कारण देखने को मिलते हैं, जैसे टखनों
1: जी
0: में सूजन आना,
1: जी
0: कालापन आना स्किन में,
1: जी
0: या और भी कुछ लक्षण हो सकते हैं,
1: जी जी
0: तो ऐसे में किस तरह से ट्रीट किया जाता है?
1: जी जैसे मैंने बताया कि कुछ एक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कईयों को जैसे आपने बोला टखनों में सूजन आना है, कईयों को ड्राई कफ होती है, खांसी परसिस्टेंटली कि मुझे खांसी का कोई रीज़न नहीं है पर ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है मरीज़ को काफ़ी दिनों से जो है सूखी खांसी हो रही है,
0: जी
1: ऐसे हो सकता है। तीसरा, ये जैसे हमने वो सोडियम के लेवल का वो किया है कि कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे, कुछ एक दवाइयां हैं जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करती हैं तो उनके लेने से हार्ट जो गति है, हृदय गति है, वो कम हो सकती है।
0: जी
1: तो ऐसे जब पेशेंट आते हैं तो उनकी दवाई को हमें चेंज करना पड़ता है और उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट जो है वो करना पड़ता है।
0: जी
1: जी
0: डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आजकल बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर
1: जी
0: में ही बीपी चेक करने के लिए मशीनें रखी हुई हैं,
1: जी
0: लेकिन कई
1: जी
0: बार क्या होता है कि हम सही तरीके से अपने
1: जी
0: रक्तचाप को नहीं जांच पाते हैं, और
1: जी
0: कई बार
1: जी
0: ज़्यादा आ जाता है, कई बार कम आ जाता है,
1: जी
0: तो सही
1: जी
0: तरीका क्या है रक्तचाप को नापने का?
1: एक तो मेरा यही एडवाइस रहेगा कि दिन में अगर आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है तो कृपया एक बार कीजिए, है ना, रिलैक्स होके कीजिए, आराम से कीजिए, है ना।
0: जी
1: दूसरा है कि बार बार जब ये ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट खुद ही ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है और वो मशीन के ऊपर भी वो देख रहा है तो वो खुद ही एंग्शियस एंग्जाइटी की वजह से ही वो गलत रीडिंग आ जाती है, कि
0: जी
1: वो सोच सोच के ही कि नहीं मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। तो कृपया दिन में एक आध बारी करिए चेक, और अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो हफ्ते में एक ही बार कीजिए,
0: जी जी
1: और
0: जी
1: अगर कहीं भी डाउट हो कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है तो अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके
0: जी
1: डॉक्टर से
0: ज़रूरी यही
1: एक
0: है कि अपने
1: जरूरी
0: चिकित्सक से परामर्श
1: परामर्श
0: ज़रूर
1: जरूर
0: लीजिए।
1: लें, जरूर
0: जी
1: लीजिए।
0: डॉक्टर
1: हाँ
0: साहब, चलते चलते
1: जी,
0: क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर एक, हम इसको तो साइलेंट किलर बोलते हैं,
0: जी
1: मैक्सिमम लोगों में इसके जो लक्षण

0: हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो कृपया अपना ब्लड प्रेशर की जो जांच है वो नियमित करवाते रहें। जरूर अगर ब्लड प्रेशर हाई है भी है या नहीं है तो, बट अपने बीपी की जांच जरूर करवाएं। अपना लाइफस्टाइल जो है वो उसको बेटर करें, सैर करें, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको प्लीज़ क्विट करें, अल्कोहल लेते हैं तो उसको भी कम करें, खाने पीने का ध्यान रखें, नमक की मात्रा कम रखें अपने उसमें, एक्सरसाइज जरूर करें, योगा
1: जी
0: करें, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं और स्वस्थ रहें। यही मेरी शुभकामनाएं
1: जी
0: सबके
1: डॉक्टर
0: लिए।
1: कविता ठाकुर, आप हमारे स्टूडियोज में आए और बहुत अच्छी जानकारी उच्च रक्तचाप के विषय में हमारे श्रोताओं को आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: जी। श्रोताओं, उच्च रक्तचाप को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि कोई भी चूक जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, उस तरह से पूरी तरह से अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारिए। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया अंकित धीमान ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतिंद्र पाल सिंह। अब अपने दोस्त संजीव को कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आरोग्यम। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं और पहुंच चुके हैं हम स्टूडियो में लेकर हमारा अगला कार्यक्रम गीतों का कारवां। आप सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त ज्योति का स्नेह अभिवादन। दोस्तों, कहते हैं कारवां जहां से गुजरता है रौनक छोड़ जाता है। आज गीतों का ये कारवां आपके घर आंगन और आपके दिल में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मुस्कुराइए और आनंद लीजिए कार्यक्रम का। फिल्म दिल मांगे मोर से पहला गीत आपके रेडियो सेट्स पर है। अलका याग्निक और सोनू निगम की जादुई आवाजें हैं। समीर के बोल हिमेश रेशमिया के संगीत से सजा हुआ ये गीत है। आइए सुनते हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं सनम बेवफा फिल्म से। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं, गीतकार सावन कुमार, संगीतबद्ध किया है महेश किशोर ने।

आकाशवाणी धर्मशाला से हमारे श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं फैज अनवर के लिखे हुए बोलों को फिल्म तुम बिन के इस गीत में। गायक कलाकार अनुराधा पौंडवाल और उदित नारायण, निखिल विनय का संगीत निर्देशन,

0: इस छोटे से अंतराल के बाद फिर लौटेंगे कार्यक्रम गीतों के कारवां में।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
0: साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में अगला गीत अब आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म मुझसे शादी करोगी से। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें हैं।

0: कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
0: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति एक विवाह ऐसा भी, इस फिल्म से ये खूबसूरत गीत। शान और श्रेया घोषाल की मदहोश आवाजें हैं। गीत व संगीत रविंद्र जैन का।

इसी के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों का कारवां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं निम्मो चौधरी की आवाज में गाया हुआ ये लोकगीत।

0: ये लोकगीत आपने सुना लक्ष्मी देवी की आवाज में। आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर का। कार्यक्रम में अब लेते हैं ये कमर्शियल ब्रेक।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं राकेश कुमार सलाथिया और साथियों का गाया हुआ ये लोकगीत।

0: का जावड़िया बोले जान मेरे पिंजरे च झोले तोता जावड़िया
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
4: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
5: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
6: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
7: पहाड़ों के सुर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के संग। आइए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला लोकगीत। इस लोकगीत को गाया है करनेल राणा ने।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों को हेलीपोर्ट नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है। कल चंडीगढ़ में लीडरशिप कॉन्क्लेव और 23वीं वार्षिक आम बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 5 जिले अगले 4 माह में हेलीपोर्ट सुविधा से जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे चंडीगढ़ से शिमला और चंडीगढ़ से पालमपुर के बीच आवागमन और अधिक सुगम व सुविधाजनक हो जाएगा।
1: सारे ही 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे हेलीपोर्ट से अगले 4 महीने में जुड़ जाएंगे, यानी कि चंडीगढ़ से शिमला आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से 20 मिनट में पहुंच जाओगे, आप 50 मिनट में चंडीगढ़ से पालमपुर पहुंच जाएंगे, 2-3 सालों में आप पूरे हिमाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखेंगे। तो ये सब चीजें चेंजिंग की दृष्टिकोण से हो रही है। हमारा एक गोल है कि हम सेल्फ रिलायंट स्टेट बनना चाहते हैं और बन जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। CBSE के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। रोगी कल्याण समिति की एक बैठक आयुर्वेदिक अस्पताल छोटा शिमला में कल आयोजित की गई। आयुष व खेल मंत्री यादविंदर गोमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीते वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा रखा गया, वहीं आगामी वर्ष के लिए किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद यादविंदर गोमा ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोमा ने कहा कि अस्पताल में बीते वर्ष वेलसेन पंचकर्मा शुरू किया गया और इसमें लोगों का काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 250 के करीब आयुर्वेदिक डॉक्टरों की कमी है। उन्होंने कहा कि एक साल के अंदर आयोग के माध्यम से जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
2: वेलनेस पंचकर्मा में काफी अच्छा रुझान जो है लोगों की ओर से आया है और काफी यहाँ पर मैं जानकर मुझे खुशी हुई कि काफी एडवांस बुकिंग जो है यहाँ पर रहती है और अच्छी सुविधा जो है यहाँ पर मिल रही है, चाहे वो महिला वेलनेस पंचकर्मा केंद्र हो चाहे वो पुरुषों का हो, तो अच्छी फैसिलिटी जो है यहाँ पर जो है वो मिल रही है। और हमारी ओर से और विभाग की ओर से पूरे आयुर्वेदा विभाग में जो जितने डॉक्टर्स की शॉर्टेज है उनको जल्द से जल्द भरा जाए और मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक जो है कमीशन के द्वारा जो है लगभग 250 या 270 जो हमारे शॉर्टेज है डॉक्टर्स की है उनको जो है भर लिया जाएगा।
0: संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने कल इसकी आधिकारिक घोषणा की। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी

0: प्रदेश में मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा व शिमला जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जबकि सात जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
1: ये आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साहित्य सुमन, जिसमें श्रीमती नीलम रानी से बातचीत की है दीपक कुमार ने।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के प्रिय श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य सुमन में। कहते हैं भावनाएं जब शब्दों का रूप लेती हैं तो कविता जन्म लेती है, और इन्हीं शब्दों में जीवन के अनुभव, रिश्तों की गर्माहट और संवेदनाओं की खुशबू घुल जाती है तो वे सीधे मन को छू लेते हैं। आज के इस विशेष अंक में हमारे साथ हैं श्रीमती नीलम रानी जी, जो कि एक सामान्य गृहिणी होते हुए भी इन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को कविता के माध्यम से सुंदर अभिव्यक्ति दी है। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ लेखन के प्रति उनका समर्पण वास्तव में प्रेरणादायक है। आइए स्वागत करते हैं श्रीमती नीलम रानी जी का और जानते हैं साहित्यिक यात्रा के अनकहे पहलुओं को। नीलम जी, आकाशवाणी धर्मशाला में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
1: मेरा नाम नीलम रानी है, मेरा पिछोकड़ पंजाब से है, मेरी शादी हिमाचल प्रदेश में हुई है। परिवार में मेरी एक बेटी है, मेरे हस्बैंड, हम तीन।
0: तो लेखन की शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या कोई ऐसी घटना रही जिसने आपको कलम उठाने पर प्रेरित कर दिया?
1: बचपन से ही मेरा जो इमोशनल कनेक्शन बन जाता था किसी चीज़ को देख के, संवेदनशील होने की वजह से मैं किसी चीज़ को, किसी घटना को देखती थी तो उसको मैं कागज पे उतार लेती थी।
0: तो एक गृहिणी होने के नाते घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच लेखन के लिए समय निकालना कितना चुनौतीपूर्ण रहा है?
1: ऐसा कुछ है नहीं, चाहे मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और उस वक्त मेरे दिमाग में कोई विचार आ जाए तो मैं झट उसको छोड़ के फटाफट कलम पकड़ लेती, क्योंकि दूसरे ही पल वो विचार चला जाएगा, ऐसी संभावना होती है, बाद में वो थॉट नहीं आता, तो तभी मैं वो अपना काम छोड़ के वो लिखने बैठ जाती थी।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कभी कभी हमारे मन में कोई विचार आता है, अगर हम उसको उस वक्त नहीं लिखते हैं तो वो बाद में निकल जाता है, छूट जाता है। जी जी, तो आपकी जो कविताएं हैं वो मुख्य रूप से किन विषयों के इर्द गिर्द घूमती हैं, जैसे प्रेम, प्रकृति, समाज, रिश्ते या जीवन की कुछ अपने अनुभव?
1: जीवन की सच्चाइयां, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो जीवन के कड़वे सच है, चाहे वो सामाजिक बुराइयां हैं।
0: तो कुछ दो लाइनें हमारे श्रोताओं के लिए आप सुनाना चाहेंगी?
1: मन तो कर रहा है कि जब बचपन से शुरू किया था मैंने पहली ही कविता
0: जी,
1: तो वो ही सुनाने का।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को आप अपनी पहली कविता सुनाने जा रही हैं, तो बिल्कुल आप सुनाइए।
1: एक दिन था जब हमारे आंगन में ना एक वृक्ष था जिसको टाली बोलते हैं, तो उसके ऊपर मैंने घोंसला देखा चिड़िया का, तो मैं बैठी थी वहाँ पे, देखी जा रही थी, उसके सारे मैंने हाव भाव चिड़िया के देखे और मेरे मन में स्फुरित हुई एक कविता, तो तुरंत मैंने वो लिखी, तो मेरे दिल को वो छूती है आज भी।
0: बिल्कुल,
1: मैं आपको समक्ष रखने जा रही हूँ। नाम है चिड़िया। कितनी संतुष्ट, कितनी शांत तेरे जीवन की कहानी है, मुझे तो यूं लग रहा है कि तू ही जहाँ की रानी है। हर शहर तेरी सुरीली चहचहाट जीवन को अनुराग में बनाती है, और जैसे जीवन में कोई नई उमंग लाती है। मेरे आंगन के वृक्ष पे तेरा ये घर मेरी भावनाओं को कुछ और गंभीर बनाता है, फिर अपने घर में बैठ के तेरा चहचहाना जैसे मुझे जीवन का कोई गहरा अनुभव बताता है। धरती से ऊपर अंबर के नीचे तेरा ये घर

0: न्यारा है, कभी तो यूं लगता है मुझे कि तूने ही जीवन को संवारा है। तेरी भाषा समझ के शायद मुझे मेरा दिल कहता है, सीख इसी से जीने का राज और जान ले सुख की पहेली। प्यार मातृत्व सीख इसी से, इससे ही पूछ घर का बनाना। सोच रही हूँ बैठी मैं तो, कैसे है तू इतनी निस्वार्थ। मनुष्यता की श्रेष्ठता को देती है तू मात, वो जो करे उसमें स्वार्थ निहित है। तू तो निष्काम कर्म करती है, हर धर्म पालती है तू अपना, फिर भी वह वह नहीं चाहती। पर उपकार का ये सबक तुमसे मैंने सीखा है, मेरे घर में तेरा ये घर मुझे आदर्श सिखाता है। कर्तव्यों को निभाते हुए भी कितनी शांत कितनी प्यारी हो, आजादी को अपनी तूने कितना खूब पहचाना है। आजाद फिजाओं में रहकर ही तूने जीवन का मर्म जाना है, ना रिश्तों का बंधन ना दुनिया का गम है। कितना निर्मल कितना सुखमय तेरा ये जीवन है, तेरा चहचहाना प्रकृति का सुंदर राग है। तेरी आवाज में ही छुपा हुआ कोई साज है, तेरी स्वावलंबी जीवन को देख मेरा मन हर्षाता है। मैं भी चिड़िया काश होती और उड़ती हवाओं में, और कभी सो जाती प्रकृति की विशाल बाहों में।
1: जी, बहुत ही अच्छी कविता आपने हमें सुनाई है, हमारे सुनने वालों को सुनाई है, तो बहुत ही बढ़िया मुझे लगी ये कविता। तो नीलम जी, जब कोई कविता आपके मन में जन्म लेती है तो उसकी शुरुआत कैसे होती है, किसी शब्द से, किसी भावना से, या कोई और घटना?
0: कभी तो कोई घटना होती है, कभी कोई भावना होती है
1: जी। तो क्या आपकी कोई ऐसी कविता है जो आपके दिल के सबसे करीब हो, और उसके पीछे की कहानी भी हमारे श्रोताओं से कोई अगर आप साझा कर सके तो?
0: आसान नहीं गहराइये दिल को शब्दों में ढालना, आसान बात नहीं है तो सब आसान, पर ये आसान नहीं। आसान है बहुत ए दुनिया माफ करना तेरे गुनाहों को, पर खुद को माफ करना आसान बात नहीं। बैठ जाओ घबराकर किसी महफिल में, बैठ जाओ घबराकर किसी महफिल में, आए रंगे महफिल चेहरे पे, ये तो आसान बात नहीं। आसान है बहुत चलना एक दिन चिता में, फिक्रे चिता में रोज जलना आसान बात नहीं। है तो सब आसान पर ये आसान नहीं। आसान है बहुत मापना गहराई समुंदर की, गहराइये दिल को मापना आसान बात नहीं। माप ली है ए दुनिया दूरी तूने धरती से चांद की, माप ली है ए दुनिया दूरी तूने धरती से चांद तक की, दिल से दिल की दूरी मापना आसान बात नहीं। छुपा लो आह अपनी गले के किसी कोने में, छुपाना जुबां आँखों की आसान बात नहीं। आँखों पर तो बिठा ही लेते हैं ये जमाने वाले, आँखों पर तो बिठा ही लेते हैं ये जमाने वाले, बिठाना दिल में किसी को आसान बात नहीं।
1: वाह, क्या बात है कि कुछ भी करने के लिए कोई चीज़ आसान होती है कुछ नहीं होती है। आपकी इस कविता में एक लाइन मुझे बहुत प्यारी लगी कि नाप ली है तूने दूरी धरती से चांद की, पर दिल से दिल की दूरी नापना आसान नहीं। ये बहुत ही बढ़िया लाइन है इसकी। अच्छा, इस कविता के पीछे कोई कहानी रही है तो अगर आप साझा हमारे साथ करना चाहें तो?
0: जो दिल से निकलता है उसके पीछे कुछ होता तो है ही है, पर एक्चुअली मेरी शादी जो हुई थी ना वो ऐसे हालात में हुई थी कि दोनों तरफ मातम का माहौल था। मेरे ससुराल पक्ष में मेरी सास ने एक महीना पहले ही गुजरे थे, और मेरे पीहर घर से मेरे बड़े जीजा जी 2 महीने पहले एक्सपायर हुए थे
1: जी।
0: तो ऐसे हालात में शादी हो गई कि कुछ छानबीन नहीं कर पाए, तो वो जो आपस में बात नहीं हुई, तो वो जो माहौल कभी बन जाता था कि कोई किसी का समझ नहीं पा रहा है, तो उन हालातों में ये ऐसी चीजें निकल आती थी।
1: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि कभी कभी दिल से बाहर दिल की सच्चाई जो है वो आ जाती है। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि परिवार या आपके फ्रेंड्स जो भी हैं वो आपके लेखन को लेकर आपके उनके सहयोग की क्या प्रतिक्रिया आपकी लाइफ

0: रही उनकी?
1: मेरे पापा मुझे बहुत ही प्रेरणा देते थे लिखने में।
0: जी
1: जब मैं शादी नहीं हुई थी तब मैं राजपूत सभा नाम की एक पठानकोट से न्यूज़पेपर निकलता था,
0: जी
1: उसमें मैं कभी कभार लिखती थी।
0: मतलब आपने अपनी कविताएं जो हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाई हैं कहीं
1: हाँ
0: ना कहीं,
1: जी
0: तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि जब हमने इतना किया तो किसी मंच पे आप सुनाएं जाके, या कहीं से बुलावा आया नहीं, या आप गए नहीं?
1: हाँ, नहीं कभी कोशिश भी नहीं की ऐसे। वैसे अपने दिल की बात ऐसे कॉपी में लिख ली, कागज में लिख ली,
0: पर आपको लगता नहीं कि आपको कहीं जाना चाहिए था ऐसे किसी
1: अब
0: मंच पे?
1: लगा। हाँ
0: तो आगे, अभी अगर कभी मौका मिलेगा तो आप जाना चाहेंगी कहने का मतलब किसी
1: बिल्कुल
0: मतलब?
1: जाना
0: बिल्कुल, ये
1: चाहेंगे।
0: अच्छी बात है क्योंकि हमने अपने लिए कुछ लिखा है तो ऐसी कोई कविता लिखी है या ऐसी कोई लाइनें लिखी हैं तो वो जनता तक पहुंचे तो अच्छा लगता है
1: वो
0: कई
1: कुछ
0: बार।
1: एक ऐसी घटना हुई थी कि जिसके बाद ना छूट गया था।
0: ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे आज सोशल मीडिया का जमाना है, नए नए लेखकों को नए नए मंच भी मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे लेखक भी हैं जिन्हें कहीं मंच नहीं मिला तो उन्हें भी सोशल मीडिया ने एक मंच दे दिया है,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: आपके अनुसार इसका साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है?
1: देखो, ये तो बहुत ही अच्छा है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऐसे,
0: जी
1: है ना। पहले तो कम ही प्लेटफॉर्म होते थे, लेकिन अब तो हर कोई अपने आप को एक्सपोज कर सकता है।
0: बिल्कुल, तो आपने सोचा नहीं कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप अपनी कविताएं लोगों तक लेके जाएं?
1: अभी नहीं सोचा।
0: तो ये तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बल्कि अगर आप यहाँ से अपनी कविताएं लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपको कोई मंच ढूंढने की मेरे को लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी,
1: बिल्कुल जी, मैंने
0: क्योंकि
1: बड़ा
0: फिर
1: मंच ढूंढ
0: बिल्कुल
1: लिया।
0: क्योंकि नहीं नहीं फिर आप, फिर क्या है कि आपको मंच खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाएंगे मेरे हिसाब से।
1: जी
0: तो आप सोशल मीडिया तक अपनी कविताएं लेके जाइए।
1: जी
0: जो महिलाएं लिखना चाहती हैं लेकिन संकोच करती हैं या व्यस्तता के कारण शुरुआत नहीं कर पाती, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: व्यस्तता तो लेखन के आड़े नहीं आती है मेरे ख्याल में। जब वो फ्लो आ जाता है ना
0: जी
1: लिखने का,
0: जी
1: तो आप कुछ भी काम कर रहे होते हैं तो आपका मन करता है कि मैं इसे, हाँ,
0: कहने का
1: लिख।
0: मतलब कि आपके लेखन के बीच में आप व्यस्तता आज तक आई नहीं है, तो
1: नहीं आई
0: आपको कभी लगा नहीं कि मैं व्यस्त हूँ और मैं लिख नहीं पा रही हूँ,
1: जी।
0: तो ऐसी कोई कविता है जो हम सुन सकें, मतलब आप व्यस्त रही हों काफ़ी और आपके मन में कोई कविता आई हो तो हमें कुछ दो लाइनें उसकी, कि आप कोई ऐसा वक्त होता है ना कई बार हम बहुत व्यस्त होते हैं और कोई कविता आ जाती है तो हम अपना सारा काम छोड़ के फिर वो, कई बार आपने ऐसा कोई
1: हाँ जी,
0: कविता
1: ऐसे
0: लिखी?
1: ही हुआ है हमेशा ही ना, कि काम छोड़ के स्पेशली बैठे नहीं लिखने के, वो सोच समझ
0: जी
1: के
0: जी
1: लिखना
0: बिल्कुल।
1: है ना, वो तो खुद ही आता है थॉट।
0: जी तो कोई ऐसी कविता है जब आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रही हो और आपके मन में आई हो और आपने लिखी हो?
1: हाँ जी, एक कविता है, देखो उठकर चलो संभल कर कि अभी राहें और भी हैं, कि सितारों के आगे जहां और भी हैं।
0: जी
1: घिरना जाना किसी भीड़ में, रास्तों के निशान और भी हैं कि अभी राहें और भी हैं। अच्छों के साथ तो चलते हैं सभी, बुरों को भी साथ लेके चलो। देव नहीं तुम मात्र मानव हो, कि मानवता को ही अपना लो। धर्म के नाम पे क्यों करते हो पशुओं से भी बदतर काम? धर्म के नाम पे क्यों करते हो पशुओं से भी बदतर काम? एक धर्म है अपना प्यार, इसे ही अपना ईमान बना लो। गिर के संभलना है तुझे, कि दुनिया तुझे उठाएगी नहीं। गिर के संभलना है तुझे, कि दुनिया तुझे उठाएगी नहीं। देखना कहीं इसी इंतजार में खुद को मायूस करना नहीं। देखो उठकर चलो संभल के कि अभी राहें और भी हैं। अपनी होंद को खुद ही पहचानो, अपनी होंद को खुद ही पहचानो, कि तुम निर्माता हो खुद ही अपने, कि तुम निर्माता हो खुद ही अपने। दुनिया से गिला करना नहीं। देखो उठकर चलो संभल के अभी राहें और भी।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी कविता है ये भी, क्योंकि मैंने अभी तक आपकी शायद तीसरी ये कविता सुनी है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये भी। अच्छा मुझे एक चीज़ कई बार होता है कि हमारी कविता या लेखन में कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द भी आ जाते हैं जो हमें कई बार समझ नहीं आते, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आपकी जो पढ़ाई है किस में हुई है, कौन से सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ाई की है?
1: हाँ जी, मैंने मेन मेरा मैथ्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था,
0: जी
1: लेकिन लिटरेचर में मैंने प्रभाकर की है।
0: तो शब्दों की जो ये हेरा फेरी है, तो ये कैसे आप कर लेती हैं अगर आपने?
1: ये नेचुरली है, क्योंकि जब वो मैंने प्रभाकर नहीं भी की थी
0: जी,
1: और तब भी मेरे पास शब्द रहते थे भंडार, और प्रभाकर के एग्ज़ाम मैंने बिना पढ़े दिए हैं। वो मैं पढ़ना तो आगे चाहती थी, लेकिन मेरे फादर चाहते थे कि मैं कर को पकड़ूं और इसके माध्यम से आगे बढ़ूं लिटरेचर, क्योंकि वो देखते थे कि मैं लिखती हूं, तो उन्होंने मुझे बोला। लेकिन मैंने, मेरा मैथ्स में भी इंटरेस्ट था, तो मैं चाहती थी कि मैं मैथ्स लूं सब्जेक्ट,
0: नहीं
1: तो उनके कहने पे पहले मैंने प्रभाकर किया।
0: बिल्कुल, क्योंकि एक मैथ्स के स्टूडेंट के लिए इतने भारी भरकम शब्दों के साथ कविताएं लिखना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि प्रभाकर आप जैसे कह रही हैं कि आपने बाद में शुरू किया है, तो लिखते आप पहले से हैं।
1: हाँ जी,
0: तो बहुत मुश्किल काम है ये तो फिर।
1: हाँ जी, मैंने कहा ना कि मैं संवेदनशील हूँ और मैं चीज़ों को ऐसे देखती हूँ, बड़े गहराई से देखती हूँ
0: जी। लेखन करने वालों की नज़रिया, वैसे भी मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि ये जो नज़रिया होता है ना, कि ये अलग ही होता है, वो किसी भी चीज़ में दो लाइनें ढूंढ के निकाल ही लेते हैं।
1: हाँ।
0: कहते हैं ना कि खदान में घुसने वाला कोयले का जो खनिक होता है, वो भी खदान में घुस के ना हीरा निकाल लेता है, तो वही लेखन वालों का भी हिसाब होता है कि किसी भी चीज़ को देख के वो दो लाइनें निकाल लेते हैं।
1: हाँ जी, देखो इसमें मुझे एक घटना याद आ रही है। मेरे मदर, वो भी शायद मैं उन्हीं पे गई होंगी, वो इतने संवेदनशील थे कि अखबार हो चाहे कोई किसी की फ़ोटो वगैरह जिस पे छपी है
0: जी,
1: ऐसा कोई कागज़ हो, तो वो उससे अगर कोई बोले कि उनको जला के आग प्रज्वलित करनी है
0: जी,
1: तो वो बोलते थे कि नहीं, ये न्यूज़पेपर में किसी के बच्चे की किसी की फ़ोटो है
0: जी,
1: तो मैं इससे आग नहीं जलाऊंगी। जैसे हम अपना बच्चा हो
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो हम उसको कैसे संभाल के
0: जी,
1: रखेंगे
0: जी,
1: फोटो
0: जी।
1: को, जलाएंगे नहीं। तो उनको सबके लिए ऐसा था कि ये जो अखबार में किसी की भी चाहे, वो नहीं जानते उनको, तो किसी के बच्चे की फ़ोटो है उसमें, तो उस अखबार से हमने आग जो जलानी है, तो वो जो दूसरे साधन होते हैं जैसे जिससे भी जलाते हैं आग
0: जी,
1: जैसे मिट्टी का तेल है ना
0: जी।
1: हाँ, उससे जलाते थे और कभी भी कागज उससे नहीं जलाते थे किसी की फोटो। यहाँ पे आज ऐसा माहौल है कि आदमी आदमी को जरा तरस नहीं करता,
0: नहीं करता, बिल्कुल आपने सही
1: तो वो
0: कहा।
1: फोटो को देख के ही उनको कितना भाव आ जाता था।
0: अच्छा नीलम जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी आप लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, सिर्फ कविताएं ही लिखती हैं या कुछ और भी आप लिखती हैं?
1: कभी कभी लेख भी लिख लेती हूँ।
0: लेख भी लिख लेती हैं जी। तो आपकी आगे लेखन संबंधी क्या क्या योजनाएं हैं, जो अभी आप सोच रही हैं कि हम इन फ्यूचर आप कुछ करेंगी इसमें या कुछ नया करने की सोच रही हूँ?
1: अभी मेरा दोबारा से मन हुआ है, तो मेरे को जैसे जैसे प्रेरणा मिलेगी मैं वैसे
0: लिखेंगे। ठीक, तो क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी कविताओं का कोई संग्रह बनाऊं और उसे प्रकाशित करूं, या कोई उसकी बुक, या कभी कुछ ऐसा विचार आया हो आपके?
1: अभी आ रहा है पहले तो नहीं आया
0: तो मैं अभी पहले भी कह रहा था कि सोशल मीडिया एक हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप वहाँ से भी शुरू करती हैं तो काफ़ी आपको मदद मिल सकती है, और लेखन के लिए या आपकी कविताओं के लिए फिर आपको शायद ही कोई मंच ढूंढना पड़े। तो आप, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आप ये करना शुरू कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपने जो ये छोटी छोटी स्वरचित कविताएं या कुछ पंक्तियां हमारे श्रोताओं को सुनाई हैं, तो आप जब लिखती हैं
1: जी,
0: तो लिखते वक्त कभी ऐसा हुआ है कि आप सिर्फ लिखने में मगन हो गई हों और कोई घर का काम छूट गया हो या कोई चीज़ ऐसी छूट गई हो जो बहुत ज़रूरी थी?
1: हाँ, होता है कभी कभार
0: कि मतलब बहुत ज़रूरी कोई काम था पर आप लिखने बैठ गई और आपसे वो काम छूट गया?
1: हाँ जी।
0: तो इससे कभी दिक्कत आई हो आपको?
1: हाँ, दिक्कत तो आती है, जिसको जो चाहिए वो वक्त पे मिलता नहीं है तो
0: मतलब लेखन में ये थोड़ा सा मतलब टाइम निकालना मुश्किल होता है कई बार,
1: लेकिन चलो समझ लेते हैं, ज़्यादा इश्यू नहीं क्रिएट होता।
0: तो नीलम जी, अभी हमारे श्रोताओं को चलते चलते कोई एक ऐसी कविता सुनाइए या जो आपने हाल ही में लिखी हो कोई पुरानी।
1: मैं एक भजन सुना सकती हूँ?
0: जी बिल्कुल, आप भजन सुना।
1: जो मैंने खुद ही लिखा है, पूजा में बैठती हूँ तो मैं वो गुनगुनाती हूँ।
0: जी बिल्कुल, अगर आपने खुद लिखा है तो वो भी चलेगा, आप वही सुना दीजिए।

0: प्रभु।
1: जी, बहुत ही सुंदर भजन है आपने लिखा है ये। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप लेखन का काम करती हैं, हमारे बहुत से श्रोता भी होंगे जो इस चीज़ से जुड़े होंगे या लिखने में विश्वास रखते होंगे या लिख नहीं पा रहे होंगे, उन लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी?
0: उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि ये भगवान का दिया हुआ बहुत ही अनमोल, हर किसी को नहीं मिलता है, गॉड गिफ्टेड
1: जी
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: होता है ये तो। कभी भी किसी भी वजह से नहीं, अपनी ये दिल की आवाज़ है अपनी,
1: जी
0: है ना, वो अंदर गहराइयों से निकलती है, आत्मा की आवाज़ है। दुनिया का कोई भी ऐसा जरूरी काम नहीं है जो आप अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा लें, अपने दिल की आवाज़ को दबा लें।
1: जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आज की बातचीत ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती। यदि मन में संवेदनाएं हों और उन्हें शब्दों में ढालने का साहस हो तो साधारण जीवन भी असाधारण प्रेरणा बन जाता है। हमें विश्वास है कि आपकी साहित्य की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और आपकी रचनाएं पाठकों एवं श्रोताओं के हृदय में इसी तरह स्पर्श करती रहेंगी। आपका
0: धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी जी।

0: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य सुमन, जिसमें श्रीमती नीलम रानी से बातचीत की दीपक कुमार ने।
1: सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
5: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
4: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
5: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
4: And now, it's yours at an effective price of just ₹5.59 lakh. Yes, ₹5.59 lakh. Valid till 31st July only.
5: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
6: Nexa.
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555

0: कॉल करें।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, तराने मन के। दोस्तों, वक्त भले ही आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ यादें वहीं रुक जाती हैं। चलिए चलते हैं उस दौर में जहां गानों में सिर्फ शोर नहीं बल्कि जज्बात हुआ करते थे। एक एक लफ्ज सीधा दिल में उतरता था। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं 1974 की फिल्म मजबूर के इस बेहद खूबसूरत नगमे से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी साहब की मखमली आवाज़ें बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम पहाड़ों के सुर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। अगला गीत मदन मोहन और जयदेव जी के संगीत निर्देशन में फिल्म लैला मजनू से अब आपको सुनवा रहे हैं। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं।

चोर मचाए शोर, इस फिल्म से अगला तराना अब आपके रेडियो सेट्स पर है। गीत व संगीत रविंद्र जैन का, आवाज का जादू बिखेरा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

आइए अब सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को पत्थर के सनम फिल्म के इस खूबसूरत गीत में। मुकेश की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

जी, ऐसे तरानों का साथ हो तो दिल तो कभी भरता ही नहीं दोस्तों, लेकिन घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं अब हमें कि इस महफिल को यहीं थामना होगा। उम्मीद करते हैं तराने मन के आज का ये कार्यक्रम आपके दिल के बेहद करीब रहा होगा।

अब दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त ज्योति को अनुमति। नमस्कार, आप जुड़े हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: मन्ना डे मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में प्रेम पुजारी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शब्द रचना थी गोपाल दास नीरज की। नीरज की आज पुण्यतिथि है। इस गीत के लिए संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

शर्मिली फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना नीरज की थी। लीजिए सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार के गुलसरों में कल आज और कल फिल्म का ये गीत। नीरज के बोल हैं, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: बोलो बोलो।
1: अजी लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी ना पापा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो
0: ना,
1: सुनो तो सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।

0: यहाँ आए किस लिए?
1: आपने बुलाया किस लिए?
0: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए।
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
0: मुस्कुराने की न कोई बात है।
1: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जाँच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जाँच जरूर करवाऊंगी।

0: बिल्कुल याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
2: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

किशोर कुमार की आवाज में अनुरोध फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का था। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने।

लिए। किशोर कुमार के गाए मेरे जीवन साथी फिल्म के इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है फ्रीक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम बाल सभा।

नमस्कार प्यारे बच्चों, आकाशवाणी के प्रिय कार्यक्रम बाल सभा में आप सभी नन्हे सिपाहियों का रेडियो दीदी ज्योति हार्दिक स्वागत करती है। आप सभी नन्हे श्रोताओं को दीदी का बहुत बहुत प्यार, और कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार। प्यारे बच्चों, अभी बरसात का

मौसम है ना। और ये जो मौसम होता है ये अपने साथ ठंडी फुहारें, हरियाली और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है। कभी स्कूल की छुट्टियाँ, कभी कागज़ की नाव को चलाने की मस्ती, तो कभी दोस्तों के साथ बारिश का आनंद। ये मौसम सचमुच बहुत सुहाना लगता है ना बच्चों। लेकिन लेकिन जितना ज़रूरी बारिश का मज़ा लेना है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। और अभी बहुत से बच्चों की बरसात की छुट्टियां भी चल रही हैं। बहुत खुश हैं आप, है ना, कि सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता है। मम्मा अब आपको आवाज़ें नहीं लगाती हैं कि भाई उठो उठो जल्दी उठो, स्कूल जाना है। लेकिन इन छुट्टियों का पूरा आनंद आप तभी ले पाएंगे नन्हे सिपाहियों, जब आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और ख़ुद को सुरक्षित भी रखेंगे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है समय सारणी को अपनाना। समय पर सोना है, समय पर जगना है, तभी तो आप स्वस्थ रह पाएंगे ना। और ख़ुद को तंदुरुस्त यदि रखना है तो इसके लिए खान पान का पूरा पूरा ध्यान आपको रखना है। मौसमी फल, मौसमी सब्जियां ज़रूर अपने खान पान में आपने शामिल करनी है। और अच्छा खान पान खाइए और अच्छी सेहत बनाकर फिर आपने स्कूल भी जाना है। और मम्मा कितनी मेहनत करती है आप सबका भोजन तैयार करने के लिए, तो आपने ज़रूर मम्मा के हाथ का ये बना हुआ जो खाना है ना, उसे खाना भी है और मम्मा की तारीफ भी करनी है। मम्मा को थैंक यू, धन्यवाद ज़रूर कहें। और हाँ बच्चों, छुट्टियों में खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है ना, जितना मन करे उतना खेलो। लेकिन नन्हे बच्चों, तेज़ बारिश या गरज चमक के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मम्मा भी आपको बताती है ना, दीदी भी आपको बता रही है कि उस समय आपने घर से बाहर नहीं निकलना है। और आजकल पेड़ों के नीचे खड़े होने या बिजली के खंभों के पास जाने से भी बचना चाहिए। यदि कहीं पानी भर गया हो तो उसमें खेलने या चलने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि उस पानी के नीचे गड्ढा हो या खुला नाला हो जो पानी में आपको दिखाई नहीं देगा और दुर्घटना इससे हो सकती है। और इन दिनों जो नदी नाले हैं वह भी उफान पर होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी इनमें रहता है। तो खेलते खेलते उस ओर आपने बिल्कुल नहीं जाना है। ये प्रॉमिस दीदी आपसे चाहती है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि माता पिता को बिना बताए आप में से कुछ बच्चे, जी हाँ सबको नहीं बोल रही है दीदी, जो कुछ बच्चे हैं ना वो अपने मम्मा पापा को बिना बताए कई बार ऐसे स्थानों पर निकल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इन दिनों इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बहुत पढ़ी और सुनी जाती हैं, जिसमें पानी में डूबने की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। तो आपने दीदी का कहना ज़रूर मानना है। और अगर अभी बच्चों आपको छुट्टियां हैं ना, तो पूरा दिन मोबाइल या टीवी नहीं देखना है, पूरा समय इसमें आपने नहीं बिताना है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। जो समय का आदर नहीं करते हैं ना, समय भी फिर उनकी कदर नहीं करता है। थोड़ा थोड़ा समय आपने सब चीज़ों के लिए बांटना है, थोड़ा समय खेलने के लिए, थोड़ा पढ़ाई के लिए और थोड़ा सा अपनी रुचि के कामों के लिए भी ज़रूर निकालिए। कहानी की किताबें पढ़िए, चित्र बनाइए, नई कविता याद कीजिए या घर के बड़े बुजुर्गों से उनकी बातें सुनिए, उनके पास बैठिए, उनके अनुभव, उनके किस्से जानिए। इससे छुट्टियां मज़ेदार भी बनेगी और सीखने का अवसर भी आपको मिलेगा। तो सीखने का अवसर जब भी मिले ना, उसे जाने नहीं देना है, लपक कर पकड़ लेना है। हो सके तो डायरी में लिखें कि आज मैंने ये नई चीज़ सीखी है। और यदि बारिश में आप भीग जाए ना, तो तुरंत सूखे कपड़े पहनने हैं, हाथ पैर अच्छी तरह धोना भी बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता का पूरा ध्यान आपने रखना है ताकि आप बीमार ना हों। और हाँ, पानी

स्वच्छता का ध्यान भी ना इन दिनों थोड़ा ज्यादा ही रखना होता है। पानी को उबाल कर ही पीना है, और अभी जरूरी है कि बातों को थोड़ा कम करके ये गाना सुना जाए। मिलते हैं नन्हे श्रोताओं इस गाने के बाद।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं नन्हे मुन्हों का कार्यक्रम बाल सभा। प्यारे बच्चों, दीदी चाहती है कि आप हमेशा खुश रहें, खूब पढ़ें, खूब खेलें और अपने सपनों को पूरा करें। लेकिन इन सब के साथ एक और बात बहुत ज़रूरी है, पता है कौन सी? वो है अपनी सुरक्षा करना सीखना। बच्चों, जब हम आत्मरक्षा की बातें करते हैं ना, तो इसका मतलब केवल मार्शल आर्ट या कराटे सीखना ही नहीं होता। आत्मरक्षा का सबसे पहला गुर है सतर्क रहना, जागरूक रहना, अपनी आँखें खोल के रखना, अपने आसपास क्या घटित हो रहा है उसकी जानकारी रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना। दीदी आपको समझाती है। मान लीजिए स्कूल से घर लौटते समय कोई अनजान व्यक्ति आपसे बात करने लगे, आपको टॉफ़ी, चॉकलेट, खिलौने या किसी और चीज़ का प्रलोभन, जी हाँ लालच देकर अपने साथ चलने के लिए कहें, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? बताइए। जी बिल्कुल, आप सब बच्चे सही सोच रहे हैं और कुछ बच्चे तो बोल भी रहे हैं कि उस व्यक्ति की बात नहीं माननी है, बिल्कुल नहीं माननी है। बिना अपने माता पिता या किसी भरोसेमंद बड़े की अनुमति के बिना किसी अजनबी के साथ कहीं भी कभी नहीं जाना है। बच्चों, अगर कभी कोई व्यक्ति आपको असहज महसूस करवाए ना, यानी बार बार स्पर्श करने की कोशिश करे, बैड टच, या कोई ऐसी बात कहें जिससे आपको डर या घबराहट महसूस हो, तो चुप मत रहिएगा, डरिएगा नहीं, जोर से नहीं कहिए, नो, वहाँ से तुरंत हट जाइए और माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद बड़े को पूरी बात आपने बतानी है। मन में कोई भी बात आपने रखनी नहीं है, क्योंकि ऐसी बातों को छिपाना नहीं चाहिए। ठीक है ना? ठीक है बच्चों। और आजकल मोबाइल का उपयोग भी तो बहुत बढ़ गया है ना, आप सब भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना, करते हैं, इसलिए बच्चों आपको बता रहे हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय भी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत रहती है। किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी है। अपने घर का पता, मोबाइल नंबर, पासवर्ड या कोई निजी जानकारी किसी के साथ आपने साझा नहीं करनी है। यदि ऑनलाइन कोई आपको परेशान कर रहा है ना, तो तुरंत अपने माता पिता को बताना है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ना हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं अब बताएं किसको, कोई हमारी बात मानेगा भी, विश्वास करेगा? तो ऐसा आपने नहीं सोचना है। अगर ऐसी परेशानी

सामने आती है ना, तो सबसे पहले अपने मम्मा पापा को आपने बताना है। एक और ज़रूरी बात, यदि आप कहीं गए हैं घूमने और किसी भीड़ में आप अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं ना, तब भी आपने घबराना नहीं है, वहीं रुक जाइए या किसी पुलिसकर्मी सुरक्षा गार्ड से सहायता मांगिए। किसी अजनबी के साथ कहीं मत जाइए। आत्मरक्षा का एक और महत्वपूर्ण गुर है बच्चों, आत्मविश्वास। जी हाँ, जब आप आत्मविश्वास से चलते हैं ना, साफ आवाज में बात करते हैं और आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं, तो आप अधिक सुरक्षित रहते हैं। और अगर हाँ बच्चों, आपको मौका मिले तो मार्शल आर्ट, कराटे या किसी आत्मरक्षा प्रशिक्षण में भी ज़रूर आपने भाग लेना है। इन चीज़ों को ज़रूर आपने सीखना है, इससे आपका शरीर मजबूत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप आपात स्थिति में अपनी रक्षा कर पाएंगे। तो नन्हे सिपाहियों, हमेशा अपने माता पिता का मोबाइल नंबर और घर का पता आपको याद होना चाहिए, याद रखना है। कहीं लिखा होगा ना आपने, लेकिन उसको अपने दिमाग में भी आपने लिख लेना है, आपको जुबान पर याद होना चाहिए। और जब भी कहीं बाहर जाएं, उन्हें बताकर जाना है। एक बात और बता देती है दीदी आपको, कि जब भी सड़क पार करते हैं ना आप, तो उस समय भी यातायात नियमों का पालन करना है और सुनसान जगहों पर अकेले जाने से भी आपने बचना है। तो बच्चों, आज का संदेश बहुत सरल है, सतर्क रहें, आत्मविश्वासी बने, किसी भी बात को छिपाएं ना, माता पिता से ज़रूर बताएं, उनकी मदद लें। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं है, समझदारी की निशानी है। तो बच्चों, आज का सेफ्टी मंत्र है, सोचो समझो और सुरक्षित रहो। और अब एक और गीत आपको सुनवाते हैं।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: इस छोटे से अंतराल के बाद लौट आए हैं एक बार फिर कार्यक्रम बाल सभा में। और प्यारे बच्चों, अब समय है कुछ रोचक जानकारियों का, जो इस कार्यक्रम का अंतिम और दिलचस्प सफर है। तो निकले इस सफर पर। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में पूरी तरह सन्नाटा यानी शांति रहती है? क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवा नहीं होती। इसलिए अगर आप अंतरिक्ष में किसी के कान के पास जाकर भी चिल्लाएंगे ना, तो भी उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। जी हाँ, अब बात करते हैं डॉल्फिन की अनोखी नींद की। जी हाँ, डॉल्फिन समुद्र की सबसे समझदार और प्यारी मछली के सोने का तरीका बहुत अजीब है। क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन सोते समय अपनी एक आंख खुली रखती है? ऐसा वह खुद को दुश्मनों से बचाने और सांस लेने के लिए करती है। उनका आधा दिमाग सोता है और आधा जागता रहता है। बच्चों, आप सबको पता है ना कि हम सबकी उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स

दुनिया में सबसे अलग होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जीभ का निशान, टंग प्रिंट भी दुनिया में हर इंसान का बिल्कुल अलग होता है। यदि जीभ का स्कैन किया जाए तो वह भी किसी भी दूसरे से मैच नहीं करेगी। अगली रोचक जानकारी, एक ऐसा देश जहाँ एक भी मच्छर नहीं है। गर्मियों और बारिश के दिनों में हम सब मच्छरों से कितना परेशान रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। इस देश का नाम है आइसलैंड। जी हाँ, यहाँ की ठंडी जलवायु के कारण मच्छर यहाँ पनप ही नहीं पाते हैं। तो नन्हे सिपाहियों, थी ना ये कमाल की जानकारियाँ? आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। चलिए और बढ़ते हैं, झूमते हैं अब इस तराने पर।

चलते चलते आपको बताते चले कि आज के कार्यक्रम का सफर आपने तय किया रेडियो दीदी ज्योति के साथ। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया सुनील शर्मा ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह।

0: प्यारे बच्चों, बाय बाय, जय हिंद। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के फौरन बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, माकपा नेता जॉन ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा सहित विपक्ष के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। इस बैठक के माध्यम से सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग

की अपेक्षा कर रही है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सैंडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। वे भारत मोल्दोवा व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की भी पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे वहां के प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसिडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसिडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों ही नेताओं ने उच्च शिक्षा, क्षमता निर्माण, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में भारत तंजानिया सहयोग के विस्तार पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज सुबह बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भर गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैल गई। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज वर्षा के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, क्या आपने ताज का दीदार किया है? अगर किया है तो चांदनी रात में ये कैसा नजर आता है, आप चाहें तो बता सकते हैं। लीडर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आपको बताने हैं, और वैजयंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी इबारत तस्वीर की बाहरी शोभा और यादों की भीतरी गहराई का सुंदर संतुलन बयां करती है। तस्वीरें सिर्फ गुजरे हुए वक्त का आईना होती हैं, खूबसूरत मगर खामोश, वे धड़कनों को थाम कर रखती हैं लेकिन उनमें जान नहीं फूंक सकती। असली जुदाई एहसास तो उस आवाज़ की खनक और बातों के उतार चढ़ाव में है जो रूह को छू लेती है। कैनवास पर उकेरी गई कायनात कितनी भी हसीन क्यों ना हो, वो उस एक पल के सामने फीकी है जब किसी अपने की बातें सीधे दिल के साहिल पर दस्तक देकर स्मृतियों को फिर से जीवंत कर देती हैं। सच ही तो है, तस्वीरों में रूप बसता है पर बातों में रूह। एक और श्रोता ने लिखा है, कायनात की खूबसूरती की तस्वीर किसी एक रूप में नहीं है, वो तो उगते सूरज की सुनहरी किरणों से लेकर डूबते सूरज के नारंगी आकाश तक में है। कभी रात के सन्नाटे में, तो कभी टिमटिमाते तारों में, कभी माँ के हाथ के खाने में, तो कभी किसी अनजान बच्चे की हंसी में। कायनात की तस्वीर इसलिए खूबसूरत है क्योंकि उसमें मोहब्बत है, और मोहब्बत की तस्वीर इसलिए खूबसूरत इसलिए है कि उसमें कायनात है। तो क्या ही बात है श्रोताओं, आप ये बताएं कि क्या आपको तस्वीरें बनाना पसंद है? प्रकृति की तस्वीर आपको बनाना अच्छा लगता है या फिर किसी इंसानी व्यक्तित्व की? एक और सवाल आपसे जोड़ लेते हैं कि कौन सा रंग तस्वीरों में भरना आपको सबसे प्यारा लगता है? वैसे जो पहला रंग गीत में भरा था वो प्यार का रंग था, जो पहला गीत हमने आपको सुनवाया, और अब इस गीत को आपको पहचानना है। जो चित्रकार हैं उनका नाम बताना है, और जो चित्रकार हैं वो किन की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर तस्वीरें आपने भी अपने एल्बम में सजा रखी होंगी श्रोताओं। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है कि जब चाहें तब तस्वीरें निकाल सकते हैं, तो एल्बम की बात करें और मोबाइल की तस्वीरों की बात करें तो किन्हें संजोना आपको अच्छा लगता है और किन तस्वीरों को आपने ज़्यादा समय तक संजो कर रखे हुआ है, तो ये बात आप हमसे साझा कर सकते हैं। आप सुन रहे थे ये गीत सफ़र फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में, और राजेश खन्ना जो शर्मिला टैगोर की तस्वीर बनाना चाहते हैं, ऐसा हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, समस्त सृष्टि की चित्र प्रतिमाएं सम्राट के मुकुट में जड़े रत्न मणियों जैसी लगती हैं, जिसे देखने को आंखें आतुर रहती हैं, जैसे कि किसी की बोलती आंखें रेशमी लहराती जुल्फें प्यार की ख्वाहिशों को जगाकर रूहानी मोहब्बत बन जाती हैं, यही प्यार के मोती स्मृतियों के पर्दे पर बिखरने लगते हैं, तब लगता है वास्तविक अनुभूति की अनोखी बात। और एक और श्रोता लिखते हैं, लियोनार्डो द विंसी के द्वारा कैनवास पर बनाई गई तस्वीर में इस कायनात के सारे रंग मौजूद हैं, रहस्य रोमांच मुस्कान शालीनता सुंदरता सब कुछ ही तो समाहित है। आप जिस एंगल से इस तस्वीर को देखोगे, इसकी सम्मोहित करती आंखें उसी ओर से आपको दिखाई देंगी। ऐसा लगता है कि हम तस्वीर नहीं देख रहे बल्कि तस्वीर हमें देख रही है। तस्वीर बना बीते हुए दिनों की यादों का पिटारा होती है। आज भी जब मैं पुरानी तस्वीरों को देखता हूँ तो सारी यादें मस्तिष्क पटल पर चलचित्र की भांति घूम जाती हैं और बीते दिन याद आ जाते हैं। कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखे हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। और एक और श्रोता ने लिखा है शब्दों के बारे में कि तस्वीर शहंशाह जीवन आंखें जुल्फ झूमती मोहब्बत और बात, ये शब्द शायद हो सकते हैं। अब आपको ये तस्वीर किनकी बन रही है पहचानना है और ये अदाकार कौन है।

भारत भूषण पर फिल्माया गया संगीत सम्राट तानसेन फिल्म का यह गीत था शैलेंद्र का लिखा एसएन त्रिपाठी की तर्ज थी मुकेश की आवाज थी। एक श्रोता लिखते हैं आज इबारत यादों के कैनवास पर तस्वीरों की बातें कर रही हैं इसलिए गीत इन्हीं पर आधारित होंगे और कुछ गीत इन्होंने बताए हैं बेशक यही गीत हैं और तस्वीरों की बातें हम कर रहे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुछ गीतों के बारे में और उसके बाद तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी पर ऐसे तो हो जिस तरह मौसम बदलता है तुमको भी देखूं रंग बदलते हुए। एक और श्रोता ने लिखा है तस्वीर आंखें जीवन जुल्फ प्यार हवा मोहब्बत तस्वीर मोती साहिल यूवर्स हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है आज के शब्द जीवन आँखें ठंडी हवा जुल्फ मोहब्बत और तमाम इन्होंने शब्द लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है गद्यांश में आज तस्वीरों की बातें हुई हैं जो प्यार के एहसासों और यादों की महफिल सजाए हुए हैं। एक और श्रोता लिखती हैं तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसे देखते ही मन उड़ने लगता है आज तस्वीरों के माध्यम से सुंदर गीत सुनेंगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज इबारत तस्वीरों में समाई हुई है ये तस्वीरें सिर्फ कैमरा द्वारा या कागज के कैनवास पर खींची रंग भरी लकीरें नहीं बीते हुए लम्हों की यादें हैं जिसे देख मन उन पुराने गलियारों की ओर चल पड़ता है जिसे देख दिल बोल उठता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हाँ एक बात है जो बात तुझमें मुझमें या हम में है वो तस्वीर में नहीं हो सकती लेकिन इन्हें देखकर दिल बोल उठता है हमने देखी है तस्वीरों में उन आंखों की महकती खुशबू हाथ से छूकर इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। और कुछ बातें इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमारे पुराने यादों की गठरी खुलने वाली है सच में हमें काफी समय हो गया है हमारी अलमारी में रखे एल्बम को देखा नहीं हमने आज तो रविवार है छुट्टी का दिन है जरूर हम एल्बम में सजाए फोटो का दीदार करेंगे और सुरीला सफर में बने रहेंगे। जी हाँ तो बने रहिए सुरीला सफर कार्यक्रम में और बताइए कि एल्बम में कौन कौन सी तस्वीरें आपने सजा

एक श्रोता लिखते हैं कि एक तस्वीर सच में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या चेहरे का अक्स नहीं होती, अक्स होना चाहिए था श्रोताओं यहाँ पर, बल्कि ये बीते हुए समय का एक ठहरा हुआ दर्पण है। ये हमें उन अनमोल पलों और एहसासों, भावनाओं और यादों के समंदर में वापस ले जाती है, जहाँ रंगों की जीवंतता और प्यार की महक आज भी ताज़ा महसूस होती है। ये बीती हुई यादों को संजीवने का सबसे खूबसूरत और भावात्मक जरिया है। वास्तव में तस्वीरें हमारे जीवन की वो खिड़कियाँ हैं जिसे हम जब चाहें अपने बीते हुए कल को झांक सकते हैं और अपनों के साथ बिताए प्यार को फिर से महसूस कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हमारे शहर में बारिश की आशा है। जी हाँ, तो बारिश हो जाए तो क्या ही बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, सागर भी तरसते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, और तमाम सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता ने जीवन से भरी तेरी आंखें, झूमती चली हवा, तस्वीर तेरे दिल में, ये सारे गानों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं ये कायनात के राज समझना सचमुच बहुत मुश्किल है, सुंदर सी ये रचना किसी मूर्तिकार की मूर्ति की तरह नजर आती है। कुछ गीत लिख रहा हूँ, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है एक शहनशाह ने बनवा कर, और कुछ एक गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं किसी की खूबसूरती की बातें होने वाली हैं, उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसके

आँखों की भी बातें तो हम जरूर सुनेंगे। और इन्होंने और कुछ भी बातें लिखी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि वक्त के हाथों में सबकी तकदीर है, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं, तस्वीर तेरी दिल में। और तमाम गीतों को इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर के बारे में लिखना, तस्वीर बनाता हूँ नहीं बनती, और एक ख्वाब सा देखा है ताबीर नहीं बनती, और गीतों को मिलाकर इन्होंने कुछ पैरोडी की तरह बनाया हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं तस्वीर और हकीकत का रिश्ता बड़ा अजीब है, तस्वीर वक्त के समंदर से चुराया हुआ एक ठहरा हुआ लम्हा है, जहाँ न कभी उम्र बढ़ती है और न मुस्कुराहट फीकी पड़ती है, जबकि हकीकत लगातार बहती हुई नदी है जो हमें आज के सच से रूबरू कराती है। तस्वीर अतीत की एक सुरक्षित तिजोरी है जिसे विपरीत हकीकत गतिशील है, जहाँ वक्त का गुजरना चेहरों चेहरे की झुरियाँ और अनुभवों का जुड़ना शामिल है। तस्वीरें यादों का आईना होने के नाते बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन जब कोई हकीकत में हमारे सामने बैठकर बात करता है तो उसकी आवाज़ की खनक और सांसों की गर्माहट जो जीवंत एहसास देती है उसे दुनिया का बड़े से बड़ा फोटोग्राफर भी कभी कैमरे में कैद नहीं कर सकता, ऐसा इनका लिखना है। कश्मीर की तस्वीर के बारे में हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, और ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों के बारे में पूछा था। क्या आपको सनसेट की तस्वीरें निकालना पसंद है?

श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे थे बिन बादल बरसात फिल्म से, जो आशा पारेख और विश्वजीत पर फिल्माया गया। और इसके पहले हमने बेमिसाल फिल्म का गीत आपको सुनवाया था। विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन और राखी पर फिल्माया गया ये गीत, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेम रस में डूबी इबारत तस्वीर के सहारे झूमती हिचको लिखाती समुद्र में गोती लगा रही है, प्रेम रस से सराबोर गीत आज बजने वाले हैं, तो आपको इसके लिए तो कार्यक्रम सुनना होगा।

एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीर में मुस्कुराती वो लड़की जैसे खामोश कहानी हो, उसकी आंखें कुछ कहती हैं, उसकी मुस्कान को छुपाती है और देखने वाला अपनी यादों का अर्थ उसमें ढूंढ लेता है। एक और श्रोता ने इस टेक्स्ट को अंग्रेजी में लिखा है, वैसे आप हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। श्रोताओं, इनका टेक्स्ट हम पढ़ देते हैं क्योंकि इनके कई बार टेक्स्ट आ चुके हैं और सारे अंग्रेजी में ही रहते हैं, तो हम इनसे यही गुजारिश करेंगे कि आप हिंदी में टेक्स्ट लिखें तो बहुत ही क्या ही बात है। फिर लिखते हैं कि द टेक्स्ट इज़ अबाउट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैनकाइंड एंड दैट इज आइज। विदाउट दैट गिफ्ट ह्यूमन लाइफ इज यूजलेस। ब्यूटिफुल आइज आर पार्ट एंड पार्टिकल ऑफ ह्यूमन ब्यूटी। अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स एंड पोइम्स as well as prose have described the beauty of eyes. All the best. इन्होंने एक दूसरे श्रोता हमारे लिखते हैं, कायनात की सबसे सुंदर खूबसूरत तस्वीरें अक्सर दिल में बसती हैं, कुछ आंखें, कुछ जुल्फें और कुछ बातें उम्र भर याद रह जाती हैं। वक्त बीत जाता है मगर उनकी यादें दिल के साहिल पर लहरों की तरह लौटती रहती हैं। मोहब्बत की मोती आज भी यादों के कैनवास पर चमकते हैं। तस्वीरें बहुत कुछ संभाल लेती हैं लेकिन एहसासों की गर्माहट कहाँ सहेज पाती हैं, इसलिए दिल आज भी धीरे से कह उठता है, वो बात तस्वीर में कहाँ। जो आगे भी इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं, आप फिलहाल ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए कि ये जो चिट्ठी है यानी जो खत है उसमें किसकी तस्वीर नजर आती है और ये अभिनेत्री कौन है।

जागीरदार जो एक्टर हैं उनकी तस्वीर नजर आती है इस गीत में श्रोताओं, जो अभिनेत्री अजरा के हाथ में है। बाबर फिल्म का ये गीत आपने सुना, साहिल लुधियानवी का लिखा, रोशन का संगीत था। ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत प्यार मोहब्बत वादे बोलती आंखें लहराती जुल्फें कस्में वादे प्यार वफा जैसे खूबसूरत अल्फाजों से सजे एहसासों को प्रदर्शित कर

लगती है। समय का चक्र इन घावों पर मलहम लगाकर भर देता है, पर फिर भी दिल के किसी न किसी कोने में वो तस्वीर उभर आती है जो अतीत के जीवन को साफ साफ दर्पण में जो अतीत को साफ साफ दर्पण में दिखती है। अतीत की यादें कभी मिटती नहीं हैं, वो धुंधली जरूर हो जाती हैं। जी हाँ, इन्हीं तस्वीरों की यादें आप साझा कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों की बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि तस्वीरें इसलिए खूबसूरत नहीं होती कि उनमें कोई चेहरा है, बल्कि इसलिए होती हैं कि उनमें एक सच्चा एहसास बसा होता है। जब सादगी और मुस्कान साथ हों तो तस्वीर सिर्फ देखी नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। तो आपको भी ऐसी ही तस्वीरों के बारे में बताना है। और श्रोताओं, आजकल तो लोग यानी कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं ऐसी जगहों की तरफ घूमने चल दिए होंगे जहां बारिशों में बड़ी सुंदर तस्वीरें उतारी जा सकती हैं। तो क्या आप भी ऐसे सफ़र पर हैं, या कभी आपने बारिशों की तस्वीरें किसी ख़ास जगह पर उतारी हो, तो आप हमसे ज़रूर कह सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तस्वीर की बात कहूँ तो जब मैं एनसीसी कैंप भोपाल गया था तो मुझे राइफ़ल SLR चलाने के लिए दी गई थी। सचमुच ही वो मुझे बहुत आज भी याद है। उस राइफ़ल की तस्वीर आज भी मेरे एल्बम में रखी हुई है, जिसमें दाहिने हाथ में मैं खड़ा हूँ, बाएँ हाथ में मेरे मैनेजर सर हैं। सचमुच ही तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सुरीला सफर।

बहुत सारे शीशों में नजर आती है श्रोताओ, इन शीशों की कुछ खासियत है, इनके बारे में क्या आप जानते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। मुगले आजम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में शकील बदायूनी का लिखा ये गीत था। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रकृति के रंग कभी बनावटी नहीं होते, इसलिए वे हमेशा दिल को अच्छे लगते हैं। शायद सच्ची खूबसूरती भी वही है जो बिल्कुल सहज हो। हर फूल एक रंग है, हर पत्ता एक मुस्कान और हर सुबह प्रकृति की बनाई हुई एक नई तस्वीर। बस उसे महसूस करने का मन होना चाहिए। एक और श्रोता लिखती हैं, रात में जब चांद की रोशनी सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ताजमहल चांदी की हल्की परत से ढक गया हो। यमुना नदी के शांत जल में ताजमहल का प्रतिबिंब इस सौंदर्य को और भी मोहक बना देता है। आपको फिल्म पहचाननी है और कलाकार।

0: संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में तस्वीर तेरी दिल में।
1: श्रोताओ, एक सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या तस्वीरें बनाना आपको पसंद है? क्या आप तस्वीर बनाते हैं?

चौधरी की तरह थी। एक श्रोता लिखती हैं, सुंदर चेहरा और सुंदर आंखें केवल ईश्वर के द्वारा ही बनाई जा सकती हैं, असलियत में चित्रों में नहीं। एक और श्रोता लिखती हैं, चांदनी रात में खिली किसी मुस्कान सी वो हसीन तस्वीर जैसे किसी खूबसूरत नज़्म का अधूरा शेर हो। इसे निहारते हुए ऐसा लगता है मानो थम गया हो वक्त। वो अल्लड़ अदाएं जो तस्वीर में भी एक मदहोश कर देने वाली दास्तान कहती हैं। और इसके आगे भी इन्होंने लिखा है, एक और श्रोता लिखती हैं, कायनात की तस्वीर ईश्वर ने न जाने कौन से कलम से, कौन से रंगों से उकेरी है, कौन से कागज़ कैंची से पत्ते काटे, अलग अलग शेप पर साइज सेम, और कौन से महीन ब्रश से ऐसे रंग भर दिए, रोम रोम साफ दिखता है, कितना भी कोशिश करो वैसा फिर कोई नहीं बना सकता।

12वीं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज़ में, अखमार बाराबंकी के बोल थे, शौकत दहलवी के तर्स आपने सुनी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैंने बहुत सी पेंटिंग जिसमें सीनरी फूलों की अल्पना मॉडर्न पेंटिंग वगैरह बनाई है, शादी ब्याह के बाद अब कुछ खो गई हैं, कुछ ख़राब हो गई हैं, तो पेंटिंग जो है, मेरे चाचा को तरह तरह की पेंटिंग बहुत पसंद थी, उन्होंने मेरी पेंटिंग्स की बहुत कदर की और सामान जैसे ब्रश, कलर, बोर्ड बहुत ख़रीद कर दिए। अब वो नहीं हैं और उनके घर से पेंटिंग कहाँ गई पता नहीं। मेरी एक मॉडर्न पेंटिंग मेरे पिताजी के एक मित्र गए थे। जी हाँ, अगर कोई कला आप में है तो उसके लिए लोग आगे आएं और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो दें तो क्या ही अच्छी बात है। जैसे इन्होंने ब्रश और पेंट्स की बात कही। एक और श्रोता ने लिखा है कि 1970 में बहन की शादी की ब्लैक एंड वाइट एल्बम जब देखते हैं तो आश्चर्य होता है। उस समय के छोटे छोटे बच्चे आज 56-60 साल के हो गए हैं। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज हमारे शहर का मौसम खूबसूरत है, मौसम ठंडा है, रिमझिम रिमझिम फुहार हो रही है, मैंने इस मौसम की तस्वीर वीडियो बनाकर रखा हुआ है। पिछले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं, जो गीत आपने सुना, और इस गीत में आप बताइए कि अभिनेत्री कौन है।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि सनराइज सनसेट की फोटो खींचना बहुत पसंद है और बादलों की, काली घटाओं की, रात में चांद की, तारामंडल की, सबकी फोटो खींचना बहुत पसंद है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सूर्योदय, सूर्यास्त, नदियां, तालाब, झील, पर्वत, देवदार और वृक्ष पक्षी, ये सब बनाने में अच्छा लगता है।

शहर का तस्वीर है इस तस्वीर में, ताजमहल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। और इस तस्वीर में जो मुकम्मल बन नहीं पाती, ये है बीना रॉय की तस्वीर और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज़ में रोशन की तर्ज थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जी हाँ, परिवार के संबंधियों, यात्रा, प्रकृति सभी की हैं तस्वीरें, और नाना नानी, दादा दादी जी, माँ पापा की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी हैं। तो तस्वीरों की यादों को ताज़ा करता कार्यक्रम सुरीला सफ़र अब यहीं संपन्न होता है। आप रहिए विविध भारती के संग। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना संगीता श्रीवास्तव के साथ। रहिए विविध भारती के संग, क्योंकि आगे भी हैं हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है किताब पर। कहा जाता है कि समय बदल गया है, लोगों की आदतें बदल गई हैं और अब किताबों के लिए किसी के पास समय नहीं है। लेकिन हम थोड़ा ठहर कर देखें तो पाएंगे कि किताबें आज भी पढ़ी जा रही हैं, वो आज भी

किसी मेज पर खुली हुई मिल जाती हैं, किसी के बैग में रखी होती हैं या किसी पुस्तकालय की अलमारियों में पाठकों की प्रतीक्षा कर रही होती हैं, और किसी शांत कोने में बैठा पाठक अब भी उनके पन्नों में खो जाता है। जिंदगी में कोई किताब हमेशा के लिए बंद नहीं होती, बशर्ते वो अच्छी तरह पढ़ी गई हो या पढ़ी जा रही हो। कुछ ऐसी किताबें हमेशा जीवन की यात्रा में शामिल रहती हैं जो ईमानदारी से पढ़ी गई हो। ना तो किताबें हमारा साथ छोड़ेंगी और ना ही हम उन्हें त्याग पाएंगे, क्योंकि जो पन्ने हमने पढ़े वो बहुत बहुमूल्य थे। किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो समय की धड़कन को अपने भीतर संजोए रखती हैं। उनमें बीते युगों की स्मृतियां, वर्तमान की संवेदनाएं और भविष्य के सपने बसे होते हैं।

जब कोई व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ता है तो वो केवल अक्षरों को नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों की एक पूरी दुनिया से परिचित हो रहा होता है। आज भले ही मोबाइल और इंटरनेट ने जीवन में अपनी जगह बना ली हो, लेकिन किताबों का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। तकनीक ने तो किताबों को और अधिक सुलभ बना दिया है। ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के रूप में पुस्तकें हर दिन नए पाठकों तक पहुंच रही हैं। माध्यम बदल सकता है, लेकिन ज्ञान और साहित्य की प्यास वही की वही रहती है। किताबें मनुष्य को सोचने की शक्ति देती हैं, वो कल्पना को विस्तार देती हैं, संवेदनाओं को गहराई प्रदान करती हैं और जीवन को समझने का दृष्टिकोण देती हैं।

एक अच्छी पुस्तक पाठक के भीतर प्रश्न भी जगाती है और उनके उत्तर खोजने की प्रेरणा भी देती है। जब भी कोई बच्चा पहली कहानी पढ़कर मुस्कुराता है, कोई युवा किसी प्रेरणादायक पुस्तक से नया संकल्प लेता है, या कोई बुजुर्ग कविता के पन्नों में अपनी स्मृतियों को खोजता है, तब ये सिद्ध हो जाता है कि किताबें आज भी जीवंत हैं, वो पढ़ी जा रही हैं, समझी जा रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश फैला रही हैं। सच तो ये है कि सभ्यता के विकास की यात्रा में किताबें हमेशा इंसान की सबसे विश्वसनीय साथी रही हैं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, शब्दों की ये दुनिया अपनी महक कभी नहीं खोएगी। किताबें पढ़ी जा रही हैं क्योंकि मानव मन आज भी ज्ञान, संवेदना और आत्मिक समृद्धि की तलाश में है, और इस तलाश का सबसे सुंदर पड़ाव आज भी एक अच्छी किताब ही है। किताबें मौन होकर भी बहुत कुछ कहती हैं। जो उन्हें पढ़ लेता है वो जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने लगता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्ष

0: दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मानसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मानसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से

0: रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़।

0: जो बन गई मोती, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और सुमन कल्याणपुर का गाया, भरत व्यास की रचना थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
5: वो तेरे प्यार का।
4: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
5: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
4: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
6: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
4: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
7: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी।
4: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक, मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
8: होठों

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे थे लाज साहब, फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी। श्रोताओ, सदाबहार नगमे कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश आपने सुनी। ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सुहाना।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो तो

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को हैं और ये समय है आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग का आह्वान किया है।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार जल्द नई औद्योगिक नीति लागू करेगी। इसके तहत बिजली दरों को कम रखा जाएगा। चंडीगढ़ में कल शाम लीडरशिप कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आईटी क्षेत्र को विस्तार देने के लिए भी अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ में अपने 7.91% हिस्से को प्राप्त करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है और इस दिशा में

0: बातचीत लगातार जारी है। ऊना जिले के बीत क्षेत्र में सन 1949 में स्थापित ऐतिहासिक लाजपत राय वाटर वर्क्स टाहलीवाल जलापूर्ति योजना को हेरिटेज म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने योजना का निरीक्षण करने के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के ऐतिहासिक पंप हाउस, मशीनरी, तकनीकी अभिलेखों और जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़ी धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हेरिटेज म्यूजियम के रूप में विकसित होने के बाद ये परिसर विद्यार्थियों, अभियंताओं, शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से कई क्षेत्रों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राजधानी शिमला सहित कुछ अन्य इलाकों में बीती रात व्यापक वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का गंभीरता से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की टीमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उपलब्ध हैं और सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच कांगड़ा जिले में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने आज अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारी वर्षा से हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिला व उपमंडल स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पौंग डैम अधिकारियों को भी बांध से पानी छोड़ने की पूर्व सूचना निचले क्षेत्रों को समय पर देना सुनिश्चित करने को कहा है। भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा 22 जुलाई को मंडी में करदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने सहित करदाताओं को नए आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधानों के अनुरूप आयकर रिटर्न सही व समय पर दाखिल करने संबंधी जानकारी दी जाएगी। आयकर अधिकारी सुनील कुमार ने सभी करदाताओं, कर सलाहकारों और आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले नागरिकों से इस कार्यक्रम में चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है, मॉनसून सीजन में 8000 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण करेगा वन विभाग, रोपे जाएंगे 50 लाख पौधे। वाचक स्वर पूनम शर्मा।
0: बदलते मौसम, घटते हरित क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश अब हरियाली बचाने की सबसे बड़ी मुहिम को मिशन मोड में आगे बढ़ाने जा रहा है। इस बार के मॉनसून सीजन में वन विभाग ने राज्य में 7 से 8 हजार हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से करीब 4 हजार हेक्टेयर भूमि पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौधे रोपे जाएंगे। इसके लिए विभाग ने सभी वन मंडल स्तर पर तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का मौसम पौधरोपण के लिए सबसे आदर्श समय होता है, क्योंकि इस दौरान मिट्टी में पर्याप्त नमी और प्राकृतिक बारिश से पौधों की जीवित रहने की दर 90% तक हो जाती है। राज्य सरकार राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों के तहत लाखों पौधे लगा रही है। इस बार वन विभाग दुर्गम क्षेत्रों में सीड बॉल्स तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है, ताकि बारिश के समय बीज खुद अंकुरित हो सकें। राज्य के विभिन्न जिलों की भौगोलिक परिस्थितियों एवं संतुलित जलवायु के मुताबिक चिनार और अन्य प्रजातियों के पौधे रोपे जाएंगे। विभाग ने वर्ष 2030 तक मिशन 32 यानी राज्य के हरित आवरण को 32% तक बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है। इसके मद्देनजर इस बार के वन महोत्सव में प्रदेश के सभी जिलों में पौधरोपण अभियान को सफल बनाने के लिए विभाग ने टारगेट फिक्स किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाइका वानिकी परियोजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला में चिनार का पौधा रोपकर पौधरोपण अभियान का आगाज किया था। उसके बाद 25 जून को भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला

0: हर वर्ष की भांति इस बार भी वानिकी परियोजना मिशन 32 के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए जन सहभागिता और विभागीय स्तर पर पौधे रोपने के लिए कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत भी पिछले साल 124 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपने में सफलता हासिल की गई। जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश अब हरियाली बचाने की सबसे बड़ी मुहिम को मिशन मोड में आगे बढ़ाने जा रहा है। इस बार नई पीढ़ी के मन में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का बीज बोने की तैयारी है। प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूल जल्द ही छोटे छोटे हरित केंद्रों में बदलते नजर आएंगे, जहां हर पौधा माँ प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का प्रतीक बनेगा। यही वजह है कि सरकार ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान को इस बार व्यापक जनभागीदारी और सख्त निगरानी के साथ मिशन मोड में लागू करने का फैसला लिया है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में करीब 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से शुरू हुआ, ये अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे, जबकि हर जिले में समन्वय निगरानी समितियां गठित कर नियमित समीक्षा की जाएगी। हिमाचल में वन विभाग मिशन 32 को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नई तकनीक अपनाने जा रहा है। इसके तहत पौधरोपण अभियान में सीड बॉल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। शुरुआत में ट्रायल बेस पर इस तकनीक को बिलासपुर जिला में अपनाने का फैसला लिया है। तकनीक के सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं तो भविष्य में विभाग इस तकनीक को पूरे प्रदेश में उपयोग में लाएगा। वन विभाग ने इस वर्ष पौधरोपण अभियान के तहत करीब 8000 हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य तय किया है।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा।
2: आकाशवाणी धर्मशाला के साथ आप जुड़े हुए हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

पत्थर के सनम फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत की फरमाइश भेजी बारगी नगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश, शिवम, शुभांग और सृष्टि गढ़े ने। कुंडलेश्वर खंडवा से इस गीत को सुनना चाहते थे योगेश गुजराती, महिमा हर्षिता, भूमिका मुस्कान, रेखा गुजराती और अभय गुजराती। इस गीत की फरमाइश की श्री गंगानगर से नेकीराम बंसीवाल, जॉनी, धनराज बंसीवाल, गुंजन और प्रियंका और केशव भी यहीं से, केवर कॉलोनी बाड़वा मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली की फरमाइश थी। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओ कार्यक्रम मन चाहे गीत।

फिल्म आंधी का दो गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, रिमझिम गुप्ता की फरमाइश थी। कोटा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तुपानी डांगी, मिस टीना डांगी, लक्ष्य बाबू की ये फरमाइश थी। और लक्ष्मीपुरा देवास से नवीन वर्मा, विराट वर्मा, मीनू वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा। नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से इस गीत की फरमाइश करते हैं। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया की ये फरमाइश थी।

ठाकुर जनरल सिंह फिल्म में आशा भोसले को आपने सुना, असद भोपाली के बोलों को सुरों में ढाला गणेश ने, और फरमाइश की आप सभी ने सिमगा छत्तीसगढ़ से सविता प्रदीप जैन और इनके बहुत सारे साथी, और केदारनाथ सोसाइटी से, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करण राज और इनके परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते थे। तेलंगाना राजन्ना सिरिसिल्ला जिला विलासागर गांव से गंगाधर श्रीनिवास, लक्ष्मी प्रसन्ना, मनस्वी, माहिती चंद्रया, मल्लवा, नरेश, लावण्या, महसिविन, रेवंत, श्रीनु, सुजाता, ग्रीष्मा, दीपक, रमेश, कनक, लक्ष्मी, श्रीजा, साई कुमार और सुषमा।

ये गीत फिल्म लोफर से मोहम्मद रफी की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गीत को सुनना चाहा फैजल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन ने, और गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले आरती जोंदले, जिला लुधियाना मोहल्लापुर दाखा मंडी से राजेश अरुणा दीपक गौतम बिट्टू बिट्टी अरिहंत सुरभि और नगीना की फरमाइश आई। गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी इस गीत को सुनना चाहती थी।

ये गीत आपने सुना फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। इस गीत की फरमाइश की स्वामी देव बोधित सौ भवानी शंकर मिश्रा, गोवर्धन वर्मा, रवि मिश्रा और शंकर लाल पारिक ने, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा। खत्री कॉलोनी नया अंसार कच्छ से अब्दुल कादर शरीन, अब्दुल अजीज अफियत, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपार, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, मन चाहे गीत प्रोग्राम अब यहीं संपन्न होता है। रहिए विविध भारती के संग और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भेजते रहिए अपने पत्र चिट्ठियां, क्योंकि हमें रहता है आपकी फरमाइशों का इंतजार। दीजिए इजाजत आज के कार्यक्रम से, संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार।

0: विविध भारती नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार का लिखा नाटक यात्रा का अंत।
1: आप कब तक खड़े रहेंगे बाबू? यहाँ बैठ जाइए ना।
2: बैठ कर क्या करूंगा भाई, यूं ही ठीक हूँ।
1: कब से तो आप खड़े हैं, थक गए होंगे। मैं यहाँ जगह बनाई देता हूँ, बैठ जाइए।
2: मेरे लिए क्यों चिंता करते हो भाई, मैं ठीक हूँ।
1: आप कुछ चिंतित मालूम होते हैं।
2: चिंतित? चिंतित क्यों होऊंगा?
1: नहीं, आपको देखने से लगता है कि आप कुछ दुखी हैं।
2: मेरे सुख दुख से किसी को क्या मतलब?
1: आप यहाँ बैठ तो जाइए, दुनिया में आदमी है तो एक दूसरे की चिंता तो करनी चाहिए।
2: हाँ भाई, जरूर करनी चाहिए। तुम मेरी चिंता न करोगे तो कौन करेगा बेटे, कौन करेगा?
3: मैं लाचार हूँ पिताजी।
2: ये मेरी इज्जत का सवाल है राजेश बेटे, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
3: नरेश लाचार है तो मैं भी लाचार हूँ।
1: सुन रहे हैं क्या?
2: हाँ? नहीं भाई, सोचूंगा क्या, मेरे पास सोचने को है क्या?
1: घर परिवार में तो सब ठीक है ना?
2: हाँ, सब ठीक ही है।
4: क्या कह रहे हैं आप?
2: राजेश की माँ, जिस धरती पर मैं खड़ा था ना, वो धरती मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई है। मैं कैसे खड़ा रहूं यहाँ, जहां धरती तरक गई हो, दीवारें तरक गई हो, जिंदगी तरक गई हो, वहां राजेश की माँ मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा।
4: लेकिन आप क्या कह रहे हैं
3: पिताजी?
2: मुझे गलत नाम से न पुकारो।
1: आराम से बैठिए ना।

0: मैं बहुत ठीक हूँ भाई, बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी।
1: इसमें मेहरबानी की क्या बात है? आदमी एक दूसरे की मदद नहीं करेगा तो दूसरा करेगा कौन?
0: ठीक कह रहे हो तुम भाई।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
0: क्यों
1: नहीं पूछना चाहिए क्या?
0: नहीं भाई, पूछने में क्या हर्ज है।
1: मैंने यही जानने के लिए पूछ दिया कि कहाँ तक आपका साथ रहेगा, कहाँ जा रहे हैं आप?
0: यही तो नहीं मालूम है मुझे।
1: क्या कह रहे हैं आप?
0: सच ही तो कह रहा हूँ भाई, जानता तो बतलाने में हर्ज ही क्या था। मैं खुद नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ।

0: क्या होगा राजेश?
1: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ माँ।
0: सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा बेटे।
1: मैं अपनी ओर से कुछ उठा नहीं रख रहा हूँ माँ। मैं पिताजी की खोज में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेडियो से सूचना प्रसारित करा दी है, अखबारों में सूचना निकलवा दी है, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखा दी है और संबंधियों को भी लिख दिया है।
0: लेकिन ये सब करने से क्या होगा?
1: दूसरा और मैं क्या करूँ? तुम जो कहो मैं सब करने को तैयार हूँ।
0: मेरी समझ में कुछ आता है कि कहूँ? तुमने पहले कुछ नहीं सोचा।
1: मैं क्या जानता था कि ऐसा हो जाएगा? मैंने नहीं सोचा था कि पिताजी इस तरह एकाएक घर से चले जाएंगे।
0: सोचा तो मैंने भी नहीं था बेटे, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि वैसी स्थिति में वे कर क्या सकते थे। उन्होंने किस विश्वास के बल पर कृष्णा की शादी देखी थी, लेकिन उनका वो विश्वास ही टूट गया तो वे क्या करते?
1: मैं क्या कहूँ माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
0: तुम क्या कहोगे राजेश? अब तुम क्या कहोगे? तुम्हारे पिताजी ने किस उम्मीद और अरमान से बेटों को पढ़ाया लिखाया, क्यों कि बलाया? अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कमाया सब बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लगा दिया। ये कभी नहीं सोचा कि अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए।
1: मैं सब कुछ जानता हूँ माँ, सब कुछ जानता हूँ। यह सब कहने की जरूरत नहीं है।
0: इसी बात का दुख है बेटे कि तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, और तब भी तुम्हारे पिताजी को घर छोड़कर जाना पड़ा।
1: मुझे भी इसी बात का दुख है माँ। मैंने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके तो नहीं रुके।
0: लेकिन तुमने उन्हें अकेले छोड़ कैसे दिया?
1: मैं क्या करता माँ, मेरी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। मैंने कितना कहा लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। मैंने समझा अभी आवेश में है, कुछ देर में इधर उधर से घूमकर खुद ही वापस चले आएंगे।
0: कई दिन तो हो गए, कहीं उनका पता नहीं है।
1: यही तो मालूम नहीं होता कि कहाँ चले गए। ये नरेश के यहाँ तो नहीं गए होंगे?
0: नरेश करम तो देख आए थे, उनके यहाँ कैसे जा सकते हैं?
1: और कोई ऐसा रिश्तेदार और परिचित तो दिखाई नहीं पड़ता जहाँ वे जा सके।
0: जिसने अपने बेटे का घर छोड़ दिया है वो रिश्तेदार और परिचित के यहाँ जाएगा?
1: फिर कहाँ गए होंगे?
0: इसी से तो मुझे चिंता हो रही है, कहीं वे कुछ ऐसा न कर बैठे। मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी?
1: तुम चिंता न करो माँ, पिताजी का पता जरूर लगेगा, वे जरूर लौट कर आएंगे।
0: तुम उन्हें नहीं जानते बेटे, वे बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, आन के सामने भी और कोई बात नहीं सोचते। जिद और आन के चलते ही उन्होंने इतना कष्ट सहकर तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने तुम लोगों के विश्वास पर कृष्णा की शादी तय की थी। शादी न होने पर समाज में उनकी कितनी बेइज्जती होती, क्या वे कहीं मुंह दिखाने लायक रहती?
1: गलती तो जरूर हुई है माँ।
0: अब कहने से क्या होता है राजेश, तुम्हारे पिताजी चले गए, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई।
1: ऐसा न कहो माँ।
0: कहने न कहने से क्या, सच तो सच ही रहेगा ना। वे थे तो मेरे लिए सब कुछ था, वे चले गए, मेरा सब कुछ चला गया। मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी?
1: ऐसा ना कहो माँ, हम तो हैं।
0: कैसे विश्वास कर?

0: जिसने पिता की त्याग तपस्या के मूल्य नहीं समझा वो मेरी चिंता करेगा।
1: माँ ये क्या कह रही हो तुम?
0: सच ही तो कह रही हूँ बेटे, जो अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ, वही तो कह रही हूँ।
1: मुझे गलत न समझो माँ, मैंने इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं की थी, नहीं तो ऐसा क्या मैं कभी होने देता? पिताजी जो कहते जैसा कहते वही करता मैं।
0: अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पिताजी लौट आए, सकुशल लौट आए।
1: अपनी ओर से तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माँ।
0: कोशिश तो करनी ही है बेटे, मेरे मन में बार बार यही आ रहा है कि मैं भी उनके साथ क्यों नहीं चली गई, मुझे क्या हो गया था उस समय कि मैं खड़ी ठिठकी रही और वे मेरी आंखों के सामने से चली गए।
1: ये सब मत सोचो माँ, मत सोचो, जो होना होता है वही होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता।
0: जानती हूँ मैं, लेकिन इससे मेरे मन को संतोष नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। मैं कह देती हूँ राजेश, अगर वे लौट कर नहीं आए तो मैं ही इस घर में नहीं रहूंगी।
1: ये क्या कहती हो माँ?
0: मैं सच कहती हूँ बेटे, अगर तुम्हारे पिताजी लौट कर नहीं आए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी।
1: माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो माँ।
0: तुम्हें बताओ दूसरा मैं क्या कहूँ?
1: हमारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है माँ, उन्हें खोजने में मैं कुछ नहीं उठाने रखूंगा। मैं उमेश को इस काम के लिए शहर भेज रहा हूँ और मैं खुद भी घूम फिर कर उनका पता लगाऊंगा।
0: आशा तो तुमसे यही है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मन में तरह तरह की आशंकाएं आती रहती है।
1: मन को धीरज बंधाओ माँ, धीरज बंधाओ, मुझ पर विश्वास रखो। क्या है कृष्णा?
0: तुम यहाँ कब से खड़ी हो बेटी?
2: अभी ही आई हूँ माँ।
0: क्या बात है बेटी?
2: माँ खाना तैयार हो गया है।
0: मुझे तो भूख नहीं है।
2: क्यों माँ, सवेरे भी तुमने नहीं खाया था।
0: भूख होगी तो खा लूंगी।
1: पर इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो कैसे होगा माँ?
2: तुमने भी तो सवेरे नहीं खाया था भैया।
0: तुम भी खाना पीना ना छोड़ो राजेश।
1: मैंने नाश्ता किया था माँ, भूख नहीं मालूम हुई।
2: एक बात कहो माँ।
0: कहो ना, क्या बात है बेटे?
2: माँ मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मन अब बिल्कुल भर आया है माँ।
0: क्या बात है बेटी, कहो भी तो।
2: मैं तुम्हारी बातें अभी सुन रही थी माँ, तुम कहती हो कि पिताजी वापस नहीं आए तो तुम भी यह घर छोड़कर चली जाओगी, क्यों माँ?
0: यहाँ रहकर मैं क्या करूंगी बेटी?
2: लेकिन मेरा क्या होगा माँ, मेरा क्या होगा माँ, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे रहूंगी माँ?
1: ये सब क्या कह रही हो तुम, बेकार की बातें नहीं सोची जाती कृष्णा।
2: ये बेकार की बातें नहीं है भैया, जिंदगी की असलियत है। मेरे मन में शुरू से ही बेचैनी रही है और पिताजी के जाने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई है भैया। बार बार मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में सिर्फ मैं ही हूं।
0: ये सब नहीं कहते बेटी, ये सब नहीं कहते।
2: क्या करूं माँ, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझसे अब रहा नहीं जाता माँ। अपने ही कारण इस घर को बर्बाद और परेशान होते देख मैं सचमुच बहुत बेचैन हूं माँ। सब कुछ मेरी शादी के कारण ही तो हुआ है, इसी के लिए तो पिताजी इतने परेशान रहे, इसी के लिए तो घर के अपने लोगों में संघर्ष और तनाव बढ़ा, और इसी के कारण तो पिताजी को घर से चला जाना पड़ा। सबकी परेशानी की जड़ तो मैं ही हूं माँ, काश कि मैं नहीं रहती माँ।
0: ये सब क्या कहती है बेटी, ये सब मत कहा, मत कहा। जिंदगी है तो ये सब देखना और भोगना ही पड़ता है।
2: लेकिन तुम भी चली जाओगी माँ तो मैं कैसे रहूंगी माँ?
0: मैं अभी जा कहा रही हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं जा सकती हूँ भला? बिना तुम्हारा इंतजाम हुए मेरे मन को कहीं शांति मिलेगी? लेकिन मैं क्या कहूँ, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद

0: परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ।
1: हम सब दुखी हैं माँ, लेकिन सिर्फ दुखी होने से तो काम नहीं चलने वाला है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जितना कुछ कर सकते हैं करेंगे, जी जान लगा कर करेंगे। यह और कुछ सोचने का समय नहीं है, अभी तो उन्हें कहीं से खोज कर घर ले आना है।
0: हे भगवान, कहाँ होंगे वो, कैसे होंगे, उनकी रक्षा करना भगवान।
1: ये एकाएक क्या हो गया भैया, तुम सब कुछ जानते हो नरेश। मैं तो उस दिन रेडियो से सुनकर एकाएक सम रह गया, मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, कभी आपका तार मिला।
2: हाँ, मैंने सोचा शायद तुम्हारे यहाँ गए हो।
1: नहीं, मेरे यहाँ नहीं गए, मैंने तार का जवाब दे दिया था।
2: हाँ, मिल गया है।
1: लेकिन लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, क्या कहकर गए थे, कैसे गए यहाँ से?
2: तुम्हारे ही कारण ये सब हुआ, और तुम मुझसे पूछते हो ये हुआ कैसे?
1: मेरे कारण हुआ? मेरे कारण वे घर छोड़कर चले गए?
2: दूसरा क्या?
1: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया।
2: तुम सब समझते हो नरेश।
1: मैं कुछ नहीं समझता भैया।
2: तुम इतने सरल होते तो आज ऐसी बात ही नहीं होती।
1: मुझ पर कोई बड़ा इल्जाम मालूम होता है।
2: नहीं नरेश, इल्जाम लगाने वाला मैं कौन होता हूं। मुझे तो सिर्फ दुख है इस बात का कि जिस पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना किया, उन्हें हम लोगों के कारण घर छोड़ना पड़ा।
1: कुछ बात भी तो बतलाइए भैया।
2: कृष्णा की शादी के सिलसिले में पिताजी तुम्हारे पास गए थे?
1: गए तो थे।
2: तुमसे कुछ बातें हुई थी?
1: हुई थी।
2: तुमने क्या कहा था?
1: मैंने कहा था कि मैंने मकान में काम लगा दिया है, पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैंने अपनी लाचारी जाहिर की।
2: उसी लाचारी ने तो यह अनिष्ट कराया है नरेश।
1: आपके यहाँ क्या बातें हुई?
2: मैंने उनसे कहा था कि 40,000 रुपए बहुत होते हैं, अकेले मैं उतने रुपए नहीं दे सकूंगा, आधा नरेश दे दे तो आधा मैं दे दूंगा।
1: उन्होंने क्या कहा?
2: उन्होंने जो शादी तय की थी उसे तोड़ने को वो तैयार नहीं थे, और उसमें 40,000 से कम लगते नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं 20,000 रुपए देने को अभी भी तैयार हूं, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं था। और तुमने तो कुछ भी देने से साफ ही इनकार कर दिया।
1: मैं क्या कर सकता था भैया, मेरे रुपये मकान में लग गए हैं और मकान अभी अधूरा है।
2: अरे मकान कुछ दिन और अधूरा रह जाने से तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तुम चाहते तो पिताजी को आसानी से 15-20 हज़ार तो दे ही सकते थे। पिताजी की इच्छा पूरी हो जाती, कृष्णा की शादी भी हो जाती, और आज जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है इसका सामना तो नहीं करना पड़ता।
1: आप कहते तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी लाचारी की बात क्या कहूँ।
2: कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी लाचारी एक बहाना है। उनका सहज विश्वासी मन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे लगा कि वे एकाएक टूट गए।
1: मैं उनकी स्थिति समझता हूँ भैया, लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता था?
2: सब तो तुम ही कर सकते थे नरेश। तुमने रुपए दे दिए होते तो पिताजी को इस तरह घर तो नहीं छोड़ना पड़ता।
1: जब ऐसी बात थी तो आपने ही पूरे रुपये क्यों नहीं दे दिए? आपके पास रुपये नहीं थे क्या?
2: मुझे पहले शादी की बात का पता नहीं था, और मैंने कुछ रुपए खास काम में लगा दिए थे।
1: जानता हूं मैं वो खास काम, जमीन बाहर में भी खरीदी जा सकती थी।
2: मुझे शादी का पता रहता तो मैं कभी अपने रुपए जमीन में नहीं लगाता।
1: ये सब कहने की बातें हैं भैया।
2: तुम जो कहो नरेश, मैं अभी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं बहस में पड़ने की स्थिति में हूं भी नहीं। अभी मेरे सामने दूसरी समस्या है।
1: समस्या? क्या समस्या है?
2: पिताजी के चले जाने से तुम्हें दुख नहीं होता क्या?
1: होता क्यों नहीं भैया, लेकिन अब करना क्या है?
2: पहले तो पिताजी की खोज करनी है, उन्हें वापस ले आना है। माँ कहती है कि पिताजी नहीं आए तो वो भी कहीं चली जाएगी। कृष्णा कहती है कि माँ यहाँ नहीं रहेगी तो वो भी नहीं रहेगी।
1: समस्या तो कठिन है ही।
2: खोज के लिए जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं कर रहा हूं। ईश्वर करे वे वापस आ जाएं। कहीं कुछ हुआ तो बड़ी बदनामी होगी।
1: बदनामी तो होगी ही, लोग तरह तरह की बातें करेंगे।
2: ये तो है ही, अपना कर्तव्य भी तो है।
1: आप जो कुछ उचित समझे करें, मैं आपके साथ हूं।
2: पिताजी आए या ना आए, असली समस्या तो अपनी जगह पर है, और उसे हम ही लोगों को सुलझाना है।
1: आप कृष्णा की शादी की बात कर रहे हैं?
2: हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। अब तो वो हम ही लोगों की जिम्मेवारी है ना। अब हम लोग उसे किसी दूसरे पर तो नहीं फेंक सकते। जैसे भी हो
1: हम ही लोगों को निभाना है।
3: हाँ, उसे भी देखा जाएगा भैया।
1: तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए।
3: मुझसे जो हो सकेगा जरूर करूंगा। पहले पिताजी के बारे में कुछ पता तो लगे।
0: क्यों बेटे, कुछ पता लगा?
1: नहीं माँ, कुछ भी नहीं मालूम हुआ।
0: कितने दिन तो हो गए।
1: हाँ माँ, इसीलिए अब मुझे भी चिंता होने लगी है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं रखा है। जहां जहां सूचनाएं दे सकता था सब जगह मैंने दे दी है। उमेश को भी मैंने इधर उधर घूमकर पता लगाने के लिए भेजा, खुद भी बाहर गया, पर कहीं कोई पता नहीं मिला।
0: ये सब तो मैं देख रही हूँ।
1: अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता।
0: मेरी भी आशा अब शेष हो गई है। अब क्या होगा?
1: जो ईश्वर की इच्छा होगी। ईश्वर की ही इच्छा है तो किया क्या जा सकता है।
0: क्या सोच रहे हो तुम?
1: अब मैं क्या सोचूं माँ?
0: मैं कहीं जा तो नहीं सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं भी अब बहुत दिनों तक जीऊंगी नहीं।
1: ऐसा ना कहो माँ।
0: अब मैं क्या करूंगी बेटे? अब जिंदगी में मेरे लिए रह क्या गया है? अब मुझे चिंता है तो सिर्फ कृष्णा की।
1: उसके लिए चिंता ना करो माँ, उसके लिए हम लोग हैं।
0: किसी तरह उसकी शादी हो जाती तो मैं निश्चिंत हो पाती। मरती भी तो शांति से मरती।
1: यह सब मत कहो माँ, कृष्णा की शादी होगी और अच्छी जगह अच्छी तरह होगी।
0: लेकिन उनकी इच्छा तो पूरी नहीं होगी बेटे। जो इच्छा उनके मन में थी, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ दिया, वो तो पूरी नहीं होगी।
1: होगी क्यों नहीं माँ? कृष्णा की पूरी जिम्मेवारी हम लोगों पर है। हम लोग उसे सुखी देखना चाहते हैं।
0: मैं तो चाहूंगी कि जो शादी तुम्हारे पिताजी ने तय की थी वही हो।
1: तुम जो कहोगी वही होगा माँ।
0: इतना आसान है बेटे?
1: है कि नहीं?
0: इतने रुपए लगेंगे।
1: हम लोग खर्च करने को तैयार है माँ।
0: फिर तो वही समस्या आएगी कि आधा नरेश दे आधा तुम दोगे।
1: मैंने नरेश से बातें की है।
0: क्या कहता है वो?
1: कहता है जितना उससे हो सकेगा जरूर देगा।
0: और उससे कुछ ना हो सका तब?
1: नहीं माँ, इस बार वह ऐसा नहीं करेगा।
0: मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। नरेश क्या कहता है क्या करेगा नहीं कहा जा सकता। पिछली बार उसने ठीक मौके पर इनकार कर दिया था।
1: पर इस बार ऐसा नहीं होगा माँ, वह कुछ नहीं देगा तभी शादी होगी।
0: कौन करेगा इतना खर्च?
1: क्यों, मैं करूँगा।
0: सचमुच?
1: एक बार मुझसे एक गलती हो गई है माँ, मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता।
0: तुमने अच्छी तरह सोच लिया है?
1: हाँ, सोच ही लिया है।
0: और बहू से पूछा है तुमने?
1: पूछना क्या है माँ, मैं जो कहूँगा उसमें उसे एतराज नहीं होना चाहिए।
0: चाहिए तो नहीं, लेकिन उसकी राय जरूरी है बेटे, वो भी तो इस घर में है।
1: ठीक है, कहती हो तो पूछ लूंगा।
0: अपने पिताजी के बारे में भी पता लगाते रहना।
1: हाँ माँ, मैं निश्चिंत नहीं बैठा हूँ। तुम क्या सोच रही हो कमला?
0: सोचना क्या है?
1: पिताजी का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन उनकी इच्छा किसी तरह पूरी होनी चाहिए।
0: कैसी इच्छा?
1: कृष्णा की शादी की।
0: हाँ, शादी तो करनी ही है।
1: माँ कहती है कि जो शादी पिताजी ने तय की थी वही होनी चाहिए।
0: उसमें तो बहुत रुपये लगेंगे।
1: हाँ, रुपये तो लगेंगे ही।
0: आएंगे कहाँ से?
1: उपाय करना पड़ेगा।
0: क्या उपाय करेंगे आप?
1: अरे उपाय क्या, शहर के लोग करने आएंगे, हम ही लोगों को तो करना है ना।
0: वही तो पूछ रही हूँ मैं।
1: उपाय सीधा है, हम लोगों को ही सारे रुपए खर्च करने पड़ेंगे।
0: क्या सब रुपए आप खर्च करेंगे?
1: तो दूसरा कौन करेगा?
0: और नरेश?
1: फिर तुमने वही पुराना सवाल उठाया।
0: सवाल तो उठाना ही पड़ता है, जब दोनों भाई कमाने वाले हैं, समर्थ है, तो बहन की जिम्मेदारी दोनों पर है।
1: और उनमें से कोई एक अपनी जिम्मेदारी ना समझे तब?
0: समझेगा क्यों नहीं, उसे समझाना पड़ेगा।
1: और यदि वो समझने से इनकार कर दे तब?
0: तब परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा। नरेश आधा देता है तो ठीक है, हमें आधा देने में कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर वो बिल्कुल हाथ खींच लेता है तब तो हमें सोचना पड़ेगा।
1: और क्या सोचना पड़ेगा?
0: हमें ही जब शादी तय करनी है तब हम अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे, कहीं ऐसी जगह करेंगे जहाँ कम पैसे लगे।
1: ओफो, यह संभव नहीं है कमला, पैसे कहीं कम नहीं लगेंगे। पिताजी ने कुछ सोच समझ कर ही शादी तय की थी। वे कृष्णा की शादी अच्छे लड़के से करना चाहते थे, हम उनकी इच्छा नहीं पूरी

0: सकी, तो वे घर छोड़कर चले गए। अब हमें कम से कम माँ की इच्छा का तो ख्याल करना है।
1: ख्याल करने का ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल न करें। अपनी तीन बच्चियां हैं, अपना मुन्ना है, इनके भविष्य को भी तो देखना है।
2: भैया भैया भैया, ये क्या हो गया भैया?
0: क्या
2: हो गया?
0: क्या हुआ क्या नरेश?
2: चक्कर दिखे तो भैया, कृष्णा ने आत्महत्या कर ली है भैया।

0: मैंने कभी सोचा भी ना था कि ऐसा होगा। तुमने चिट्ठी देखी है नरेश? कृष्णा ने लिखा है।
1: मेरी प्यारी माँ, जब तुम मेरा निर्जीव शरीर हवा में झूलता देखोगी, तब तुम्हारी जो हालत होगी उसे सोचकर मैं कांप उठती हूँ माँ। लेकिन मेरे लिए अब रास्ता ही क्या है? रोज रोज हर मिनट हर घड़ी मरने से तो एक ही बार मर जाना ज्यादा अच्छा है। मैं तुमसे बार बार कहती रही हूँ माँ कि मैं इन परिस्थितियों से ऊब गई हूँ माँ। अब मुझसे सहा नहीं जाता। सिर्फ मेरे कारण पूरा घर परेशान है। मेरे कारण पिताजी घर से चले गए। मेरे ही कारण तुम हमेशा चिंतित रहती हो। मेरे ही कारण माँ मेरे भाइयों में इतना तनाव है। मैं नहीं रहूंगी तो चारों ओर शांति हो जाएगी। माँ मैं जानती हूँ मौत किसी समस्या का इलाज नहीं है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं सूझता माँ। देखो मैं दहेज के लिए रुपए नहीं कमा सकती। मैं दहेज मांगने वालों से ये नहीं कह सकती कि रुपए मत मांगो। मैं अपने भाइयों पर दबाव नहीं डाल सकती माँ कि वे मेरे लिए त्याग करें। मेरे मन में ये बात बार बार आती है माँ कि मैं लड़की क्यों हुई माँ, क्यों लड़की हुई? लड़का हुई रहती तो पूरे परिवार के लिए समस्या तो नहीं बनती। मेरी माँ तुम्हें दुख तो जरूर होगा माँ, लेकिन मैं कर क्या सकती हूँ? अब मुझसे ये जिंदगी सही नहीं जाती माँ।

0: आप ही से तो पिछली बार भेंट हुई थी।
1: हाँ भाई, इसी ट्रेन में।
0: ठीक तो है?
1: ठीक ही हूँ।
0: कहाँ जा रहे हैं?
1: मैंने कहा था ना, मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई जगह उतरा लेकिन कहीं रुक नहीं सका। भी मैं नहीं जानता मेरी यात्रा का कहाँ अंत होगा।
0: आपके अंदर जरूर कोई बेचैनी है।
1: ये अखबार आज का है?
0: हाँ, आज ही का है। लीजिए, देखिए।
1: ये पत्र राजेश ने छपवाया है क्या?
0: राजेश कौन?
1: कोई नहीं, किसी राजेश ने ये पत्र छपवाया है, वही देख रहा हूँ।
2: पूज्य पिताजी, पता नहीं आप कहाँ हैं। अगर आप यह पत्र देखें तो जहां भी हो लौट आइए। हमें माफ कर दीजिए, पूरा घर दुख में डूबा हुआ है। कृष्णा नहीं रही, माँ मरना सुन्न है।
1: कृष्णा नहीं रही, माँ मरना सुन्न है।

0: ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
1: क्या बात है भाई साहब?
0: मैं कहता हूं ऐसा नहीं हो सकता। कृष्णा, नहीं नहीं, क्या मतलब है इसका? कहां नहीं रही दुनिया में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
1: ये आपके घर की चिट्ठी है, लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
0: लौट कर क्या करूंगा, क्या करूंगा लौट कर?
1: आपकी पत्नी बीमार है।
0: मेरी पत्नी बीमार है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई? मर गई, कैसे मर गई? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं घर छोड़कर भाग सकता हूं, तो क्या वो दुनिया नहीं छोड़ सकती? हा? क्या उसने आत्महत्या कर ली? नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की है, मैंने उसकी हत्या की है, मैंने उसकी हत्या की है।
1: लौट जाइए भाई साहब, लौट जाइए भाई साहब।
2: तो ये था नाटक यात्रा का अंत। इसके लेखक डॉक्टर सिद्धनाथ।
3: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
4: विविध भारती
5: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी फिल्म की कथा जब पर्दे से बाहर दर्शकों के दिलों को स्पर्श करती है तो वो फिल्म अपने किरदारों, गीतों और कथानक के जरिए बन जाती है सदाबहार। इसी तरह अपनी फिल्मों से दर्शकों की सोच को नई दिशा देने वाली निर्देशिका और पटकथा लेखिका हैं सई परांजपे, जिन्होंने पुरुषों के आधिपत्य वाले इस क्षेत्र में न सिर्फ कदम रखा बल्कि अपनी उपस्थिति भी खूब दर्ज कराई। सई परांजपे हिंदी सिनेमा की उन अग्रणी महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने फिल्म निर्देशन और पटकथा लेखन की बागडोर संभालकर इस क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया। आम जीवन की कहानी को भावपूर्ण तरीके से फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली सई परांजपे समानांतर सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम है। वो अपनी यादों का पिटारा खोलने वाली हैं हम सभी के सामने। उनकी फिल्मों के पीछे की कहानी सुनिए उनकी ही जुबानी। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत का पहला भाग।
1: सई जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है फिर से आकाशवाणी के स्टूडियो में आके?
2: बताऊं कैसे,
1: पुराना नाता है।
2: हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मैके पहुंच गई।
1: क्या बात है।
2: बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी यादें उमड़ के आ रही हैं। और रेडियो ये मेरा पहला कार्य था
1: जी।
2: और मेरा पहला प्यार कहिए, ऐसे लगता है कि दोबारा मैं वो सब अनुभव झेल रही हूँ।
1: मैं देख रहा था कि जब आपने हमारा लाइव स्टूडियो देखा तो आपकी आंखों में एक चमक थी और एक नमी
2: जी,
1: थी। काफी पुराने दिन आपको
2: जी,
1: याद आ गए।
2: जी, सही बात है
1: जी। रेडियो वाला मामला है, इसकी तो बात करेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि 8 बरस की उम्र में आपकी पहली किताब आ गई थी। मतलब लिखना जो है वो बिल्कुल संस्कारों में आपको मिला है।
2: जी बिल्कुल, मेरी माँ एक बहुत अच्छी लेखिका थी। और क्या हुआ कि छोटेपन में माँ हमेशा मुझे कहानी, एक सोते वक्त एक कहानी, रोज हमारा दस्तूर था कि एक कहानी वो सुनाए और फिर मैं सो जाती थी।

0: एक दिन माँ ने कहा कि आज मैं बोर हो गई हूँ, तो आज मैं नहीं सुनाऊंगी, आज तुम कोई कहानी सुना मुझे,
1: वाह
0: सुनाओगी?
1: वाह,
0: तो मैंने कहा हाँ हाँ सुना सकती हूँ, और मैंने कुछ एक अपनी तरफ से कहानी सुनाई।
1: जी
0: और इतना मुझे अभी भी याद है कि उसमें एक कोई साधु बाबा थे जिनकी नीली दाढ़ी थी, और ऐसा क्या कुछ था। लेकिन कहानी सुनकर माँ ने कहा कि बुरी नहीं थी, वाह ये कहानी किसने तुम्हें सुनाई, मैंने तो नहीं सुनाई ये कहानी। तो मैंने कहा कुछ बड़प्पन से कि नहीं नहीं ये कहानी वैसे मैंने रचाई खुद। माँ ने
1: वाह
0: कहा क्या
1: वाह,
0: क्या कह रही हो, तुमने रचाई, बकवास कह रही है। मैंने कहा नहीं नहीं सचमुच मैंने ही रचाई। कहते और कोई कहानी है? मैंने कहा बतेरी है, बहुत सारी कहानियां मैंने सोची है। तो और एक कहानी बताई। लेकिन उस दिन से यूनुस मैं इतना खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने ये सब बताया, क्योंकि उस दिन से क्या हुआ, रोज मुझे 3 पन्ने लिखने पड़ने लगे। हाँ
1: ओहो
0: तब तक खेलने नहीं जाना,
1: हो
0: 3 पन्ने लिखो तुम, कहानियां बड़ी कहानीकार बन गई तुम, तो लिखो 3 पन्ने, कुछ ना कुछ लिखो और फिर खेलने जाओ।
1: तो मजा
0: तो
1: था कि
0: हाँ
1: सजा थी?
0: ये सजा लगती थी बिल्कुल मुझे, हाँ मजा जरा भी नहीं लगता था। पहले तो मजा लगा कि कहानी अपनी बहुत इतनी सराही गई, लेकिन बाद में खैर। तो ये जो भी मैंने कुछ लिखा उन दिनों बचपन में, तो मेरी माँ ने वो इकट्ठा करके उसकी किताब छपवाई, मराठी किताब थी, उसका नाम था मुलांसा मेवा,
1: वाह
0: मतलब
1: वाह,
0: बच्चों के लिए किशमिश कहो।
1: सुंदर नाम।
0: लेकिन मुझे लगता है यूनुस इसमें कोई मेरी इतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ी बात, क्योंकि ऐसे कितने होनहार बच्चे होंगे मुझे हमेशा लगता है अपने समाज में, जिनको मेरी माँ जैसी माँ नहीं मिली।
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: मेरी
1: जी
0: माँ एक जबरदस्त माँ होने के कारण वो सब ये कर पाई कि मुझे सराहना, मुझे इनकरेज करना और मुझसे लिखवाना और फिर वो छपवाना। तो ऐसे बहुत बच्चे होंगे ये मुझे अंदर से ही अंदर महसूस होता है। लेकिन चलो मेरी ये किस्मत थी कि मेरा एक CV में बढ़िया लगता है ना कि 8 साल की उम्र में किताब छपी।
1: लेकिन एक जो आपने जिक्र किया अपनी माँ का, शकुंतला परांजपे
0: जी
1: राज्यसभा की सदस्य रहीं,
0: हाँ
1: परिवार नियोजन, महिला
0: जी जी
1: शिक्षा को लेकर जो
0: हाँ
1: काम उन्होंने किया है, फिर एक और बात है कि आपके नाना जी फर्स्ट सीनियर रैंगलर ऑफ इंडिया,
0: करेक्ट
1: ये भी जो
0: हाँ
1: इन दोनों की जो छत्र छाया
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: दो महान हस्तियां,
0: जी
1: जाहिर है कि एक बहुत उर्वर जमीन आपको
0: इसमें
1: बचपन में
0: कोई
1: मिली।
0: शक नहीं। और बिल्कुल मैं कहती हूँ जहे नसीब के ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। और अफसोस कि मेरे नाना का गणित का जरा भी हिस्सा मेरी तरफ नहीं आया, जरा भी नहीं। मतलब शुरू में बहुत चाहते थे, सोचते थे कि अपनी पोती भी नाम कमाएगी गणित विषय में, लेकिन मेरा तो क्या कहें कोई रिश्ता रहा ही नहीं गणित के साथ। लेकिन नाना ने, हम दोनों सुबह सुबह घूमने निकलते थे, नाना को बहुत शौक था, वो 100 साल तकरीबन होके फिर चल बसे, उनकी तबीयत भी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो सुबह हम निकलते मैं उनके साथ, और वो रोज मुझे एक कहानी सुनाते थे कोई, वो कहानियां सुनाने का जमाना था। मेरे बचपन में मैंने तो बहुत कहानियां सुनी। तो वो ग्रिम्स या एंडरसन, ये जो तब के मशहूर लेखक थे बच्चों का बाल वाङ्मय लिखने वाले, तो उनमें से वो जाने से पहले वो पढ़ते थे कहानी कि आज सही को क्या सुनाया जाए, उसका तो यकीनन वो एक थोड़ा सा होमवर्क करते थे और फिर मुझे कहानी सुनाते थे। और ऐसे करके उन्होंने मुझ पे वो एक क्या कहें प्यार जतलाया, जिंदा किया मेरे अंदर। मैं बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं
1: जी
0: क्या कहना
1: बिल्कुल,
0: चाहती हूँ। तो ये उनकी बदौलत मैं इस क्षेत्र की तरफ मुड़ी। और माँ ने, माँ तो लेखिका भी थी और माँ खुद गणितज्ञ थी, उसने भी कैम्ब्रिज में जब लड़कियाँ मैट्रिक होने से पहले ही अपने ससुराल पहुँच जाती थी, उस ज़माने में माँ ने ना तो मैट्रिक सिर्फ किया लेकिन वो कैम्ब्रिज जाकर गणित की एक बहुत अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की। और फिर सोचा, वो थी तो अपना ही करने वाली थी, वो बड़ी धड़ल्ली औरत थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी इतनी दूर आए हैं लंदन, अब वापस ऐसे जाना तो थोड़ा यूरोप तो देखा जाए करके
1: बिल्कुल
0: वो स्विट्जरलैंड पहुंची। फिर उन्होंने वहाँ फ्रेंच सीखा बहुत अच्छी तरह। फिर एक बहुत बहुत हैंडसम रशियन पेंटर चित्रकार से मुलाकात हुई और प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों ने शादी की। 2 साल ये शादी टिकी और फिर अपने बच्ची को यानी कि मुझे लेकर माँ अपने देश वापस लौटी
1: और
0: और
1: पुणे आ गई।
0: हाँ पुणे आ गई और नाना के पास, मतलब अपने पिता के पास, मेरे नाना

0: नमाने या मराठी में कुंकू,
1: जी
0: हाँ उसमें अच्छा रोल था चित्रा का, जो कि शांता आप्टे हीरोइन थी फिल्म की, उनकी वो सौतेली माँ, लेकिन हम उम्र मतलब हीरोइन के उम्र की ही थी, उसके बाप से उसकी शादी होती है, लेकिन कोई खास रोल बना नहीं, अच्छा नहीं किया। मैंने कहा भी माँ को कि ये क्या तू कहते, इसीलिए तो एक ही की फिल्म मैंने दोबारा उस तरफ नहीं गई। लेकिन यूनुस एक बताना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने एक नाटक भी किया, लिखा भी, लेखिका तो थी, नाटक लिखा पांघर लेली कातड़ी, मतलब पहना हुआ खाल। हाँ तो उसमें एक किरदार है कोळिंड, हाँ
1: मछुआरी।
0: मछुआरी का, हाँ तुलसा नाम की, हाँ बहुत ही अजीबो गरीब वो रोल था। वो सोचा कि वो रोल तो मैं खुद करूंगी, माँ ने सोचा। लेकिन अब मछुआरी का रोल करना डिकंजम खाना पूना में बैठ के, वो तो आसान नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, हफ्ते में एक बार वो बम्बई जाने लगी है इस रिहर्सल के लिए, रोज रोज मतलब हफ्ते में एक बार सीधा डेक्कन क्वीन पकड़ के बम्बई पहुंचना, बम्बई से सीधा माहिम कोळीवाड़ा है, मतलब मछुआरे का जो माहिम का बहुत बड़ा बसता है वो, और साथ में मैं तब 4-5 साल की होंगी, और दिन भर फिर वहां पहुंच के माँ फटाफट जाके वो कोळी टाइप का साड़ी पहनती,
1: जी
0: गहने पहनती, बालों में फूल रचा लेती, और फिर उनका शुरू हो जाता था निरीक्षण कि वो सब औरतों को देखना, वो कैसे बैठती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे अंदाज है उनकी वगैरह वगैरह, और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती थी कि अरे मेरी माँ की अब ये मछुआरी कैसे और कब बन गई, और
1: वाह।
0: मेरे लिए ये बहुत ही एक अचंभा करने वाली बात थी। उस छोटी उम्र में जो नाटक से नाता जुड़ा जुड़ा ही रहा, वो कभी खत्म नहीं हुआ, और आगे जाकर मैंने भी बहुत नाटक लिखे, खेले, डायरेक्ट किया, वो एक प्यार बना रहा। लेकिन वो और फिर आगे जाकर जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंची, तो हमने स्टैनिस्लावस्की की पढ़ा, और स्टैनिस्लावस्की का कहना है आप तो जानते होंगे कि रोल तुम खुद जियो,
1: जी
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो वो तो पाठ मैंने छठी उम्र में माँ से सीखा था,
1: सही
0: हाँ कि
1: सही।
0: रोल कैसे जीते हैं, वो मछुआरा बन के माँ ने मुझे दिखा दिया। तो ये सब ऐसी बातें थी, और वाकई में बहुत ही हट के बहुत ही अलग ढंग के मेरी परवरिश रही, बहुत अजीबो गरीब ढंग से कह सकते हैं, और मेरी पिटाई भी बहुत होती थी
1: हाँ
0: क्यों,
1: ये कमाल की बात है कि आप
0: हाँ
1: बड़ी
0: नहीं
1: शरारती थी,
0: नहीं
1: रंगदार
0: शरारती
1: थी।
0: नहीं थी इतनी, मैं नहीं, मैं नहीं कहूंगी कि मैं बहुत हद से ज्यादा तो नहीं थी शरारती,
1: बस
0: लेकिन
1: जरूरत भर
0: मेरी
1: थी।
0: माँ हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और कोई वजह हो कभी ना भी हो, ज्यादातर ना भी होती थी, फिर भी मेरी दिन में पिटाई एक बार तो होनी ही थी। और हमारे गली में हमारे मोहल्ले में जब कोई बच्चा शरारत करे, कोई बच्चा सुने नहीं माँ बाप की और कुछ उल्टा सीधा काम करे, तो उसको उसके माँ बाप कहते थे तुम सही की तरह पिटाई करने का, हाँ,
1: अरे
0: और
1: बाप रे।
0: मुझे इतना अपमान लगता था, आई वुड फील सो ह्यूमिलिएटेड। तो ये बहुत था, इस बात पे मुझे अभी भी कभी याद आती है तो गुस्सा आता है माँ पर, बहुत गुस्सा आता है। लेकिन दूसरी तरफ इतना बेतहाशा प्यार और लाड, कि जब मैं छोटी थी ना तब लड़कियों की एक रीत थी कि अपनी गुड़िया की शादी करवाना,
1: वाह वाह,
0: हाँ
1: बड़ा प्यारा
0: तो
1: था ये।
0: हाँ बहुत स्वीट, तो हर लड़की की एक ना एक तो गुड़िया होती थी, और प्यारी गुड़िया, तो फिर गुड़िया की शादी होती थी, और बाकी सब लड़कियां फिर शादी में बुलाई जाती हो जाती थी। मेरी भी गुड़िया थी, लेकिन माँ कहती थी नहीं ये सब बकवास है, गुड़िया की शादी वादी कुछ नहीं, तो मैं कहती थी नहीं लेकिन मैं हर जगह जाती हूँ, मुझे भी तो बुलाना चाहिए, मैं भी बुलाना चाहती हूँ तुम्हारे, नहीं नहीं कोई शादी वादी नहीं, चुप करवाती थी मुझे। लेकिन एक दिन फिर मैं बहुत ही मैंने जिद की और बहुत ही हट गई, मैंने कहा नहीं मैं शादी तो ये होके ही रहेगी, तो फिर माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो फिर मुहूर्त देखते हैं, और बाकायदा मुहूर्त देखा, और
1: वाह
0: फिर तुलसी बाग करके पूना में एक बहुत फेमस मार्केट है, तो वहां से हमने एक जोड़ा खरीदा, गुड्डा गुड्डी कपड़े के थे हाँ दोनों, और गुड़िया के बाल थे अच्छे से काले काले, और छोटा सा जूड़ा था, और साड़ी पहनी थी मुझे अच्छी तरह याद है, हरी रंग की साड़ी थी। तो उनकी शादी हमारे घर हुई, बाकायदा हम एक महीना भर पहले उसकी तैयारी में थे, मतलब तुलसी बाग से ये छोटे छोटे मणि, उसको क्या बोलते हैं, पर्ल्स लाते थे, उनकी मालाएं बनाना, उनके कान के गहने बनाना, ये बनाना वो बनाना, क्या क्या क्या क्या चलता था। और फिर शादी के दिन एक तकरीबन 100 बच्चों को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, और 100-150 बच्चे बिन बुलाए भी आ गए
1: गजब।
0: इधर उधर से, और माँ ने एक सफेद घोड़ी बुक की,
1: अरे वाह।
0: सफेद घोड़ी, एक्चुअल घोड़ी। फिर एक बैंड बुलाया, स्काउट बैंड, साफे वाले, हाँ गुलाबी साफे वाले, सब यंग

0: 16-17 साल के जवान लड़के थे, अपने अपने वाद्य लेके आए, उनका बैंड और ये घोड़ी, और घोड़ी पर फिर मेरी गुड़िया, गुड्डा गुड़िया, और फिर हमारी बारात। हम घर से अपने निकले, हम परांजपे रोड पे थे, मेरे नाना से सड़क का नाम दिया था, तो वो उससे फिर अपटे रोड से होते हुए, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड से होते हुए, फिर वापस ऐसे पूरा हम डेक्कन जिमखाना तकरीबन घूम के पूरी हमारी बारात आई। और कितने महीनों तक ये चर्चा रही जारी पुना में कि सही के गुड़िया की शादी।
1: गजब गजब। हाँ, ये तो इतनी भव्यता के साथ, हाँ, शादी की गई
0: जी। और मेरी अपनी शादी में मां नहीं आई।
1: हाँ, ये भी एक विडंबना, हाँ, की बात लेकिन है। ये वाला जिक्र, हाँ, आगे की तरफ करेंगे, ये सूत्र पकड़ेंगे आगे। हाँ, लेकिन गुड्डे गुड़िया की शादी की बात चल रही है और गुड़िया जैसा नाजुक जज्बात यहाँ पर आया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: अरे क्यों
1: एक
0: नहीं,
1: फिल्म, हाँ, में जो बात आती है गुड़िया कब तक रूठी रहोगी,
0: हाँ, हाँ,
1: मुझे लगता है उसी जज्बात को वो आगे बढ़ा।
0: क्या बात,
1: तो वो गाना सुनते हुए आगे बढ़ाते हैं बात।

0: बचपन में आप बहुत पढ़ती थी और चार्ल्स
1: जी
0: डिकेंस और सब
1: जी
0: बड़े
1: या
0: साहित्यकारों
1: या
0: को पढ़
1: या
0: रखा
1: या
0: था।
1: थॉमस हार्डी, जेन ऑस्टन,
0: हाँ
1: स्कॉट और
0: बिल्कुल।
1: ये सब हुई बड़ों की किताबें, ये भी मैंने पढ़ी। नाना के साथ पढ़ती थी और मतलब मैं जोर से पढ़ती थी
0: वुदरिंग हाइट्स वगैरह।
1: वुदरिंग हाइट्स, यस एब्सोल्युटली, और ये क्या ब्रॉन्टे सिस्टर्स, हाँ, तो ये सब पढ़ती थी। और इसके अलावा बच्चों की किताबें भी बहुत पढ़ी मैंने, जैसे मराठी में तो खजाना है,
0: जी
1: हाँ, भारा भागवत और

0: दुनिया भर के साने गुरुजी और इतनी सारी किताबें। हाँ, और लक्ष्मीबाई टिळक की भी, जो कि बच्चों की नहीं है वो किताब, लेकिन वो भी बहुत, उनका आत्मचरित्र बहुत सुंदर बहुत बढ़िया था, वो पढ़ा। तो ये मैं बहुत पढ़ती थी और साथ साथ लिखती भी थी अपनी तरफ से, जो कुछ बचकानापन कहो। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, मेरे नाना भारत के पहले हाई कमिश्नर हुए ऑस्ट्रेलिया में, तो 4 साल हम ऑस्ट्रेलिया रहे, तो वहाँ फिर खजाना ही खजाना था बच्चों की किताबों का। वहाँ जाके फटाफट मैंने अंग्रेजी सीख ली और फिर ढेर सारी किताबें, अब मतलब कितना मैंने पढ़ा इसकी कोई गिनती नहीं। और पढ़ने के अलावा वहाँ बच्चों के लिए कार्यक्रम भी इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे होते हैं, फिल्म्स होती है, रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, नाटक होते हैं और जादू के प्रोग्राम्स होते हैं और क्या क्या क्या नहीं होता। तो वो सब मैं, इतना मुझे लगता है मैं बहुत समृद्ध हुई।
1: बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है क्योंकि
0: हाँ
1: आज के जमाने के बचपन से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बचपन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पिटाई भी है, इसमें किताबें हैं, इसमें जज्बात है, इसमें नाटकों की, एक तरह से नाटकों के संस्कार पढ़ रहे
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो ये तमाम चीजें हैं।
0: हाँ
1: लेकिन यहाँ एक और चीज है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और वो है अच्युत रानाडे साहब।
0: आहा, बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात। वो अच्युत मामा, उनको मैं अच्युत मामा कहती थी,
1: जी
0: बहुत ही उम्दा हस्ती थे। हाँ, और वो खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लिखते भी बहुत बढ़िया थे, हालांकि मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन से भी लेखक ज़्यादा अच्छे थे। और उनकी फिल्म गुड़िया, जो इप्सन का डॉल्स हाउस, आपने सुना होगा नाटक, तो डॉल्स हाउस पे बनी फिल्म उनकी गुड़िया नाम की, जिसमें उन्होंने बलराज साहनी को पहली बार स्क्रीन पे लाया। तो अच्युत मामा और बलराज साहनी बहुत दोस्त थे, तो बलराज ने उनके फिल्म में काम किया और अच्युत मामा ने बहुत मराठी और हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म उनकी याद है मुझे, फूल और कांटे एक फिल्म थी, फिर एक मंदार नाम की फिल्म थी, और फिर मराठी में जागा भाड़ैनी देने आए वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत ही फिल्में उनकी थी। तो वो और मैं, हम पूना में घूमते बहुत थे,
1: जी,
0: पूना वालों को घूमना बहुत पसंद है, एक उनके हिस्सा ही है
1: जीवन
0: तो
1: शैली का।
0: जीवन शैली का, बिल्कुल। तो ये हम जाते थे फर्गुसन टेकड़ी, टेकड़ी मतलब टीला, फर्गुसन टेकड़ी नाम का टीला था, उस पे चढ़ते थे, वहाँ एक मंदिर था, वो मंदिर तक पहुँचते थे, और जाते जाते अच्युत मामा कहानियाँ सुनाते, लेकिन कहानियाँ ऐसी वैसी नहीं, फिल्मों की कहानियाँ। हाँ
1: हाँ, ये
0: हाँ
1: बड़ा मजेदार
0: हाँ
1: है।
0: और वो फिल्में कौन सी, तो उन्होंने जो देखे, उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ था, उन्होंने अंग्रेजी फिल्मों के जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या द गुड अर्थ या वदरिंग हाइट्स वगैरह वगैरह, गैस लाइट, ऐसी इतनी फिल्मों की कहानियाँ मुझे सुनाई, और मराठी कहानियों की, फिल्मों की भी, जैसे शेजारी, बाणूस, राम शास्त्री, ये मराठी फिल्मों की भी कहानियाँ उसमें आती थी। और वो फिल्म कहानी इस तरह सुनाते थे यूनुस कि हम जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक छोटा सा गांव नीचे दिखता है, फिर एकदम एक हम सड़क पे जाते हैं, एक बैलगाड़ी जा रही है, हम बैलगाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं, और बैल के सींगों के बीच में से हमको एक दूर झोपड़ा दिखता है। मतलब ये पूरा सिनेमैटिकली बताते थे
1: वाह
0: कहानी, और
1: वाह,
0: वो जैसे कहानी झुलसती थी तो वो चित्र आंखों के सामने उभर जाता। और ये करके मैंने, मुझे तब मालूम नहीं था कि ये मैं सीख रही हूँ फिल्म टेक्निक, सीख रही हूँ अनजाने में, लेकिन ये क्या था, फिल्म टेक्निक ही तो था।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: तो ये उन्होंने सिखाया। और एक मज़े की बात आपको बता दूँ, बड़ा मुझे यहाँ मोह हो रहा है, रहा नहीं जाता, कि उन्होंने मुझे राम जोशी की कहानी सुनाई।
1: जी
0: राम
1: जी
0: जोशी हमारे एक बहुत बड़े शाहिर थे,
1: शायर हुए।
0: गाने
1: जी
0: वाले हैं,
1: जी
0: तो उनको पीने की आदत थी, और पीने से जैसे अनेक कलाकारों को तब के और अब के ये हमने देखा है पतन, तो वो भी शराब के बिल्कुल उसमें आ गए थे। तो एक दिन वो कहते हैं कि आज उनकी बुरी तरह, वो दूसरी जो हौसा वाडकर की भूमिका थी, वो उनको नीचा दिखाती है, एक कंपटीशन सा होता है, तो वो कहते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बस आज से शराब छोड़ दी है। और ये कहते तो है बड़े जोरों से, लेकिन कहते हैं फिर शाम को वो बड़े त्रस्त, बड़े परेशान, शराब नहीं पीनी तो बहुत परेशान। और अच्युत मामा ने कहा, फिर हम देख रहे हैं कि वो तलम धोती पहने हुए, सफ़ेद ऐसी, और सिर्फ हम उनके पैर देख रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और कैमरा उसके साथ साथ हम जा रहे हैं, और कैमरा के साथ हम, और उनके धोती के सुरई की नोक अटकती है। हाँ, सुरई की नोक ही कहते हैं ना, तो
1: जी,
0: सुरई की नोक अटकती है और वो सुरई साथ साथ उनके वो जा
1: खींची
0: रही
1: चली
0: है
1: आती
0: और
1: है।
0: ये हम देख रहे हैं। तो मैंने कहा, अच्युत मामा इसका मतलब क्यों,

0: कि शराब छूटी नहीं है ना, तो
1: हाँ
0: उसने कहा बहुत शाबाश, वेरी गुड, तुम बिल्कुल समझ गई हो और ये करेक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो नहीं छूटती उनकी शराब वगैरह वगैरह। तो आगे जाकर मैंने ये फिल्म देखी और ये दृश्य देखा, और सच बात कहूँ, थोड़ा घमंडीपन लगेगा
1: जी
0: लेकिन सच बात कहूँ तो मुझे लगा जो मैंने सोचा था वो ज़्यादा बेहतर था।
1: वाह
0: ये दरअसल पर्दे पे जो आया है इतना मज़ा नहीं आया, और मुझे लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगी, ये उस लम्हे तय हुआ,
1: वाह,
0: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं।
1: गजब गजब गजब। तो ये कितनी महत्वपूर्ण घटना है कि अच्युत मामा हैं वो एक तरह से सिनेमा के संस्कार देते
0: जी
1: हैं, वो
0: देखो वो
1: फिल्म
0: साथ साथ होता रहा
1: कह
0: है
1: के
0: ना।
1: सुनाते हैं,
0: हाँ
1: दूसरी तरफ नाटक चल रहा है,
0: हाँ
1: माँ जो है वो नाटक की प्रोसेस का हिस्सा
0: जी
1: बनाती
0: जी
1: है।
0: जी
1: लेकिन दो बातें जो हैं वो मुझे बड़ी जरूरी लग रही हैं पूछनी। एक तो ये कि मैथमेटिशियंस की फैमिली ये कहा जा सकता है क्योंकि माँ
0: जी
1: भी मैथमेटिक्स पढ़ी थी,
0: हाँ
1: वहां से निकलकर आने वाली एक लड़की मैथ्स नहीं चुनती है, क्यों? और फिर ये रास्ता रेडियो की तरफ कैसे चलता है, या रेडियो का रास्ता सही की तरफ कैसे आता है?
0: वो इत्तेफाक की बात है।
1: जी
0: हाँ अब मैथ्स में नहीं चुनी क्योंकि वो तो जाहिर है नहीं आता नहीं था, और कोई ज़बरदस्ती किसी ने नहीं की कि तुम्हारे नाना मैथमेटिशियन है तो तुमको ही करना, नहीं, वो जान गए कि इसके बस का नहीं है, इसको नहीं आता, तो मान गए बेचारे, क्या करते। लेकिन मेरी तब बीए की परीक्षा, बीए का इम्तिहान बहुत नज़दीक आया था, हाँ, और आखिरी महीने जैसा होता है मैं पढ़ाई मैंने शुरू की, साल भर मस्ती की, ये वो किया, और फिर जग गई आखिरी महीने में, तो फिर पढ़ाई शुरू। और इतने में एक दिन घर पे एक चपरासी आया, सरकारी बिल्कुल यूनिफॉर्म में, और एक ब्राउन रंग का लिफाफा लेके आया, सही परांठ पे कौन, मैंने कहा जी मैं हूँ, ये आपको आया है, पुणे रेडियो से आया था वो, आकाशवाणी पुणे से। और पढ़ा तो क्या था, ऑडिशंस थे दूसरे दिन, मराठी अनाउंसर के ऑडिशंस, और मुझे बुलाया था।
1: वाह,
0: अब क्यों कैसे ये आज तक मैं नहीं समझी, ये एक कमाल का इत्तेफाक मेरे ज़िंदगी का है कि
1: जी
0: ये किसने मुझे क्यों भेजा, ना मेरा कोई नाम था तब, कुछ नहीं कुछ नहीं, और मतलब कोई सवाल ही नहीं था कि मुझे कोई भेजे पूछे। तो माँ ने कहा कि कब है, कितने बजे है ये ऑडिशन, मैंने कहा ऐसे कुछ 5 बजे, कहते मतलब शाम को है, तो शाम को थोड़ी ना तुम पढ़ाई करती हो, वैसे भी पढ़ाई कब करती हो क्या पता, लेकिन शाम को तो नहीं ही करती हूँ, तो हो आओ देख तो लो क्या है, जाओ। तो फिर मैं साइकिल, तब साइकिल चलाती थी, अपनी साइकिल चला के डेकंजम खाना से, तब वो ससून के पास होता था, सेंट्रल बिल्डिंग्स में हमारा रेडियो स्टेशन था, वहाँ पहुँची और ड्यूटी ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा अच्छा आप ऑडिशन के लिए आइए आइए, एक कागज़ पकड़ाया मुझे, कहते ये आप पहले मन में पढ़ो 2-3 बार और फिर ये आपको पढ़ना है वहाँ। तो उसमें एक मुझे वाक्य अच्छी तरह याद है कि मराठी अनाउंसमेंट्स, ढगांचा गड़गड़ाटा सह विजांचा कड़कड़ाट हुई। हाँ
1: ओहो
0: अब मुझे माँ का एक और ये बताना, बताया नहीं मैंने कि कितना और क्या क्या बताऊँ, लेकिन संस्कृत पढ़ना और स्तोत्र और श्लोक, वैसे हमारा खानदान था नास्तिक, मेरे नाना नास्तिक थे, भगवान पूजा वूजा नहीं मानते थे, हालांकि उनके पिताजी गांव के पुजारी थे,
1: जी
0: लेकिन लंदन जाके उन्होंने जॉन मिल्स पढ़ा वगैरह वगैरह, उनमें परिवर्तन आया, ही बिकेम रैशनलिस्ट। और माँ भी मेरी रैशनलिस्ट थी, तो घर में देव पूजा वगैरह वगैरह नहीं होता था, लेकिन स्तोत्र सीखना और पढ़ना लाजमी था क्योंकि शुद्ध भाषा, और वो इतना खजाना है संस्कृत में, तो माँ ने कहा ये तो बहुत जरूरी है, और श्लोक आज भी मुझे 101 संस्कृत श्लोक जरूर आते होंगे, और
1: वाह,
0: स्तोत्र भी अभी गणपति स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र, राम रक्षा, ये सब मैं अभी भी, रावण स्तोत्र, जटा कटाह संभ्रम
1: वो
0: ब्रह्मणि
1: पूरा
0: ये
1: याद है,
0: पढ़े,
1: शिव तांडव स्तोत्र।
0: पूरा तो नहीं लेकिन याद है। तो ये जो मुझे आता था वो मैं ये ढगान सा गड़गड़ाट और बिजान सा कड़कड़ाट से क्या डरूं, है ना,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: वो मैंने घड़ाघड़ बोल दिया, सब चौंक गए कि अरे ये लड़की बहुत तेज निकली। और फिर जैसे मैं वो रेड लाइट ग्रीन लाइट उसका ड्रामा हो गया और फिर खत्म हो गया, लाइट बंद हो गया, तो मैंने दरवाजा, वो तो आपको क्या बताना कि दरवाजे कितने वे भारी
1: भारी
0: होते हैं,
1: होते हैं, खींच
0: वो
1: के
0: ऊँ ही
1: खोलो।
0: करके मैंने खोला दरवाजा, दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर खड़ा, कहता है कल से आ जाइए। मैंने कहा जी नहीं माफ कीजिए, मैं कल से तो नहीं आ सकती, मेरा इम्तिहान है, मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे इम्तिहान देना है, मैं नहीं कल से आ सकती। ओ हो, तो आप ऑडिशन के, तो मैंने कहा ऐसे आई देखने क्या होता है वगैरह, ओ हो, मायूस हुए सब लोग तो नहीं, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं आ सकती। फिर मैं चल पड़ी और जैसे मैं सेंट्रल बिल्डिंग्स के मेन गेट तक, फाटक तक पहुंची, एक चपरासी फिर मेरे पीछे दौड़ते आया, आपको बुलाया है, मैंने कहा नहीं आप

0: कहते नहीं नहीं बुलाया, आइए आइए। फिर गई, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी ये पढ़ेंगी आप अनाउंसमेंट्स, वो सिर्फ 5 मिनट की होती है और शाम को होती है। मैंने कहा कोशिश करते हैं लाइए। तो फिर और एक पन्ना पढ़ा, वो भी मैंने पढ़ा तो और भी आसान था, अंग्रेजी सिंपल था। फिर दरवाज़ा खोला, फिर दरवाजे में ड्यूटी ऑफिसर, कल से आ जाइए। और फिर कल से मैं जाने लगी
1: जी।
0: और तब वो मुझे तनख्वाह, अभी इससे पहले जब हम लोग बातें कर रहे थे तब बताया जैसे, तो मेरी तनख्वाह उन दिनों महीने की 50 रुपये।
1: वाह वाह
0: और
1: वाह,
0: मैं बड़ी खुश कि वाह वाह, ये तो आकाशवाणी को अपन ने कैसा ठगाया, इतना इतनी मज़े की बात, इतना मज़े का चांस, इतना अब सब जगह नाम हुआ कि अनाउंसर सही अनाउंसमेंट करती है और ऊपर से ये पॉकेट मनी 50 रुपये। बहुत खुश हुई और सचमुच मुझे लगता था कि आकाशवाणी को हमने बेवकूफ़ बनाया। और ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ बनी थी।
1: वाह, कुछ अनाउंसमेंट्स याद हैं शुरुआती तौर पर जो किए होंगे आपने?
0: नहीं नहीं, ऐसा कहते दिस इज ऑल इंडिया रेडियो पुणे एंड हियर आर द डेज अनाउंसमेंट्स गिविंग यू द वेदर फोरकास्ट एंड वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ।
1: अच्छा,
0: दिन का जो भी छोटा मोटा, तो 5 मिनट की अनाउंसमेंट थी, 5 या 10 मिनट की ऐसी, दैट्स इट। और हाँ, और फिर एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद उन्होंने कहा अब तो मराठी अनाउंसमेंट दे सकती हो। मैंने कहा हाँ अब तो दे सकती हो। तो तनख्वाह मेरी 50 से 150 बढ़ गई,
1: 3 गुना बढ़ गई।
0: 3 गुना, फिर भी 150 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। एनीवे, तो उसी में भी मैं खुश थी। तो वो मराठी अनाउंसमेंट करने लगी, लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं आया कि किसी का लिखा हुआ पढ़ते जाओ। तो एक दो दिन अच्छा लगा, लेकिन बाद में लगा कि इसमें कोई दम नहीं है। तो फिर बालोद्यान में करने लगी, बच्चों का कार्यक्रम, उसमें कॉम्पेयर बनी दीदी नाम से। हाँ, तो वो तो बात बनी फिर, दैट वाज ग्रेट फन, आई एंजॉयड दैट।
1: तब आप बड़ी लोकप्रिय हो गई और इतनी लोकप्रिय हो गई कि एक बार ट्रंक कॉल बुक किया।
0: नहीं, ट्रंक कॉल नहीं, वो हाँ। बताती हूँ किस्सा। ताई ताई कहते थे मराठी, ताई मतलब दीदी
1: जी।
0: तो 3 जने हम कंपेयरिंग करते थे, एक नाना जो बुजुर्ग थे जो प्रोड्यूसर थे गोपीनाथ तळवलकर, और मैं उनकी असिस्टेंट, मैं दीदी, और एक नेमीनाथ उपाध्याय करके एक देहाती कैरेक्टर था। तो हम तीनों की मिलजुल के बातें होती थी, हंसी मजाक, एक दूसरे की खिंचाई, बच्चों के साथ बातें वगैरह वगैरह, कार्यक्रम बहुत ही बच्चों को ये पसंद आता था। और नाना ताई हरवा बहुत प्यारे थे हर फैमिली में। तो एक दिन मुझे किसी का नंबर चाहिए था, टेलीफोन नंबर, उन दिनों मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं था। तो मैंने फ़ोन किया 199 को और मैंने कहा हेलो, मुझे गदी माडगुल करके घर का फ़ोन दे सकती हैं?
1: वाह वाह वाह।
0: तो लम्हे सन्नाटा, फिर मैंने कहा शायद सुना नहीं, मैंने कहा हेलो। तो उसने कहा ताई, ताई बोल रही है, टेलीफोन ऑपरेटर ने उधर से। मैं चौंक के मैंने कहा वाह वाह वाह, मेरा हो गया। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, रेडियो की ताई, बालोद्यान की ताई बोलते ना।
1: मैं सर
0: हाँ हाँ जी हाँ, मैं बोल रही हूँ, अरे ताई। एंड देन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक वो रुके ना, वो बेचारी इतना बोल रही थी कि कितना वो प्रोग्राम सुनती है, कितना उसको अच्छा लगता है, कितनी वो ताई से प्यार करती है ना, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं भी कुछ हाँ हूँ करती रही। और फिर बाद में मैंने कहा अच्छा नंबर दे रही है ना आप, तो उसने नंबर भी दिया। फिर मैंने फोन रखा और सीधे मैं ऊपर आसमान में पहुंची खुशी, क्योंकि दैट वॉज द फर्स्ट टाइम माय टेस्ट ऑफ रिकॉग्निशन, जिसको कहते हैं ना कि कोई आपको पहचाने
1: आवाज से। वाह,
0: और ये पहला अनुभव था और मैं इतनी दंग रह गई कि क्या। और उसके बाद खुशकिस्मती से ऐसे बहुत मौके आए कि लोगों ने सराहा या कहा फला फिल्म पसंद है, फला नाटक ये पढ़ा वो वगैरह वगैरह, लेकिन वो बात फिर कभी नहीं, जो आनंद वो पहले उसमें था ना
1: जी,
0: इताई ताई बोलते हैं, यू नो, वो दोबारा नहीं कभी।
1: लेकिन
0: नहीं,
1: जिनका नंबर आप ढूंढ रही थी,
0: हाँ,
1: गदी माडगुलकर,
0: हाँ,
1: उन्होंने एक फिल्म लिखी थी,
0: हाँ,
1: और उस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाएंगे।
0: अच्छा,
1: दो आंखें 12 हाथ उन्होंने लिखी थी, जो ओपन जेल कंसेप्ट पर जो फिल्म थी, वो तो गदीमा ने ही लिखी थी, है ना। तो मुझे लगा कि चूंकि उनका जिक्र आया है तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: क्या बात,

0: रेडियो से आपका ताल्लुक जुड़ गया, आकाशवाणी से जुड़ गया, और ये कहना चाहिए कि पहली प्रसिद्धि आपको मिली, प्रशंसा मिली, बालोद्यान में आपने नाटक लिखने शुरू किए और नाटक करने शुरू किए, ये जो है आपकी जिंदगी का बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वो नाटक बड़े लोकप्रिय हुए थे,
1: हाँ
0: 7-8 नाटक थे शायद,
1: 10-12।
0: बापरे जी।
1: हाँ तो ये ऐसा हुआ कि बालोद्यान के लिए प्रोग्राम करने लगी, फिर सोचा कि एक आध नाटक लिखती हूँ। तो एक नाटक मैंने लिखा, पक्षांत से कवि सम्मेलन, मतलब पंछियों का कवि सम्मेलन, मुशायरा। उसमें छोटे में कहानी ऐसी थी कि कौवा है और कौवे को सब लोग बहुत हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, बेचारा काला है, एक आंख भी उसकी टेढ़ी है, और सब लोग फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये गरुड़ महाराज जो सबसे वहाँ बुजुर्ग हैं, वो ये मुशायरा अनाउंस करते हैं कि भैया इस फला दिन को मुशायरा होगा और सब पंछी उसमें हिस्सा लेंगे। तो सब लोग खुशी खुशी पहुंच जाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ी की कविताएं सुनाते हैं। जैसे मोर क्या कहते हैं, जन मजला मणती बोर, एक पहा किती तेरी थोर वगैरह, उसके आगे वो जाता ही नहीं है।
0: जी
1: फिर कोकिला तो कहती है, वो कहती है मैं गाने वाली हूँ तो मैं कोकिला आ कर, वो तानबाजी के अलावा कुछ नहीं, वो ताने ही लेती रहती है पूरा, वो कविता वगैरह कुछ नहीं वगैरह कर करके। पोपट वो तो ये करता है तोतेबाजी, तो वो उसने कुछ कहीं से रटा हुआ वो वही सुनाता है। और उल्लू जो है वो तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो ऐसा कुछ सुनाता है जिस किसी के पल्ले नहीं पड़ता, उसके खुद भी नहीं समझ में आता कि क्या उसने वगैरह वगैरह। और कौवा बहुत ही बढ़िया कविता है लिखता है, और हर एक के ऊपर लिखता है, मोर के ऊपर, तोते के ऊपर, कोयल के ऊपर वगैरह वगैरह, और खुद के ऊपर भी। हाँ एनीवे तो फिर वो बाजी जीत जाता है, बाजी मार जाता है। गरुड़ कहता है तुम लोग सब हंसे थे उस पर, लेकिन कैसे तुम, पता चला कि एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ हो जो तुम्हारी कविता सुन के समझ में आया, लेकिन ये कौवे ने देखो कैसे किया वगैरह वगैरह। तो एनीवे ये पक्षांत से कवि सम्मेलन रेडियो से हुआ, और क्योंकि वो टोटली साउंड बेस्ड था,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल
1: हाँ उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि कोयल दिखा गई हो, तो उनका काव्य इम्पोर्टेंट था। तो उसके बाद में मुझे एक पोस्टकार्ड आया, फैन मेल, किसका,

0: देशपांडे.
1: अरे वाह
0: हाँ,
1: वाह वाह, क्या बात
0: कि
1: है।
0: सही, तुझी श्रुति का ऐकली, तुम्हारी श्रुति का सुन ली और बहुत मजे की लगी. क्या बात, शाबाश आशीष. ली तरह ऐसे ही लिखते रहो. तो मतलब माँ ने फिर से छापी वो छोटी सी पतली सी पुस्तिका, और उसके बाद फिर मुझे ताव आया कि अरे ये नाटक, ये भी बहुत मजे की बात है ये. और फिर मैंने एक से बढ़कर एक रेडियो के लिए, बाल उद्यान के लिए नाटक लिखे. शेपटी चाचा, पत्ते नगरी. पत्ते नगरी पहले था पक्षांचे कवि सम्मेलन के बाद, और उसकी कहानी भी ऐसी मजे की थी कि तब मैं सेंट्रल बिल्डिंग से, मतलब ससून के स्टॉप से डेकन जिमखाना जाती थी बस से. हाँ, तीन नंबर बस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे लगता है 3 नंबर की बस होती थी. तो बस पकड़ के मैं जाती थी, और ये एक मज़े की बात तब से आज तक भी ये चलती है कि जब मैं किसी वाहन में हूँ, हाँ, तो मेरा दिमाग भी चलने लगता है.
1: वाह,
0: हाँ, और तब मैं बस में बैठी और पता नहीं ये पत्ते नगरीत का एकदम मुझे एक जैसे साक्षात्कार हुआ कि ताश की दुनिया है, उसमें ईंट और पान, चार जो है ना, अंग्रेजी नाम
1: जी
0: बताती हूँ,
1: जी जी
0: हार्ट्स एंड डायमंड्स एक तरफ क्योंकि दोनों लाल हैं, और स्पेड्स और क्लब्स एक तरफ क्योंकि दोनों काले हैं, और उनकी बाबा आदम के ज़माने से उनकी लड़ाइयाँ शुरू है जिनका कोई अंत ही नहीं है क्योंकि तुल्य बल है दोनों तरफ, इधर तेरा उधर तेरा, ये बिल्कुल ये उसका फासला होने वाला नहीं है, ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी चलती रहेंगी, ऐसा ये कुछ कथानक था. और उसमें एक शांति दूत होता है जो चाहता है कि अरे भाई दोस्ती करो ना, ये क्या है, कब तक झगड़ते रहोगे. वो शांति दूत मतलब जोकर, जो 53rd कार्ड होता है जोकर, यू नो दैट, इन अ ताश के उसमें. तो वो ऐसे एक एक एक एक मुझे सूझता गया कि अरे जोकर, हाँ ये शांति दूत बनेगा फला आदम का, ये वो. और मैं बस के टिकट पे छोटे छोटे चीटी जैसे अक्षरों में लिखती गई छोटे छोटे मुद्दे. एंड आई रिमेम्बर दैट आई फॉरगॉट टू गेट ऑफ एट माई स्टॉप, वेंट राइट अप टू स्वारगेट विच वॉज द फाइनल स्टॉप, और वहाँ देखा अरे ओह मैं कहाँ पहुँच गई. फिर ये किताब भी छपी, और आज तक यूनुस ये पत्ते नगरीत के खेल होते हैं इधर उधर भारत में, भारत के बाहर भी. और मुझे चिट्ठियां आती है कि हमको इसका शो करना है पत्ते नगरीत का. और भी लिखे ड्रामे जैसे शेपटी सा शाप, सड़ो की पड़ो, झाली काई गम्मत, जादू सा शंख, भटक्याचे भविष्य, बहुत से ये लिखे. उनमें से कईयों को नेशनल अवार्ड मिले, बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एक दो को, और एक दो को स्टेट अवार्ड मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के. तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एनकरेजमेंट. तो मैं लिखती गई, मौस प्रकाशन ने छापी ये किताबें, और अभी भी ये छप रही है, अभी भी ये किताबें इधर उधर खेली जाती है महाराष्ट्र में. और परमिशन लेने के लिए तो बहुत पूछते हैं लोग, और बिना परमिशन के भी बहुत बहुत खेल होते
1: कर भी
0: रहते
1: लेते हैं
0: हैं,
1: लोग।
0: कर भी लेते हैं.
1: ताश से मुझे याद आया, चश्मे बद्दूर में भी ताश से जुड़ा एक सीन होता है जहां ये फैसला करते हैं कि सबसे पहले कौन जाएगा।
0: ये तो मुझे याद नहीं आ रहा. सचमुच. हाँ
1: वो एक लड़की
0: हाँ वो
1: दिखी
0: नीचे
1: और
0: दिखती है,
1: वो
0: नेहा.
1: पत्ते
0: हाँ
1: से फैसला करते हैं कि
0: अच्छा
1: जिसके
0: अच्छा
1: पास रानी आएगी
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: वो
0: अच्छा ओ
1: जाएगा।
0: ये सचमुच मैं भूल गई थी. हाँ हाँ ठीक है, ये तो करते हैं. और वो दो बुश्टंडे बेचारे पहुंच जाते हैं उसके घर, और
1: बिल्कुल,
0: उनकी
1: बारी बारी
0: बहुत.
1: से वो फारूक
0: हाँ
1: शेख रह जाते हैं।
0: हाँ
1: चश्मे बहादुर का जिक्र, चूंकि ताश की बात चली तो मैंने
0: हाँ
1: ताश से ताश
0: हाँ
1: जोड़ दिया, और मुझे लगा यहाँ चश्मे बहादुर का गाना लेके आते हैं। हालांकि हम रहेंगे इसी दौर में जिस
0: कौन
1: दौर की
0: कौन
1: कहानी
0: सा
1: चल
0: गाना
1: रही है,
0: सुनाओगे?
1: आपकी पसंद।
0: चश्मे बद्दूर का क्यों नहीं, वो काली घोड़ी द्वार
1: बिल्कुल
0: खड़ी.
1: सुनते,
0: हाँ
1: काली घोड़ी द्वार
0: हाँ हाँ
1: खड़ी, वाह सुनते।

0: बात ये चल रही है कि आपके रेडियो में पदार्पण के बाद जिंदगी बड़ी बदलती है और आप रेडियो के ड्रामा लिखती हैं, लोकप्रियता हासिल करती हैं और वहां से एनएसडी की तरफ रास्ता खुलता है, अखबार में एक विज्ञापन छपता है।
1: जी
0: ये घटना बताइए, यहां से आगे चला जाए।
1: हाँ, ये बालोद्यान के बाद क्या हुआ, रेडियो वीक होता था जो आपको मालूम ही है, अभी भी रेडियो वीक चलता है। तो रेडियो वीक में ना तो सिर्फ श्राव्य रहता है मामला, लेकिन दृश्य भी हो सकता है। हाँ, तो ये जो नाटक आज तक सुन रहे थे लोग, अब वो मंच पे भी खेले जाते हैं। तो ये बालोद्यान के नाटक भी, हर बार मैंने नया नाटक लिखा और वो रेडियो वीक के लिए लिखा और वो मंच पे रेडियो के परिसर में ही, आकाशवाणी भवन के परिसर में ही छोटा सा स्टेज बिठाया जाता है।

0: था है, और उसमें ये खेल होता था। तो महीना भर उसकी प्रैक्टिस होती, बच्चे हम चुन लेते, 8-10 बच्चे उसमें रोल करते। और फिर क्या होता है, एक शो होता था रेडियो वीक का। हाँ, एक शो हुआ फिर हो गया, बात खत्म। तो बच्चे कहते थे अब अगला शो कब है, तो मैं अगला शो तो नहीं बेटे, हो गया हो गया, इतनी मेहनत की, एक तो महीना भर तालीम की, हो गया। हाँ हो गया बेटे। तो फिर माँ बाप भी आके थोड़ा सा नाराज होके झगड़ते भी थे इतना उन्होंने। फिर हमने सोचा कि ये बात तो सच है, एक इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही शो करना लाजमी नहीं है। तो फिर हमने एक चिल्ड्रंस थिएटर शुरू किया पुणे में, हाँ, जहाँ हमने और शोज किए और बच्चों को सिखाया और बच्चे आते रहे, और ये बालोद्यान से भी जुड़ा, लेकिन उसके अलावा भी इसके शोज काफी होते रहे और वो पॉपुलर भी हुए। और तब ये हमारा बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, तब मेरी शादी भी हो गई अरुण जोगड़ेकर के साथ, वो भी इसी माहौल में था।
1: वो तो पूरा एक अलग किस्सा है
0: हाँ, लेकिन वो तब की बात है ना,
1: जी।
0: इसलिए। तो हमने ये चिल्ड्रंस थिएटर चलाया, लेकिन हमने फिर ये देखा, इश्तहार आया था पेपर में
1: जी
0: कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक संस्था है जो भारत भर के विद्यार्थियों को नाटक सिखाने के इच्छा से आमंत्रण देती है उनको।
1: जी, तो वो
0: हाँ
1: अखबार में विज्ञापन देखा
0: हाँ
1: आपने।
0: तो वो देखा मैंने। तो अब तय किया था कि अब यही अपना आगे का भविष्य यही है, नाटक रेडियो लिखना। तो अरुण ने भी कहा मुझे कि तुम अप्लाई तो करो। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये चिल्ड्रंस थिएटर का क्या, उसे तो देख लेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है, उसे गंवाना नहीं, बाद में पछताओगी, तो तुम ये अप्लाई तो करो, और क्या पता शायद तुम्हें चुनेंगे भी नहीं, हो
1: अच्छा, ऐसे ही कह
0: सकता
1: दिया
0: है। तो मैं गई, खैर मुझे चुन लिया। और फिर मुझे याद है वो पहली ऑडिशन में उन्होंने कहा कि हम ज्यादातर लड़कियों को नहीं लेना चाहते। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि वो लड़कियां आती तो हैं बड़ी चाव से, और फिर 1-2 महीने में शादी करके चली जाती है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ। वो कहते कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा क्योंकि मेरी शादी तो हो गई है। फिर अच्छा कब? मैंने कहा पिछले महीने। सिर्फ 1 महीने में शादी, आपको आप पति ने जाने दिया? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे ये किया जाने के लिए। कहते 1 महीने में वो इतना तंग आ चुके हैं आपसे, वगैरह वगैरह बातें होंगी।
1: जी
0: एनीवे, तो आई ज्वाइंड NSD, एंड दैट्स हाउ आई ज्वाइंड फॉर द फर्स्ट ईयर। इट वॉज नॉट अ वेरी एक्साइटिंग ईयर, क्योंकि कुछ खास हुआ ही नहीं उधर। और मुझे फिर लगता रहा कि अरे खामखा हमने छोड़ दिया चिल्ड्रंस थिएटर, और यहाँ पहुँच गई, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगले साल जो एक तूफान आ गया, पधारा NSD में, एंड वो था इब्राहिम अलकाजी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो आ गए और फिर सारा माहौल बदल गया, पूरा ढांचा ही बदल गया। और इतना फिर हमने काम किया, इतना सीखा, मतलब 7 जिंदगी में पूरा पड़ेगा, इतना हमने सीखा अलकाजी साहब से। इट वॉज फैंटेस्टिक, वॉज अ फैंटेस्टिक टीचर। अब बोलते इतना अच्छा थे कि क्या बताऊँ मैं, इट वॉज रियली वंडरफुल।
1: बहुत सही शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि एक तूफान आया जिसका नाम
0: हाँ
1: इब्राहिम
0: हाँ
1: अलकाजी
0: बिल्कुल।
1: था। उन्होंने मेरा ख्याल है सबसे पहले शायद आधे अधूरे का मंचन किया था,
0: नहीं, आषाढ़ का एक दिन।
1: आषाढ़ का एक दिन का
0: हाँ
1: मंचन
0: हाँ
1: किया था जी। बाद में फिर वो दूसरे नाटक हुए।
0: जी,
1: आपको उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला, और कोई दिलचस्प याद?
0: मौका क्या, वो तो था ही, काम करना तो था ही। तो आषाढ़ के एक दिन में मैंने प्रियंगू मंजरी का रोल किया,
1: पत्नी जो होती है
0: हाँ, कालिदास की पत्नी,
1: जी।
0: रानी है वो। और मुझे कोई अभिनय में जरा भी रुचि नहीं थी। एक तो मैं बहुत सीमित अभिनेत्री हूँ, बहुत ही, मैं खुद जानती हूँ अपनी सीमाएं, और वो मुझे मज़ा भी नहीं था। और मैं मोटी भी, अभी भी मोटी हूँ, लेकिन तब मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी थी। हाँ, तो अलकाजी साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि सही, तुम्हें अगर तुमने अपना वज़न नहीं घटाया तो तुम्हें अच्छे रोल नहीं मिलने वाले, ये तुम बिल्कुल समझ लो। तो मैंने मन में कहा मुझे कहाँ चाहिए अच्छे रोल, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे नाटक करना है, निर्देशन करना है, आई वॉन्ट टू डायरेक्ट, आई वॉन्ट टू राइट। तो फिर मैंने लेकिन सिर हिलाया, हाँ, करा उनके आगे, अब थोड़ी उनसे बहस करती। तो वो था, उसके बाद मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ, हाँ यस ऑफकोर्स, मैंने एंटिगनी में इज़मिनी का रोल किया।
1: वाओ।
0: हाँ, मतलब एंटिगनी थी सुधा शर्मा, क्या वो बहुत ही लायक एक्ट्रेस थी।
1: यानी जो आगे चलकर सुधा शिवपुरी बन
0: जी
1: जा रही थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरे क्लास में थी, सुधा भी और शिवपुरी भी, दोनों मेरे क्लास
1: ओ
0: में थे,
1: जी
0: और तब भी दोनों का रोमांस था। खैर वो बात और है। तो लेकिन उनकी शादी हुई, दोनों बहुत ही अच्छे कलाकार थे, खास करके सुधा तो कमाल की अभिनेत्री थी।

0: इश्यूज रियली फर्स्ट क्लास. और मुझे याद है उसने आषाढ़ के एक दिन में मल्लिका का जो रोल किया, वो नाटक के शुरू होते ही वो भागती हुई बारिश में भीगी हुई आती है और अंबिका पड़वी को क्या बोलते हैं घर के बाहर जो होता है ना बरामदा सा, उसमें वो अनाज बिन रही है और बैठी है अंबिका, तो उसकी गोद में ये अपने आप को से लुढ़क जाती है उसकी गोद में और कहती है आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ. और ओह रोंगटे खड़े हो गए. क्या उसका वो अभी भी मेरे कान में गूंजता है. अब इतना बढ़िया उसने किया. और कालिदास बने थे शिवपुरी, और शिवपुरी को तब एक बुरी आदत थी, वो ऐसे गर्दन हिलाता था, उसका वाक्य होने पर उसकी गर्दन हिलती थी. फिर वो अलकाजी साहब ने निकाल दिया 3 महीने के अंदर, फिर दोबारा नहीं शिवपुरी की गर्दन. हमें बड़ा अचरज हुआ क्योंकि हमने कहा ये तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है कि इतना वो धस गया था उनके अंदर वो. एनीवे तो ये एक साल में बहुत सीखा अलकाजी साहब से. और उन्होंने क्या क्या नाटक किए बनाए कि अंधा युग उन्होंने ताल कटोरा गार्डन्स के वो फोर्ट में किए, मतलब टूटे फूटे वो खंडहरों के बैकड्रॉप पे, मतलब देख के इसे रोंगटे खड़े हो जाते थे. इतना बढ़िया उन्होंने मतलब पूरा यही बदल दिया दिल्ली का नाटक के बारे में सोच थी राजधानी की, वी पूरी बदल दी अलकाजी साहब ने. और बहुत ही कमाल का कार्य रहा, कमाल की उनकी देन रही थिएटर के प्रति.
1: जी तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं, तो इस गाने की यहाँ जगह बनाते हैं.

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। राज्यसभा में सभा नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी बैठक में उपस्थित थे। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: इससे पहले बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि NCPI मान्यता प्राप्त संसदीय दल नहीं है। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी दल सदस्य बैठक में शामिल हुए। मानसून सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्र में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रेवोल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिवानी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज उनसे मुलाकात की। जांजीबार के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गोवा ने आज पौंडा में 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। करीब 188 विद्यार्थियों को BTech, MTech और PhD की उपाधि प्रदान की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक भी दिए गए। कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाकों में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और यह राज्य के तटीय क्षेत्र में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना से सड़कों के बुनियादी ढांचे को सुधार कर और पर्यटन तथा

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भजन। श्रोताओ, आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्मों के लिए गए कुछ भजन।

प्यार का सावन, इस फिल्म से लिया गया ये भजन आप सुन रहे थे रविंद्र जैन की आवाज़ में। श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी भजन, और अब लीजिए सुनिए सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये भजन।

तो श्रोताओ, इसी भजन के साथ आज का फिल्मी भजनों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:25 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

स्वागत है युवा साथियों का आज के युवा मंच कार्यक्रम में, और मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा। आज हम बात करेंगे युवा मंच कार्यक्रम में वीकली पल्स पर। तो युवा साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के क्षेत्र में भारत की प्रगति युवाओं के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। शिक्षा और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न सरकारी और निजी पहल के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे बदलती दुनिया की ज़रूरतों के अनुसार स्वयं को तैयार कर सकें। खेल जगत में भी भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। ये युवाओं को अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास का संदेश देता है। तो और भी बात करेंगे वीकली पल्स में, और पहले लेते हैं ब्रेक, सुनते हैं गीत।

0: From your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
4: तो युवा साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा मंच कार्यक्रम में। आज है संडे और हम बात करते हैं वीकली पल्स पर। पर्यावरण संरक्षण में आज एक महत्वपूर्ण वैश्विक विषय है जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अनेकों अभियान चलाए जा रहे हैं। युवाओं की भागीदारी इस अभियान की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनना भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर युवाओं के लिए। अर्थव्यवस्था पर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है। हाल के आर्थिक आंकलनों में विदेशों से भारत आने वाली धनराशि यानी रेमिटेंस में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने में सहायक है। तकनीकी और विनिर्माण के क्षेत्र में भी भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जुलाई 2026 में घरेलू स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नए संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी गई है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने और मेक इन इंडिया अभियान को और गति मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो भारत अपने वैश्विक सहयोग को लगातार मजबूत कर रहा है। हाल ही के महीनों में तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी सकारात्मक समाचार सामने आते रहते हैं। देश में वन्यजीव संरक्षण और जैव

विविधता को बढ़ावा देने के प्रयास भी जारी हैं। कई संरक्षण परियोजनाओं के उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जो कि पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। तो एक और ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं गीत।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa. युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हम बात कर रहे हैं वीकली पल्स यानी करंट अफेयर्स पर। विशेषज्ञों ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच ये संदेश युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। खेल प्रेमियों के लिए ये समय बेहद रोमांचक है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं और भारतीय दल का उत्साह चरम पर है। भारतीय भारोत्तोलन स्टार मीराबाई चानू और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक चुना गया है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है और युवाओं को खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने की प्रेरणा देता है। तो युवा साथियों, करंट अफेयर्स केवल परीक्षाओं की तैयारी का विषय नहीं है, बल्कि ये हमें जागरूक नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित करता है। जब हम देश और दुनिया की घटनाओं को समझते हैं, तभी हम अपने भविष्य के बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो आज के इसी संदेश के साथ चलते चलते हम आपको सुनवाएंगे एक गीत और आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को नई ऊंचाइयां देते रहिए। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत के 4 छात्रों ने इसमें स्वर्ण पदक जीते हैं। 93 देशों की प्रतियोगिता में भारत संयुक्त रूप से शीर्ष स्थानों पर रहा है। पंजाब में एक परिवार 2500 किलोमीटर की पदयात्रा पर युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर मजबूत रुख अपनाया है और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और सप्लाई चेन सहयोग के लिए नया समझौता हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत न्यूजीलैंड के संबंधों पर बात करें तो दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है। भारत ने सेवा क्षेत्र को मापने के लिए नया इंडेक्स शुरू किया है।

भारतीय महिला टीम ने एलए 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2026 में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। और विज्ञान, तकनीक और खेलों में भारत की उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। नशा मुक्ति, कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता आज के समय में महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की नियमित जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर निर्माण में मदद करती है। तो ब्रेक लेते हैं, सुनते हैं गीत।

श्याम की जय हो सिया राम की और जय हो बंबई धाम की। ई है

0: देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग।
1: तो युवा साथियों, इस गीत के साथ ही आज का युवा मंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नर्मदा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित बरेले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओ, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम शाम गजल। मिंजरा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:30 पर और खेतीबाड़ी कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 7:10। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाता है रात्रि 8:00। एक ही कलाकार में आज आप सुनेंगे निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्मों के कुछ गीत रात्रि 9:15 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि, माफ कीजिएगा, संसद के समक्ष मुद्दे, ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर। रविवासरीय संगीत सभा आप सुनेंगे रात्रि 10:00 से लेकर रात्रि 11:00 तक, और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम के 6:00 को हैं आपसे कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी आपके नाम
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या
2: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द नई औद्योगिक नीति लाएगी। उद्योगों की सुविधा के लिए इस नीति के तहत बिजली दरों को कम रखा जाएगा। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आईटी क्षेत्र को विस्तार देने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहा है। इसके अलावा सरकार डेटा स्टोरेज अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है।
1: अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिन्यूअल पावर कहीं मिलेगी तो हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन में अगर कोई आने वाले समय में पायनियर स्टेट बनेगा, जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहां हिमाचल ग्रीन एनर्जी में आगे बढ़ेगा। हमने उसके लिए रिसर्च काम किया है, अभी हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। आईटी सेक्टर में हमारे पास लैंड भी है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हिमाचल के लोग हैं, आप आईटी सेक्टर में आइए, 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। हमारी न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी आ रही है, हम बिजली का रेट कम करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों और औद्योगिक क्षेत्र दोनों को लाभ मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग की अपील की है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला जिले में छैला नेरी पुल यशवंत नगर सड़क के लिए 250 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। चौपाल में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र से धनराशि मिलते ही इस सड़क का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चौपाल क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए की लागत से 17 सड़कें बनना भी प्रस्तावित है, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने जनसमस्याएं सुनकर इनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आश्वासन भी दिया। प्रदेश के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से सरकार नवीन कदम उठा रही है। इसी कड़ी में वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत जिले के विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलाने और रोजगार सृजन के प्रयासों को गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इस पहल के तहत प्रदेश के 36 उत्पादों का चयन उनकी आर्थिक संभावनाओं, बाजार मांग और स्थानीय महत्व के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की आगामी औद्योगिक नीति में चिन्हित उत्पादों से जुड़े उद्यमों के लिए व्यापक प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चयनित उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन पर भी विशेष बल दिया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से कई क्षेत्रों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राजधानी शिमला सहित कुछ अन्य इलाकों में बीती रात व्यापक वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक विभिन्न जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का गंभीरता से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की टीमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उपलब्ध हैं और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच मौसम विभाग के भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए सिरमौर जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं ताकि

0: आपदा की स्थिति में तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया जा सके।
1: PWD, इलेक्ट्रिसिटी, IPH और हमारे जो लोकल बॉडीज हैं, सभी को हमने अलर्ट पे रखा हुआ है। हमारे सारे SDMs और हमारी रेवेन्यू टीम अलोंग विद द अदर लाइन डिपार्टमेंट स्टाफ, एवरीबॉडी इज ऑन अलर्ट। जहाँ भी दिक्कत होगी तो प्रशासन वहाँ रहेगा। पर हमारी जनता से भी यही अपील है कि बारिश का टाइम है, अपना सेफ्टी का खुद ध्यान रखें और जब जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले, और कहीं कुछ समस्या होती है तो 1077 पे डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा DDMA ग्रुप है उसमें हमें अलर्ट कर दे, हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स बता दे, तो हम अपनी आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
0: प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शामे गजल।

0: सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच।
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
3: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
2: Yes, 6.70 lakh rupees. Valid till 31st July.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
0: Nexa. सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
4: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाएं कदम। स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं शाम गजल। अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
2: Equipped with features like a 360-degree camera, heads-up display and a safety through 6 airbags.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 5.59 lakh. Yes, Rs. 5.59 lakh. Valid till 31st July only.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the Bolt Baleno today. TNC apply.
3: Nexa. शामे गज़ल में आज अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं गजलें। नजर लग जाती है जताया ना कर, नजर लग जाती है जताया ना कर, इश्क एक राज है बताया ना कर, लाख समझाया तुझे शक करता है जमाना, लाख समझाया तुझे कि शक करता है जमाना, जब तू पास से गुजरे तो मुस्कुराया ना कर।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं शाम है गजल। आपको एक सूचना दे दें कि आज शाम 6:30 पर मिंजरा कार्यक्रम आप सुनेंगे, फ़ोन कॉल्स पर आधारित, जिसमें आप फ़ोन कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए हमारा नंबर रहेगा 01892224391। महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम है, तो महिला बहनें जो हैं, किसान व बागवान बहनें, वो भी फ़ोन कर सकती हैं। तो एक बार फिर से आपको फ़ोन नंबर बता दें, 01892224391। तो फ़ोन ज़रूर करिए शाम 6:30 पर। अब सुनते हैं कुछ संदेश।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी। सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
0: तो शामे गजल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नर्मदा को अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शामे गजल। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 मेगा।

0: कार्यक्रम मिंजरा सुनने वाले सारे किसान भाई बहन कने सारे श्रोतियां जो केसरो दी राम राम। ता कार्यक्रम मिंजरा जिया कि तुहां सारे जानदे न कि ये जिहड़ा कार्यक्रम है इसे साड़ियां बोबो भैणां वास्ते हुंदा है और अज अहां गलबात करनी है तिनां कने। कने मिंजो लगा दा कि कोई जिहड़े हन से मिंजो फोन करा दे हन ता करदे न तिनां कने गलबात। हैलो
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते जी, राम राम जी। तुहा कौन बोला दे हन, कुत्थों ते बोला दे हन? राधा देवी जी चमुंडा ते बोला दे हन। ता तुहाडा क्या हाल चाल है?
1: वधिया जी।
0: अच्छा जी, और बरखा कदियां रहियां?
1: बरखा अच्छियां रहियां फसला ताई
0: जी। बिल्कुल, और सुना तुहा क्या काम कार लगाए अज?
1: काम कार नदाइयां दा लग्या, घाय पट्ठे दा लग्या।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, कने बरखा जड़ी ऐसे भी हुई है तो तुहां अजकल पट्टियां पासे जा ते होने, कने पानी दा जड़ा निकास ऐसे भी दिखा दे होने क्योंकि बहुत बरखा हुई है ना जी।
1: हां जी हां जी
0: बिल्कुल जी। ता तुहां कार्यक्रम च कीता है फोन ता तुहाडा बड़ा बड़ा धन्यवाद। कने हुण तुहां जो सुनांदे ने इक प्यारा दिया लोक गीत।
1: हां जी।

0: मुझे लगा था कि फोन लाइन जी इतनी नदी कटोई ही है, लेकिन फिर भी दिखा साड़ियाँ भैन जी इनसे साझू करें गल बात करने वास्ते फोन करने जो इनसे जुड़ दी हैं टाइम टाइम पर। और दिखा अजकल बरखा जी इनसे बड़ी हुआ कर दी हैं, और बरखा दे ऐसे मौसम च हाँ खेतीबाड़ी दे काम कार तो करते ही करते हैं, सोगी ही गलबात भी हाँ करते हैं कि बरसात का मौसम है तो साझो अपना ख्याल रखना है, सोगी ही अपने पशुधन का भी ख्याल रखना है। हैलो जड़े भी फोन करा दे अन्न तिना जो हाँ ही बोल गए कि भाई थोड़ा देर सिग्नल चाई करी फोन करा, क्योंकि तिना कने कनेक्ट जड़ा से हुआ नहीं करा दा, तो साढ़े जड़े कोई जड़े भैन हैं से फोन करा दे चला दिखते हैं कि कौन है कने कुत्थों ते बोला दे। हैलो
1: हैलो
0: नमस्कार जी, राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है तुहाड़े, तुह अपना नाँ दसा कुत्थों ते तुह फोन किया।
1: अब मेरा नाम जी लता मुकेश है, मैं पठियारे से बोल रहा जी।
0: अच्छा जी, पठियारे से तुहां फोन किया, थोड़ा बड़ा बड़ा स्वागत है जी कार्यक्रम च। और सुना तुहां क्या काम कार लगाया अजकल।
1: अजकल काम कार बिल ले यार, बरखा लगी है तो बिल ले यार ना।
0: जी जी, बिल तो नहीं हो सकते, थोड़े बहुत काम कार साढ़े चले रहने, पर हाँ बरखा चल खेती बाड़ी काम काज भी कर दे।
1: खेती बाड़ी में थोड़ी रही है, लाल सवाड़ी गया
0: ना। चलो बोल देना कि थोड़ा ही होए, पर बोल देना कि हल्का फुल्का काम कर दे रहना चाहिए, कने अपने घरे दी साग सब्जी मिली आए तो इससे बड़ी गल और क्या है ना जी।
1: जी
0: ता तुहां फोन किया कार्यक्रम मिंजरा च, थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद है, कने हुण तुहां जो सुनांदे ने इक प्यारा देया लोक गीत।
1: धन्यवाद मेन, धन्यवाद।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: किसान भैया मिंजर जुड़ियन कने साड़ी एक बोबो भैन जी अस फोन लाइन कने जुड़ी हो। हेलो, तो फोन कटोई है इन्हों का। किसान भैन जी अस फोन करी सकती हैं कने टियाले का नंबर जोड़ा है एक बारी फिर तो नोट कर लिया 01892224391। तो हाँ, इस नंबर पर फोन करी सकती हैं कने केसरों कने गलबात करी सकती हैं कार्यक्रम मिंजर च। तो किसान भैनों दिखा इस टाइम जोड़ा है संजा का वेला है कने अपने काम कार भी करा करते होंगे कने सोगी ही लोग गीत भी अहाँ सुनते रहते कने बोलते हैं कि जलू भी लोग झनकार साढ़े कन्ना च पाती है तो सू काम करने का अपना ही मज़ा आता है कने कोई भी थकान नहीं होंगी है। कने चाहे संजा का वेला हो चाहे सवेरे का वेला हो सू जरूर कार्यक्रम कने जुड़ी रहना चाहिए है। हैलो, हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: जी,
1: नमस्कार जी, राम राम जी। पर ये तुझे दसना था कि भी कार्यक्रम मिंजरा जड़ा है से साड़िया बहना वास्ते है ता बहना ही फोन करन ता बड़ा अच्छा है।
2: कौन जी गा समझ
1: एक फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है जी ये ना ता इस चाह बहना कने गल बात कर देन कने तिना जो लोग गीत सुनान देन जी। कार्यक्रम मिंजरा सुनने वाले सारे श्रोतियां जो एक बारी फिर त्यां बोलना है कि कार्यक्रम मिंजरा जड़ा है से साड़ियां पैना वास्ते है बोबो वास्ते न से फोन करी सकदियां गलबात करी सकदियां हैं। ता किसान पैना जो सुनांदे एक होर प्यारा दिया लोक गीत।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 67,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो कार्यक्रम मिंजरा जी, तू हां फोन किया जी, थोड़ा बड़ा बड़ा स्वागत है। अपना नाम दसा
2: जी। मैं रेशमी कटोच गुलेरिया बोला जी,
1: योल जी, योल ते बोला दे। हां जी, क्या हाल चाल है तुम्हारे?
2: सब बिल्कुल ठीक। बरसात, हरियाली दा
1: हरियाली दा मौसम है, दिखा कने बरखा भी हुई है। कने बोलते ना कि इस बारी बड़ी बड़ी गर्मी थी, कने बरखा हुई है, तो थोड़ी दी ठंडक जड़ी से मिली है, समझो ना जी।
2: फिर फसल वाले भी खुश, हरियाली चारे तरफ।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, बोलते ना किसान भाई तो खुश होंदा ही है, लेकिन बाकी भी जड़े ने खुश हो जाते, क्योंकि चारों पास हरियाली दिखी के कुछ ही अच्छा नहीं लगता।
2: सारे हरे हुए, कुछ कुछ सब्जियां लग जा, कुछ अच्छा लगा था।
1: तुहां अपने सगाड़ुआं दसा, तुहां क्या क्या लगाया कने क्या

0: क्या लगी पी है थोड़ी सुगाड़ू मुझे।
1: देखिए वो लग गयो बीटरूट चुकंदर,
0: चुकंदर लगी
1: हर तीसरे दिन निकली होंगी।
0: बिल्कुल बड़ी।
1: मिर्चा मुर्चा लगाई अलग अलग टाइप दिया, बैंगन है तो ठीक अपना लाडू स्वाड़ू अपना गुजारा अच्छा हो जाती फ्रेश सब्जी।
0: बिल्कुल दिखा स्वास्थ्य की गल की जाए तो अपने घरे की सब्जी जी सब तो अच्छी होंगी। कने दिखा चुकंदर जड़ा है सह तो सू बोलते ना कि खरीदना पौधा कने सेहत वास्ते बड़ा अच्छा होंगे। कने तुह तो अपने घरे लगाया है कने बड़ी अच्छी गल है। तो
1: जी नहीं अच्छा है। और कद्दूकस करके थोड़ा सलाद से खाओ, वैसे सूप बना लिया
0: जी
1: और तो बहुत ही अच्छा है आयरन डिफिशिएंसी वास्ते।
0: जी
1: और
0: जी
1: फिर अमृत धारा है जेडी आजकल जरूरी खाना पीना चाहिए, क्यों पानी दी जगह जगह न्यूज हो दी पीलिए
0: बिल्कुल
1: वगैरह।
0: बिल्कुल तो हाँ बिल्कुल ठीक गल गला दिन कि अपने सेहत का ख्याल जड़ा से सांझो रखना चाहिए है। और तू हाँ जड़े साग सब्जी लगाई हो ना सह भी तू हाँ अच्छा जड़ा काम ऐसे करा कर दिन। और बोल दिन कि थोड़ी सी जमीन भी क्यों ना होए सांझो अपनी साग सब्जी आपू लगाना चाहिए है।
1: पत्ते तो बेचारे नहीं तो कोई कदर नहीं करते, चल पतरोड़े बनाते ता ही अच्छा लगता। बाबड़ी छोटी छोटी जेड़ी हाँ दी ट्रेडिशनल सब्जियां जोड़ू पतरोड़ू को कुछ
0: जी
1: छोटा बुझी है ना
0: जी
1: स्वाद
0: जी
1: रहना बरसाती।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। हुण बरसात आई है कने साग सब्जी भी अपने सगाड़ुआ च मिली आनी है और ताज़ी यहाँ तालू ही तोड़ी के तालू ही बनानी है। बिल्कुल तो हाँ कार्यक्रम मिंजरा च फोन किया थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद है। कने हुण जी जी
1: ठीक
0: धन्यवाद जी धन्यवाद। तो
1: है
0: हाँ जो सुनांदे नी प्यारा दिल लोक गीत।
1: जी बिल्कुल।

किसान साथियों कार्यक्रम मिंजना तुहा सारे सोना दिन अपनी केसरों कन्नै कन्नै दिक्खा साढ़ियां भैणां ने फोन भी कीते कन्नै गलबात भी कीती कन्नै होर भी साढ़े किसान भाई भाई तो नहीं बोली सकते भैणां जिहड़ियां इनसे फोन करा दियां न पर जिन्हां दा फोन जिहड़ा ऐ कटोई आ दा ऐ पर चलो अहां गलबात करनी है संझा दा वेला है कन्नै दिक्खा बरसात दा मौसम है तो ऐसे चाहां ही बोलना चाहेंगे कि अपना खास ख्याल रखा कन्नै अगर तुहां गा पत्तरा जो जांदे न तां बोलदे न कि बूट पाई के जाना चाहिदे न अजकल किंडे कीड़े कंडू जेड़े होंदे से जमीना च बड़े भरी होंदे न तां भी अपना खास ख्याल रखा कन्नै सोगी ही मिंजरा कार्यक्रम चलिया तां हुण चलदे चलदे हाँ एक होर प्यारा दे लोकगीत तुहानूं सुनाना है।

किसान साथियों, कार्यक्रम मिंजरां दा समय हुण इत्थों ही संपन्न होआ करदा है। और जाणे ते पहले तुहानूं दस दईए कि अज कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग सानूं दित्ता विकास पठानिया होरां ने, कार्यक्रम प्रस्तुत करता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। तां हुण केसरो जो दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को है
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायल्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. हुसैन अली मिवनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मिवनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली मिवनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वरम पारद्वीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वायत्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान ने अमरीकी हमले में हुए नुकसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 46 ओवर में 2 विकेट पर 315 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

0: किसान साथियों ता कार्यक्रम खेतीबाड़ी जड़ा है से ले आए हो हाँ कने आज मिंजो कने मेरा साथ देने वास्ते आए हैं प्यारू जी। तो प्यारू जी तो अंजो भी राम राम
1: भाई। राम राम। कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुना करते सारे स्रोतियां जो कने किसान कने बागवान भाइयों जो भैन जो कने केसरो जी तुहां जो भी संजय दे बेले दी राम राम।
0: बिल्कुल कने दिखा प्यारू जी आज बोले ना बड़े ही टाइम बाद बड़ी तेज बरखा जड़ी ऐसे पिछले दिन ते हुआ दी है कने बरखा दा लाभ जड़ा ऐसे साढ़े किसान भाई जड़ा ऐसे जरूर लेंदे हैं क्योंकि दिखा बरखा जियां ही हो जाती है तियां ही यहाँ अपने जड़े काम मैं करना लगी पौंदे हैं। कने कई ऐसे हैं कि भाई खेतीबाड़ी च जाई करी दिखना भी पौंदा है क्योंकि कई बार साढ़े जड़े चाले होंगे ना हाँ बनाए सह भी टूटी जाते कने फिर पानी कने जड़ा ऐसे कई बार फसल खराब हो जाए तो ऐसे च सो अपनी जगह जमीन च जाना चाहिए है समय समय पर करने जे पानी ज्यादा है तो इसका निकास भी कर लेना चाहिए है ना जी।
1: बिल्कुल पानी निकासी की व्यवस्था कर गए तो अहाँ बड़े सारे जड़े नुकसान तिना ते बची आते हैं चाहे मक्की के खेत हैं चाहे धान के खेत हैं। मक्की के खेत यदि अहाँ पानी रुकी आए ना तो मक्की जो तना सड़न रोग जड़ा ऐसे लगी आता
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: कने धान यदि पानी नहीं रुके तो सह उ सुखी आते कने यदि ज़्यादा पानी आई है सह भी
0: जी
1: नुकसान
0: बिल्कुल
1: पहुँचाता
0: बिल्कुल
1: जरूर जड़ा ऐसा है एक गलांदे ना एक इन्हों का तरीका कार बना अपनाई के जड़ा ऐसा अपने खेतीबाड़ी जो संतुलित
0: बिल्कुल
1: बनाना है जी।
0: जी कहीं प्यारू जी दिखा अज टाले पर अहाँ आए हो जानकारी जी इसे भी अहाँ लेके आए हो किसान भाइयों वास्ते तो जानकारी क्या है जी।
1: बिल्कुल जी देखो जल संरक्षण अहाँ किए करना है कने सोगी जड़ा ऐसा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जड़ी ऐसा उसका लाभ अहाँ किया उठाना कने अहाँ किसान
0: जल
1: बागवान भाई उठा कर
0: बिल्कुल
1: देना।
0: कने जल संरक्षण की गल की जाए तो जी अजकल बरखा हो दी ना दिखा पर कुछ टाइम बाद जो ऐसे गर्मियां आदि नहीं या कुछ ऐसा होंगे तो सू पानी की किल्लत आई जाती है
1: बिल्कुल
0: तो इस बरखा के पानी जो सू जो ऐसे बचाई के रखना है कि अहाँ तीसरी तो इसका उपयोग बाद च भी कर सकते ना हाँ कई बार क्या करते कि पानी जितना मिली आए ना मतलब अगर ऐसे व्यर्थ भी जाता तो जाना देंगे तो व्यर्थ जो ऐसे हाँ पानी जो नहीं करना है कने बरसात हो दी है तो इस बरसात के पानी जो भी सू संजोए करी रखना है
1: बिल्कुल केसरो जी गल ही है ना कि क्या होंगे कि बरसाती होंगे जमा जम बरखा
0: जी
1: कने पानी आंदा कने जे तालाब कने सारे भरोई जाते कने
0: बिल्कुल
1: जालू आंदे गर्मी का मौसम
0: जी
1: पानी की किल्लत हो जाती तो अहाँ जो
0: बिल्कुल
1: कुछ दे जुगाड़ बनाना चाहिए दे जिसने जड़ा ऐसा ये परखा जल जो अहाँ संरक्षित करके रखी सकन कने जालू गर्मी पाँदी है तालू तिस्ता अहाँ सदुपयोग करी ने अपने खेतों अपने खलिहाना जड़ा है तिस्ता सदुपयोग करन ता इस जो वर्षा जल संरक्षण विधि भी अपनाई सकते जी हाँ
0: जी
1: तालाब वगैरह बनाई के
0: बिल्कुल
1: कच्चे तालाब बनाने उस जी हाँ तरपाली वगैरह पाई ने भी पानी जो संरक्षित रखते हैं या
0: बिल्कुल
1: फिर पक्के जड़े ने अपने घर की छत जी होंगी उन्होंने पानी जो जड़ा ऐसे हाँ इस तरीके ने भंडारित कर रखन कि भूमिगत जड़ा टैंक बनाई के रखन कने जालू गर्मी आदि है तो इसका अहाँ सदुपयोग अपने खेतीबाड़ी च अपने पशुधन कने अन्य कार्य जड़े होंगे चाहे खेतीबाड़ी वाले सिंचाई वाले काम कार हैं तिन्हें च अहाँ उसका प्रयोग करन तो एक बड़ा बढ़िया जड़ा ऐसा है लाभ अहाँ इसते ले सकते हैं क्योंकि जालू पानी होंगे तालू कदर नहीं होंगी कने जालू नहीं होंगे तालू तो पानी की याद आती तो यही विधि
0: जी
1: अपनाना जरूरी
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल ठीक गल गलाई है हाँ दिखा जड़ी चीज़ सानू ज़्यादा मिली आती ना तो इसकी कदर घटोई जाती पर जलू जिस चीज़ घटी आती तो हाँ तो तू हथ मार दे कि कुछ तो सू मिली आए तो इस टाइम जो ऐसे बरखा हुआ करती है तो साढ़े किसान भाई जड़े तिना जो पता है कि पानी जो कि बचाई के रखना है कि संभालना है चाहे ऐसे खेतीबाड़ी के काम होन चाहे ऐसे घरे के काम होन पानी जोड़ा है से हर जगह इस्तेमाल होंगे है
1: बिल्कुल
0: ता हुण दिखा कार्यक्रम जड़ा है खेतीबाड़ी चले है तो हुण अहां जल चलना है लोक जनकार पासे और किसान भाइयों जो सुनाना है प्यारा दिया लोक गीत
1: जी बिल्कुल।

0: किसान साथियों कार्यक्रम खेती बाड़ी चितुहा सुने आए प्यारा दिया लोकगीत और इस लोकगीत के बाद फिर तो यहाँ चलना है जानकारी के पास से और आज जी जानकारी ऐसे दिखा टाले पर हाँ तुहा तक पुजानी है बकरी पालन के बारे में है ना।
1: बिल्कुल भेड़ बकरियां यहाँ किसान बागवान भाइयां रखी हैं ताकि कुछ तरीके ने उसका ध्यान रख सकते हैं यहाँ के किसान बागवान भाई जरा उन्होंने भी लाभ ले सकते हैं
0: जी
1: तो उन्होंने बारे से सुनते हैं कने लाभ उठाते हैं जी।
0: जी जी जी
2: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नोई ते नोई जानकारी अहां तुहां तक पुजाइए चाहे वो अहां दे कृषि वैज्ञानिक द्वारा दिती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियां सोकी कीती गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच एक उन्नत किसान अज अहां दे टियाले पर आए होए ने करदे ने इना कन्ने गलबात। राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: जी अपना नाम दस्सा।
3: अश्विनी कुमार जी।
2: जी अश्विनी जी घर कुतों तुहां दे
3: घर जी मेरे
2: पशु पालक भाइये या अहां दे किसान साथियों जो तिन्ह दे व्यवसाय करने कोई जड़ा सा तिन्ह जो जड़ा सा जान

0: अपने इलाके विच ते ना अपने इसी कम्मे कन्ने ते ना अपनी एक पहचान जिहड़ी से बनाई हो ना।
1: हाँ जी
0: किन्नी बकरियां पालियां तो?
1: भाजी, पिछली बार मेरा थोड़ा फार्म तैयार नहीं हुआ था, तो
0: हाँ
1: मेरी कुछ बकरियां मरी गई हैं 5-7,
0: हाँ
1: पर मैं
0: जी,
1: बीमा वगैरह कराया था, मैं बची गया।
0: अच्छा
1: पर इस बार फिर हुई हैं 20 की बकरियां।
0: अच्छा
1: बकरियां घट है तो बकरे ज्यादा हैं। तोता परी,
0: तोता परी
1: हाँ जी, बीटल,
0: बीटल है ना,
1: हाँ जी,
0: लंबे कन्न वाली है कि छोटे
1: हाँ जी,
0: वाली?
1: लम्बे कन्न वाली।
0: हाँ एक तो होंगे नहीं है छोटे कन्न वाली है, इन्हें कई लंबे लंबे कन्न
1: नहीं
0: होंगे ना।
1: भाई, लंबे कन्न वाली हैं, दूध भी दो दो 1.5 किलो दी।
0: कुछ लेनी है ये?
1: ये भाई शौक पैदा होया है कि टोकरी वाले लिया है बकरा, फिर
0: अच्छा
1: एक बकरी ले था अगे, फिर शौक ही बद आ गया।
0: जड़े मोटरसाइकिल पर
1: हाँ जी,
0: बच्चे
1: हाँ जी,
0: लेके चले होंगे
1: हाँ जी, हाँ
0: बेचना
1: जी, फिर
0: पंजाब कन्ना बाहरी राज्य से चलो आंदे है
1: हाँ जी, हाँ
0: बेचना
1: जी,
0: है,
1: फिर शौक बनता गया बनता गया, फिर हूँ ज्यादा तैयार हुई है। हाँ
0: यानी
1: फिर,
0: कि एक छेलू लिया है शुरू चना है,
1: हाँ, एक बकरी ले,
0: कनी एक बकरी ले ही है
1: हाँ
0: ना,
1: जी,
0: घर चुगांदे बकरियां की बन्नी हट दे,
1: बेल लवा मैं तो जगाई भी लेना, करना ज्यादा घरे दे संभाल लेंदे,
0: यानी कि छड़ दे बने हो कि घरे दाना पानी पाना तेने?
1: घर दाना नेड़ा तेड़ा छड़ लेंदे थोड़ी देर ना, बाकी घरे संभाल लेंदे, लेडीज
0: अच्छा
1: मेरी घरे वाली संभाल लेंदी, बच्चे संभाल लेंदे,
0: अच्छा
1: मैं और भी कम कर लेना करना।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी,
0: तो जिक्र किया कि बकरी ये 1.5 से 2 2 किलो तक दूध दिंदी है ना,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो जी बच्चे की गल की जाए तो कितने बच्चे दे दी
1: दो
0: बकरियां?
1: बच्चे दें जी,
0: लगभग
1: साले दे
0: दो,
1: 2 बार सूणा ना।
0: कई
1: हाँ
0: बार
1: जी,
0: 3 भी देनी है ना।
1: तीन भी देनी है, जड़ी अपनी लोकल बकरियां देसी होनी है, उनका दूध घट
0: हाँ
1: होता उन्हें थले, फिर
0: हाँ
1: बच्चे
0: कने उइया देखे जाए तो भी 3 जो से थोड़ा चंगाने का भी बड़ा
1: चंगाने तो
0: ये।
1: मुश्किल हो जाती है ना, दूध
0: हाँ
1: पूरा नहीं होता।
0: कने कई बार तो पता भी नहीं लगता कोई क्यों गई अंदा, कने
1: हाँ
0: कोई
1: जी, हाँ
0: भुखा
1: जी,
0: ही रही अंदा, इससे 2 ठीक ना ना।
1: हाँ जी, हाँ जी, दो बच्चे वधिया।
0: अच्छा
1: बकरी बड़ी नस्ल दी होए ना, जब बीटल नस्ल दी होए तो दो बच्चे बड़े वधिया पड़ जाते।
0: तो इस तरह जी जिक्र किया जाए तो जी ब्रीडर वगैरह तो हाँ रखिया?
1: ब्रीडर वाइज इस टाइम मेरे वाले 1 क्वांटल तो ऊपर है।
0: अच्छा
1: हाँ जी,
0: 1 क्विंटल दा जड़ा सा छेलू है तो हाँ बाहर जड़ा
1: हाँ जी,
0: ब्रीडर तो हाँ रखिया ना
1: हाँ जी, हाँ जी, घर का तैयार किया मैं, अज 15 महीने तो गया।
0: जी जिक्र किया जाए तो जैसे जी एडा बड़ा तो हाँ छेलू पाले या इतना बड़ा ब्रीडर है तो सह तिदला खाना पीना तिदा खान पान लग गया कि बकरी सोगी है?
1: बकरियां सोगी खुआंदे उसी, पर वो सीजन दे ना, जिदा ऋतु माप चेंज होनी है, अलग अलग खाना खुआना पैंदा उन्होंने,
0: अच्छा
1: एक जहा खाना नहीं खुआना पैंदा ना, जिदा गर्मी है गर्मी च अलग, सर्दी च अलग।
0: तो जो काफी टाइम हुई है बकरियां पाल दे था, कितने की बड़े बड़े बकरे जड़े से तो? हाँ
1: भाई जी, पहले इस बकरे का प्यो बेचे हम 50 किलो का होया,
0: अच्छा
1: मीट 50 किलो है वो,
0: हाँ
1: मतलब 1 क्वांटल का हो गया हा। ये बकरा या एक इस टाइम 1 क्वांटल 30 किलो का है जिंदा,
0: अच्छा
1: 70 किलो मीट है।
0: हाँ जी हाँ।
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: जीका दिया इतना बड़ा जलू बकरा जिये बेचना था खरीदार मिल जाते
1: खरीदार मिली जाते भाई जी,
0: ये लोकल एक ही कुछ बाहर भेजी दे,
1: लोकल पाई जाते अपने बंदे।
0: क्योंकि ये तो कुछ बड़े स्तर पर ही जिया है कुछ बड़े बाजारों में ही है जो तू मांग होती कट्टे जाना ना,
1: हाँ जी, ना ना
0: क्योंकि
1: लोकल ही ले
0: इतना
1: जाते अपने
0: मांस
1: बंदे।
0: फिर बिकना भी चाहिए था ना।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: इस टाइम कितने बकरे ना
1: इस टाइम भाई 12 बकरे ने।
0: खरे बड़े बड़े हो यो,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: इन्हें क्या खुराक क्या पानते तो हाँ जी गोड
1: खुराक
0: फार्मिंग
1: भाई
0: करनी
1: जी, इन की सोयाबीन पानी, जौ पाने, फिर चने
0: रोज ही पाने
1: रोज ही पाते, चने माँ
0: ये सब पीते होंगे या
1: ये
0: दर्ड
1: मिक्स
0: होंगे?
1: कर लेने पी लेने, फिर ये सोडा पाना, नमक पाना, फिर गुड़ पाना, फिर ये मिक्स करके ना फिर खुआना नहीं।
0: अच्छा मिक्स करेंगे तो हाँ इन्हें सारी चीजें जो कुछ एक ड्रम में
1: हाँ, एक ड्रम च पाई
0: जब
1: लेने
0: पाई
1: इकट्ठा करके।
0: लिया
1: हाँ जी,
0: ना
1: हाँ जी,
0: फिर 10-15 दिन खुआंदे रहा ना,
1: हाँ, फिर तो पाई के महीना पर खुआते रहे जितना मर्जी, दोबारा फिर बनाई ले।
0: ये कितना के दाना पाना पौंदा है वजन हिसाब से करना?
1: भाई जी, ये बड़ी नस्ल के बकरे होंगे ना, ये
0: हाँ
1: उतना
0: जी
1: ही खाते अपने हिसाब से, थोड़ा ही खाना इन्होंने,
0: अच्छा
1: अपने आप ही हट जाते साइड च। अपनियां
0: अच्छा
1: जड़ियां लोकल बकरियां नहीं, वो तो जब तक पेट फुल ना फट ना जाए वो तक खानी रहनी है,
0: अच्छा
1: ये नहीं है, ये बड़े अरमान ना खाते, थोड़ा खाते इन्होंने, खाना है उतना 100 ग्राम 200 ग्राम
0: तो प्यागा पानी खराब ही समझा
1: शामी, सवेरे खराब कर दीजिए।
0: और दे टाइम में ना।
1: हाँ शामी बस,
0: अगर ऐसा मन नहीं जाता ना कि जी अनाज वगैरह खुवाई के बकरियां जी पानी पूनी पियाने में परहेज
1: फिर
0: होता ना।
1: अपने आप कई बार पी भी लेनी है ना,
0: हाँ
1: तो फिर खराब कर दो।
0: बाकी जी नमक वगैरह कि दें इसी चीज की
1: नमक
0: अलग
1: ये मिक्स कर देना,
0: अलग तीन देना ना।
1: नहीं, ये मिक्स कर दो, 40 किलो है ना,
0: हाँ
1: जिदा 40 किलो का गाढ़ा होया थोड़ा,
0: हाँ जी
1: तो वो कोई 2 किलो पाइता नमक। हाँ
0: अच्छा
1: जी, फिर
0: अच्छा
1: सोडा पाइता भी थोड़ा 200 ग्राम सोडा है, पचाई जाता ना फिर,
0: का इन्हें राती भी तो हाँ पांदे
1: राती नहीं पाते दिन ही पाते।
0: जड़ा चुगे आए है
1: हाँ
0: ना
1: जी, हाँ जी,
0: चुगी लिया बना पेट भरी लिया ना,
1: हाँ, जरा देना खाई ले वही,
0: बाकी ने रहने ताइया क्या बनाया जी
1: रहने
0: हाँ
1: ताई भाई जी, इन्हें ना अजय पूरा मेरा जगाड़ नहीं होया, ये बताना है मैं थोड़ा ही है, मैं एक बनाया
0: हाँ
1: जिदा बरामदा पर वगैरह बनाया बाहर ते अंदर रात नूं उड़ने ताई, तो ज्यादा हूं मैं बधाने ले बैठे हाँ,
0: हाँ
1: बधाना है वो जिदा ना बदे जाना तो उदा बधाई जाना,
0: खुली हवादार जेड़ा से चाहिए बहने
1: फिर
0: ना।
1: हाँ बाहर हवादार चाहिए ना।
0: हाँ कहना बाकी जी जिसी बोलते ना बकरी जड़ी है ये 22 प्रकार दी जड़ी बूटियां खांदी है ना, कहना 22 प्रकार दिया जेड़े से बीमारियां ऐसा दूध जेड़ा से दूर भगांदा है ना,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो जी तुहां दस्या है इतना दूध होंदा दूध भी तुहां बेचिया?
1: दूध बेचते नहीं जी,
0: अच्छा अच्छा
1: बच्चे पै जाना, पर जरूरत पै जाए पई जाए, जिया पे कोई
0: कि
1: बीमार शिमार हो ले
0: हाँ
1: जो,
0: हाँ चलो ये भी आपसी जी भाईचारा भी होंदा
1: हाँ
0: है ना,
1: भाईचारे चले जाते
0: कहना
1: बंदे।
0: अगर उसकी जरूरत है ता ही बेचारे को कि उम्मीद
1: हाँ
0: करी
1: जी,
0: गया
1: हाँ
0: ये
1: जी,
0: होंदा ना कि

0: कुछ भी नहीं हो रहा, अंगणे से दूध मिल
1: तो दूध
0: सकता
1: मिली जाता
0: है ना, बकरी पालन का काम तो हाँ करा कर ले, इस बीच जी कभी कोई परेशानी वगैरह भी होती नहीं, कोई बीमार बमूर तो नहीं हो
1: बीमार
0: जाता?
1: वगैरह होनी है बिच, पर मेरा सर्कल थोड़ा ठीक है स्टार्टिंग दे बिच ही।
0: हाँ जी
1: अपने जेडे अरस दे डॉक्टर है ना,
0: हाँ,
1: डॉक्टर ते डॉक्टरनी वगैरह बहुत अच्छी है, उन्होंने पहले ही बीमा वगैरह करते हैं।
0: एक बकरी का क्या बीमे हिसाब होता,
1: एक बकरिया देंदे है वो 5,000 रुपया,
0: कहना फीस कितनी लेंदे है बीमे करने टाइम में
1: फीस 150 रुपया
0: साल
1: लेंदे
0: दी?
1: एक साले दी। उन्होंने 150 रुपया कट्टे है मेरे सारिया बकरिया का, दस
0: अच्छा
1: बकरिया बीमा किता,
0: अच्छा
1: तो वो मेरी मरिया भी तो पैसे देते मैं
0: चलो
1: उन्होंने।
0: थोड़े बहुत मिली ही है
1: हाँ
0: ना, बाकी जी घरेलू स्तर पर ही है कुछ ऐसा आई या तो हम आपको भी लगा लेते हो ना टीके वगैरह है ना,
1: हूं तो थोड़ा नॉलेज भी हुई है ना,
0: है ना?
1: ज्यादा तो कांगड़े दे भी तुम्हें पता भी 100 बूटियां है, बंदा घिसदा पिटदा रहता तो फिर पता लग जाता
0: हाँ
1: क्या
0: जी
1: खुआना क्या नहीं खुआना
0: बिल्कुल, हाँ जी
1: मौसम
0: हाँ
1: के हिसाब ने। नए
0: क्या,
1: नए बंदे के तो मुश्किल हो जाते ना,
0: हाँ जी
1: धीरे धीरे धीरे पता लग जाता ये बीमारी चलनी है ये बीमारी चलनी है, तो फिर 50 तो दवाइयां घर बिच निकल जानी है।
0: हाँ। बाकी कोई बकरी और कोई खास तो नहीं जी, कोई कि चीज कोई खुआने वाला होता जी जिससे तो पाचन शक्ति वगैरह बनी रहा करना?
1: नहीं, ज्यादा नहीं कुछ भी।
0: अच्छा ये है कि बढ़िया दिन का घा पट्ठा जड़ा से
1: हाँ घा
0: होना
1: पट्ठा साफ सुथरी जगह हुए।
0: बहने इतने है ना,
1: हाँ जी हाँ जी
0: कहना पीने पानी खूब
1: पानी
0: जड़ा
1: पीने साफ हुए।
0: जी। तो हाँ जिक्र किया कि इस वेले जड़ा तो हाँ वाल है ब्रीडर है ऐसा क्वांटल दे लगभग ये इसकी ज्यादा है
1: इससे
0: ना,
1: ज्यादा है
0: तो मारा वगैरह तो नहीं
1: नहीं
0: पौंदा?
1: पौंदा हमारा, वो तो बड़ा शरीफ है,
0: अच्छा
1: तुम बैठी जाओ पाओ ऊपर कुछ नहीं
0: अच्छा
1: बोलता,
0: हाँ, तो इतना जिया जिसे बोलते हैं ताकतवर
1: बहुत
0: जैसे
1: ताकतवर है,
0: माड़ा मोटा था सा जिया
1: मारदा
0: बंदा
1: नहीं।
0: वे भी अंग वाला नहीं चली पोना ना।
1: हाँ बैठी जंदे बंदे, मैं ही बैठी जंदा।
0: अच्छा तो इसी ब्रीडर दिखना था बड़े दूर दूर जड़े से
1: हाँ
0: पशु पालक भाई होंगे होने
1: हाँ
0: हैं।
1: बंदे होंगे दूर, सलाह भी लेंदे बंदे जड़े
0: अच्छा
1: पालते हैं, सलाह भी लेंदे कि
0: हाँ
1: कियां रखनी है बकरियां क्या करना, तो सलाह तो देना पौंदी फिर।
0: देखा है अपने अनुभव होंगे जितने यहाँ कुछ ये बंड की
1: वही
0: ताई
1: ना।
0: कुछ की भला होना है।
1: हाँ जी हाँ जी कोई बच्चा लेके जाता जो कुछ लेके जाता तो 50 बारी पुछता यार मैं क्या खुआ, फिर फोन दे भी चीज पुछते भाई
0: हाँ
1: हूं क्या खुआ हूं क्या खुआ, तो
0: अच्छा
1: दसना तो पौंदा।
0: छोटा बच्चा अगर कोनी जिये पालने वास्ता लेना था कितने दिना तो हाँ देन जिये थोड़ी तो हाँ दी बकरी सुई पे ही था पड़ी आप भी दिना वाले तो
1: भाई
0: हाँ।
1: बच्चा कम से कम 4 महीने चाहिए, तीन
0: अच्छा
1: महीने तो दूध पींदा ही है बच्चा, तीन चार
0: हाँ
1: महीने फिर माँ का दूध नहीं मिलेगा तो फिर वो बच्चा ग्रोथ भी कितना करेगा, बिना दूध तो गर्मी आई जानी अंदर,
0: हाँ
1: फिर
0: जी हाँ
1: डॉक्टर को लेना तो
0: ओबरे
1: फिर
0: दूध नहीं है ना,
1: नहीं फर्क पौंदा ना।
0: मतलब ऐसा डाल ही खाना पैरू लगी पोवे है ना?
1: भाई जी माँ का दूध ना 100 बीमारियां मारता है,
0: बिल्कुल हाँ जी हाँ ठीक लगे तो हाँ जी हाँ, यानी कि डाल ही खाना अगर हाँ था छेलू पैरू लगी पोवे
1: हाँ जी हाँ जी
0: इससे बाद अगर हाँ चाह तो खरीद सकते हैं ना,
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो किन्ना किन्ने तक आई जाता अगर कोई लेना हुआ तो हाँ ते
1: चार
0: या
1: महीने तक बच्चा ऑटोमेटिक 10-12 हज़ार का हो जाता, 10-12 हज़ार का बच्चा हो जाता, 4 महीने का बच्चा 15-16 किलो तो हो जाता,
0: यानी कि
1: फिर
0: ये तो फिर वजन दे पैसे
1: वजन
0: हुए
1: दे पैसे हो
0: है ना
1: जाता।
0: बाकी नहीं हुए है
1: इस तो
0: ना?
1: छोटा बच्चा कोई पाले भी है ना तो पालना नहीं, उन टाइम ज्यादा लगना, जिन्ना बच्चा बन गया होगा ना बनी ही होगा थोड़ा, तो फिर वो अगे ग्रोथ ज्यादा होनी होगी, जो माँ का दूध देने मिलेगा तो फिर बच्चे ने चलना भी कहीं।
0: जी तो हाँ जल अपना जी जल भी तो हाँ अपना कोई जिया बकरी बेची है या छेलू बेचे है या सही है चीजा बाहर का अंदाजा इन लगाते
1: लगी
0: हैं
1: जाता बाहर
0: कि
1: का
0: कोई तोलने तालने का भी आया कुछ?
1: नहीं, लगी जाता बाहर का अंदाजा ना
0: हाँ
1: पता लगी जाता। हाँ भी है ना फोन ना भी देखते रहने हैं ना,
0: हाँ
1: तो फोन ना भी देखते रहने तो सर फोन ना दे बिच ना बड़े बड़े फार्मा बिच सर
0: हाँ
1: मीटर दे कन्ना नाप दे छेलू में लंबाई चौड़ाई नापी
0: अच्छा
1: के ना ना।
0: फीते ने
1: हाँ फीते ना पूरा पूरा दस देना, तो एक
0: हाँ
1: दो बार अं भी इं नापिया तो पूरा पूरा ही आंदा।
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: यानी कि तेरी लंबाई ना बनेगी हाइट?
1: लंबाई नापनी ते पिछले हिस्से की गुड़ाई
0: अच्छा
1: पूरा पूरा
0: यानी
1: आई
0: कि
1: जाता।
0: फीता मारी गई है
1: हाँ
0: ना?
1: जी हाँ जी
0: हाँ दिखा ये भी तो हाँ बड़ी अच्छी गल जेड़ी शायद
1: फिर
0: दसी है।
1: पूरा पूरा आई जाता।
0: हाँ कई बार नहीं भी पता लगता ठगी भी
1: हाँ
0: आंदे
1: जी हाँ
0: कई
1: जी
0: है
1: हाँ
0: ना, नहीं कुनी आके दो ठार किट्ठे बेचे ने चार कई बार मजबूरी बिच बेचना भी पौंदे है ना,
1: जी
0: पैसे धेले दी चलो तंगी आई जाती है यानी कि सा ठगो नहीं तो सब इं जागरूक हो तेना जो जरा सा पूरा पता लगी जाना ना।
1: हाँ जी हाँ जी फीता मारना ना फीते दे पूरा आ जाता, 1 किलो 2 किलो वजन घटता वधदा है
0: अच्छा
1: बाकी नहीं वधदा। हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: जी अश्विनी जी आहांदे जेड़े नौजवान युवा साथी है ना उन जो तो हाँ जड़ा सा क्या संदेश देना चाहेंगे कि सभी कियां अपना काम कार करेगी अपना रोजगार चलाई पान?
1: भाई जी मैं तो यो बोलना कि मैं भी बाहर नौकरी की,
0: अच्छा
1: 15-16 साल नौकरी की बाहर, मशीन चलाता हमें जेसीबी,
0: अच्छा
1: फिर दूजे वाल काम करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। अपना घर बंदा काम करे ना
0: हाँ जी
1: उस काम के कन्ने साढ़े घर दे बिजी हो जाते,
0: हाँ जी
1: बच्चे बिजी, जिन्ने च 5 मैंबर तो 5 मैंबर हेल्प कर दे एक दूजे की,
0: हाँ जी
1: तो काम वही करो जो घर बैठ के हो जाए मिल के, तो काफी फायदा मेरे को दिखाई दिया ना।
0: हाँ जी
1: घर में बैठ के खेती बाड़ी करनी वो अच्छा है बाहर भटकने से
0: हाँ जी
1: फैक्ट्रियों में लगने से, सबसे अच्छा है घर में काम करना।
0: अश्विनी जी अपने खेती बाड़ी के अनुभव तो हाँ अहाँ करना साझा किए तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों तो तुहां टियाले पर हुण सुनी जानकारी और इस जानकारी कने तुहां जरूर लाभ लेना है, कोई भी काम जेड़ा से छोटा बड़ा नहीं हुंदा।

0: बस ये है कि बोलते ना हत्था दी मेहनत करना चाहिदी है, कने अहां जेड़ा ऐसे बहुत अच्छी आमदनी जेड़े ऐसे कमाई सकदे हैं।
1: बिल्कुल, कने बड़ी शैल गल इन्हें दसी कि छल्लू भैरू ने अहाँ कितनी बड़ी आमदनी जी असें करी सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: बशर्ते
0: जी,
1: कि सानू पता होना चाहिए कौन दी नस्ल जी उस ज़्यादा फायदा है, किस किस्म का जरा ऐसा चारा दाना तेरे जो खिलाना है, ऐसे सारी जानकारी जी असें ले लीजिए। कने अहाँ गलांदे भी रहेंगे कि जरा काम शुरू करना है उस बच्चे प्रशिक्षण जरा ऐसा जरूर ले के जरा ऐसा काम शुरू करना चाहिए। कने जरा उत्पाद अहाँ खेतर तैयार करते हैं या आपू पालते हैं तो सह कुथू बेचना है, सह भी सानू जरूर जरा ऐसे ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। कन्ने प्यारू जी दिखा होना, मुझे लगा था कि मौसम की जानकारी जड़ी है से हाँ अपने किसान भाई बहना कने करी दिन साझ है ना।
1: बिल्कुल, कने जी धर्मशाला के तापमान की गल की जाए तो अधिकतम तापमान रहे 19 डिग्री सेल्सियस, कने न्यूनतम रहा 17 डिग्री सेल्सियस, कने
0: जी
1: बरखा जी असें आने की संभावना जी असें बरसात होने तो आनी है।
0: लोनी है
1: कने चंबा
0: जी,
1: की गल की जाए तो ज़्यादा तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, कने घटते घट रहा 19 डिग्री सेल्सियस,
0: जी
1: कने उन्हां दा ज़्यादा तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस, कने घटते घट रहे 27 डिग्री सेल्सियस, कने मंडी का अधिकतर तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस, कने घटते घट रहे 23 डिग्री सेल्सियस, कने बरखा की जी संभावना है छिटपुट
0: बनी
1: बरखा
0: हो
1: भी हो,
0: कने
1: यानी कने बरखा जी असें बरसाती का मौसम इस वेले जरूर जरा है खेती बाड़ी के काम कार उस हिसाब ने जरा ऐसा करना चाहिए।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। कने दिखा किसान साथी हो, बरसात च पशुओं च होने वाले बड़े सारे रोग होंगे जिन्हें दे बारे च सानू थोड़ा बहुत जरा ऐसा जानकारी होना चाहिए है। गलघोटू की गल करते हैं तो तेज बुखार कने सह लैने जी है पशु जो तकलीफ होंगी है, गले च सूजन कने अचानक इसकी मृत्यु हो सकती है।
1: जी
0: इसे कने दिखा लंगड़ा बुखार भी होंगे, मांसपेशियों च इस सूजन आई आती, कने तेज बुखार हो जाता, कने लंगड़ापन जरा ऐसे पशुओं च दिखने जो मिलता है।
1: जरा गलांदे खुर पका कने मूँह पका, मूँह बिच छाले खुरां च घाव, कने लार टपकाना जाना चारा खाने बिच परेशानी होंदी से
0: जी
1: जरूर जरा सानू पहचान
0: दिखना
1: होना
0: चाहिए
1: चाहिए
0: बिल्कुल।
1: जी पशु।
0: इस दे कने प्यारू जी दिखा कृमि जड़े होंदे, मतलब कि पेटां दे पेट च जड़े कीड़े पौंदे हैं, इस कने भी दिखा पशु दा वजन जड़ा ऐसे घटी सकदा है, पशु साड़ा कमजोर हो सकदा है, दस्त इसी लगी सकदे हैं, कने दूध जड़ा उत्पादन है इस च भी कमी आई सकती है।
1: बिल्कुल
0: तो ये सारे रोग जड़े हैं इन्हां दे बारे च सांझो अगर थोड़ी बहुत पहचान होगी अहां अगर पछाणी लेंगे तो तहां इन्हां दा रंगे दा टाइमे दा जिहड़ा ऐसे उपचार करवाई लेंगे। कने बचाव वास्ते दिखा तुहानू पशुओं दा समय पर टीकाकरण जिहड़ा जरूर करवाना चाहिदा है, पशुशाला जिहड़ी ऐसे अजकल साफ रखना चाहिए है, सूखी रखना चाहिए है ना, कने गंदा या फिर गला सड़ा चारा जिहड़ा है से कने दूषित पानी जिहड़ा ऐसे अजकल जिहड़ा ऐसे पशुओं जो नहीं देना चाहिए
1: बिल्कुल,
0: है।
1: कने सदा ही साफ सुथरा कने ताज़ा पानी पशुओं जो उपलब्ध कराना है, कने नियमित रूपे कने कृमि नाशक दवा पशु चिकित्सक दी सलाह लेने जड़ा उसका प्रयोग करना है। कने जियां जूं चिचड़ पीथड़ वगैरह या मक्खियों
0: जी
1: की रोकथाम वास्ते उत्तम उचित दवाओं का जड़ा ऐसा प्रयोग करना चाहिए।
0: कने अगर कोई पशु थोड़ा बीमार है तो इस पशु जो जड़ा ऐसे बाकी पशुओं से थोड़ा जहा अलग रखना शुरू कर देना चाहिए, मतलब कि ना जो सोगी नहीं रखना ताकि जड़ा सोगी और पशु है इसी कोई संक्रमण ना हो सके।
1: बिल्कुल, कने तुरंत चिकित्सक कने संपर्क करना चाहिए, पशु चिकित्सक से सलाह लेने जड़ा उस तरीके से जड़ा ऐसे सावधानी अपनानी चाहिए
0: बिल्कुल
1: ताकि इतना जो टाइमे पर अहाँ इलाज करी ने अपना पशुधन का स्वास्थ्य जड़ा उस तो बढ़िया बनाई के रखी सकन।
0: बिल्कुल। कने दिखा इन्हां गल्लां बातां कने हुण जिहड़ा है इस टियाले पर फ्री ते समय हुआ करता है लोक झनकार दा, तां हुण आ सुनना है कने तुहानू भी सुनाना एक प्यारा जिहा लोक गीत।
1: जी बिल्कुल।

केसरो जी, इसी कन्नै कार्यक्रम खेतीबाड़ी दा जिहड़ा समय है इत्थे संपन्न होकर दस्सीए। कार्यक्रम विच तकनीकी सहयोग रहा विकास पठानिया, कन्नै प्रस्तुति डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह दी, कन्नै उनां दे खेत खलां दे साथियों दी अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार जल्द लागू करेगी नई उद्योग नीति, उद्योगों को उपलब्ध करवाई जाएगी सस्ती बिजली। संसद का मॉनसून सत्र कल से, सरकार ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते बंद किए हजारों संस्थान। नाहन शहर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु हुए शामिल। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी वर्षा का अलर्ट।

0: शासन ने लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द नई औद्योगिक नीति लाएगी। उद्योगों की सुविधा के लिए इस नीति के तहत बिजली दरों को कम रखा जाएगा। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आईटी क्षेत्र को विस्तार देने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रहा है। इसके अलावा सरकार डेटा स्टोरेज अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है।
1: अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिन्यूअल पावर कहीं मिलेगी तो हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन में अगर कोई आने वाले समय में पायनियर स्टेट बनेगा, जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहां हिमाचल ग्रीन एनर्जी में आगे बढ़ेगा। हमने उसके लिए रिसर्च काम किया है, अभी हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। आईटी सेक्टर में हमारे पास लैंड भी है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हिमाचल के लोग हैं, आप आईटी सेक्टर में आइए, 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। हमारी न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी आ रही है, हम बिजली का रेट कम करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों और औद्योगिक क्षेत्र दोनों को लाभ मिलेगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलाने के उद्देश्य से सरकार नवीन कदम उठा रही है। इसी कड़ी में वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत जिले के विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलाने और रोजगार सृजन के प्रयासों को गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इस पहल के तहत प्रदेश के 36 उत्पादों का चयन उनकी आर्थिक संभावनाओं, बाजार मांग और स्थानीय महत्व के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की आगामी औद्योगिक नीति में चिन्हित उत्पादों से जुड़े उद्यमों के लिए व्यापक प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चयनित उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन पर भी विशेष बल दिया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र के सुचारू संचालन में सभी दलों से सहयोग की अपील की है।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: ऊना जिले के बीत क्षेत्र में सन 1949 में स्थापित ऐतिहासिक लाजपत राय वाटर वर्क्स टालीवाल जलापूर्ति योजना को हेरिटेज म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने योजना का निरीक्षण करने के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के ऐतिहासिक पंप हाउस, मशीनरी, तकनीकी अभिलेखों और जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़ी धरोहर को संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि म्यूजियम के रूप में विकसित होने के बाद ये परिसर विद्यार्थियों, अभियंताओं, शोधकर्ताओं और आम लोगों के लिए ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला जिले में छैला नेरी पुल यशवंत नगर सड़क के लिए 250 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। चौपाल में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि केंद्र से धनराशि मिलते ही इस सड़क का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चौपाल क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए की लागत से 17 सड़कें बनना भी प्रस्तावित है, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने जनसमस्याएं सुनकर इनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आश्वासन भी दिया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि बीते 3.5 वर्षों में जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में संतुलित व योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया गया है। कोटखाई क्षेत्र के गुम्मा में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इलाके में सड़क, स्वास्थ्य व शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक

0: पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने केवल राजनीतिक द्वेष के चलते पूर्व सरकार द्वारा खोले गए संस्थान बंद किए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि 3.5 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में बताने के लिए सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की महिलाएं प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना के पैसे का इंतजार कर रही हैं, लेकिन सरकार आए दिन पात्रता की शर्तें बदलकर उन्हें गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर 2500 से अधिक संस्थान बंद करने, पूर्व सरकार की योजनाओं का बजट रोकने, 1.5 लाख से अधिक पद समाप्त करने और 10,000 से अधिक लोगों को नौकरियों से निकालने सहित किसानों, बागवानों व महिलाओं को ठगने के अलावा कुछ नहीं है। दूसरी ओर भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार रोजगार सृजन के बजाय रोजगार के अवसर लगातार समाप्त कर रही है। पार्टी महासचिव संजीव कटवाल ने कहा कि विभिन्न विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन्हें भरने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स सेवाओं पर भी कड़े प्रतिबंध लगाकर सरकार युवाओं के लिए उपलब्ध सीमित अवसरों को भी समाप्त कर रही है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज भगवान जगन्नाथ की 18वीं भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इनमें हिमाचल प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप और स्थानीय विधायक अजय सोलंकी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि हमीरपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की योजनाएं मंजूर की हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हमीरपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें हमीरपुर बाईपास पर नए बस अड्डे का निर्माण, वर्तमान बस अड्डे की जगह सिटी सेंटर विकसित करने का प्रस्ताव, नगर निगम कार्यालय भवन जसकोट में हेलीपोर्ट और सलासी में जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय भवन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। हमीरपुर नगर निगम के तहत विकास नगर में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से ये क्षेत्र एक आदर्श और सुनियोजित शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने सुनील शर्मा बिट्टू के समक्ष हैंडपंप और अन्य जनसुविधाओं से संबंधित समस्याएं रखी। सुनील शर्मा बिट्टू ने इन सभी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से कई क्षेत्रों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। राजधानी शिमला सहित कुछ अन्य इलाकों में बीती रात व्यापक वर्षा हुई है। कई क्षेत्रों में भारी वर्षा से नदी नाले उफान पर हैं। भूस्खलन के चलते चंबा शिमला वाया सिंहुता राजमार्ग पनियाला नाला में अवरुद्ध है, जिसे खोलने के लिए प्रयास जारी हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक विभिन्न जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का गंभीरता से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की टीमें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उपलब्ध हैं और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच मौसम विभाग के भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए सिरमौर जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपदा की स्थिति में तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया जा सके।
1: PWD, इलेक्ट्रिसिटी, IPH और हमारे जो लोकल बॉडीज हैं, सभी को हमने अलर्ट पे रखा हुआ है। हमारे सारे SDMs और हमारी रेवेन्यू टीम अलॉन्ग विद द अदर लाइन डिपार्टमेंट स्टाफ, एवरीबॉडी इज ऑन अलर्ट। जहां भी दिक्कत होगी तो प्रशासन वहां रहेगा, पर हमारी जनता से भी यही अपील है कि बारिश का टाइम है, अपना सेफ्टी का खुद ध्यान रखें और जब जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, और कहीं कुछ समस्या होती है तो 1077 पे डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा DDMA ग्रुप है उसमें हमें अलर्ट कर दें, हमें भी अपनी प्रॉब्लम्स बता दें, तो हम अपनी आवश्यक कार्रवाई करें।
0: प्रदेश के अन्य जिलों में भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार जल्द लागू करेगी नई उद्योग नीति, उद्योगों को उपलब्ध करवाई जाएगी सस्ती

0: बिजली। संसद का मॉनसून सत्र कल से। सरकार ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते बंद किए हजारों संस्थान। नाहन शहर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु हुए शामिल। और प्रदेश में अगले 48 घंटों में भारी वर्षा का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स, डीटीएच तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब रोजगार समाचार सुनिए। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बसंतपुर सुन्नी जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने हेतु आंगनवाड़ी क्षेत्र की सामान्य निवासी महिला उम्मीदवारों से दिनांक 4 अगस्त 2026 तक सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों को भरने हेतु आवश्यक पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार से हैं। इन पदों हेतु केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र होगी। अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के संग्रहण क्षेत्र अर्थात फीडिंग एरिया की निवासी हो व उसका परिवार संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज परिवारों की सूची में शामिल हो तथा परिवार में उसका नाम भी दर्ज हो। अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से न्यूनतम 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आवेदक की आयु आवेदन की अंतिम तिथि के दिन 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार अथवा तहसीलदार या कार्यकारी दंडाधिकारी स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया होना आवश्यक है। यदि कार्यरत आंगनवाड़ी सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन करती है तो उसके परिवार की वार्षिक आय की गणना में उसे आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में मिलने वाले मानदेय की गणना से छूट मिलेगी। आवेदक आवेदन पत्र के साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित छायाप्रति तथा 10वीं पास प्रमाण पत्र आयु प्रमाण हेतु और परिवार की वार्षिक आय संबंधी प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना ना भूलें। रोजगार समाचार समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
5: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम सबरस का। तो विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और आप सभी का स्वागत। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में ये गज़ल। उसूलों पर जहाँ आँच आए वहाँ टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आँच आए वहाँ टकराना ज़रूरी है। ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है।

राहत इंदौरी की ये शेर है। भले बर्तन रहे खाली पर तलवे नहीं चाटे हमने, इन महलों को अब उनकी औकात दिखाना जरूरी है।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आइए अब सुनते हैं रूना लैला को। हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, उजाले मेरे दर पे शोर मचाया करते थे, उसी दिए ने जला दिया मेरे हाथों को, जिस दिए को हम हवा से बचाया करते थे।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सतिंदर सरताज की आवाज में ये पंजाबी गीत।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। अभी आपने सुना अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में ये कलाम।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

कहां है भारत और कौन है भारत? प्रांत, प्रदेश, भाषाएं, वेशभूषा, प्रांतों के बीच की लकीरें, नदियां, पहाड़, कभी राष्ट्र की नजर से देखिए, लकीरें अपने आप मिटती दिखेंगी।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए।

0: और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी, बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि

श्रोतो, आज आप सुन रहे हैं एक ही शीर्षक के अंतर्गत प्रसिद्ध फिल्मकार प्रकाश मेहरा की द्वारा निर्देशित और फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत। हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्माता निर्देशक थे प्रकाश मेहरा। उत्तर प्रदेश

के विजनौर मैंशन में मेहरा ने 1950 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की छवि देकर सुपरस्टार बनाया था और उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर और शराबी फिल्म जो है वो शामिल हैं। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था और बहुत छोटी उम्र में माता पिता का साया उठ जाने के कारण उनका शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा। तो आइए सुनते हैं प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित एक और फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित व निर्मित कुछ फिल्मों के गीत। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में वे मुंबई चले गए और अपना फिल्मी सफर बतौर प्रोडक्शन कंट्रोलर उन्होंने शुरू किया। उनकी किस्मत तब पूरी तरह बदल गई जब उन्होंने 1973 में जंजीर का निर्माण और निर्देशन किया, जिसने अमिताभ बच्चन के करियर की दिशा ही बदल दी।
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just 9.52 lakh rupees.
0: Yes, rupees 9.52 lakhs. Offer valid till 31st July.
1: Own the style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available.
0: Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: अभी आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा द्वारा निर्मित फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
4: कल से शुरू हो रहा है इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
5: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मॉनसून सत्र, जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहां पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
6: देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारे कोशिश रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से, उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था लेकिन अब वो लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी हैं, अपनी पार्टियां बना ली हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड हैं कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को एक कानून पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से, और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए अपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करें और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, न कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, टीएमसी नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इससे उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, न कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
2: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
7: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं, पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई, जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि एथनॉल की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का सा जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ की भावनाओं से जुड़ी हुई है। नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, उन्होंने नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या? जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसी मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये स्थिति हो, आपने देखा होगा विकास की जो बात करें कितना भ्रष्टाचार क्या है लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें हाईवेज की बात करें वो मुद्दे हैं। और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार और जिसके बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते फिर सरकार भी चुरा लेती है। और एसआईआर का जो मुद्दा है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है वो ना निष्पक्ष है ना स्वतंत्र है ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों पर रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और हम ये समझते हैं, और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
2: सीपीआईएम से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मॉनसून सत्र में उठाने वाली है।
8: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की वो तमाम वापिस ले। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
2: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
9: देखिए, विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहाँ पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहाँ से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहाँ से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने एफआईआर रजिस्टर की। एक फर्जी एफआईआर, एक फर्जी एसआईटी का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे E20 भरवाना चाहे उसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं।

0: है, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा, ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे। यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
2: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देश हित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अब ये अपने आप ही गैप खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके, जैसे अभी आपके स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, पर उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे और जो लोग थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में है, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है जो भी इसमें चेंजेस के बाद है वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
3: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था, वो राजनीति है? क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो, ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले हैं, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है, और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है, और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं और SIT आपने गठन कर दिया, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है उन पे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ है जो दूर दर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है, जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की, 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता हम अगर

0: जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था निर्यात होता था उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो 0 अमेरिका का सामान आने पे होगा तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुनाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
1: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे, उस समय बिल पास नहीं होने दिया। फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजॉरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता, ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजॉरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
2: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि

0: फ्लाइट चेन में डिसरप्शन है, जब से ईरान इसराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई के दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए के सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे, और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखिए हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसकी वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या डिसरप्शन होता है, और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं, कभी उसी तरह से कभी इसमें तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आता है। बट ये सब टेम्पररी है, परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था, और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती हमने आम लोगों के लिए किया, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं, और इसलिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं, और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है, और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं, और लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है, और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
2: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहे हैं। जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक भाष हो, सार्थक बातें हो, और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
1: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
3: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया है इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका

0: भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? भाई प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पर जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आपका क्या संदेश होगा?
2: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं देश हित में काम करते हैं और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक

0: शिफ्ट में काम करो और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्य के और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। श्रीमती बालामणि ईश्वर कर्नाटक संगीतज्ञ मुसरी सुब्रमण्य अय्यर के परिवार से जुड़ी हुई हैं। आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता श्रीमती सुशीला रामस्वामी से प्राप्त की। आगे आपने त्रिशूर के श्री राम वर्मा संगीत विद्यालय से उच्च प्रशिक्षण ग्रहण किया। आप 1992 से आकाशवाणी मदुरई में संगीत कलाकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। संगीत यात्रा के अनेक पड़ावों को पार करते हुए आज आप ए ग्रेड की कलाकार हैं। श्रीमती बालामणि ईश्वर ने संगीतज्ञ त्रिचि श्री एस गणेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी कला की तकनीक एवं कौशल का गहन ज्ञान प्राप्त किया। आपने तमिलनाडु और केरल में अनेक संगीत सभाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं तथा संगीत प्रेमियों की अपार प्रशंसा प्राप्त की है। श्रीमती बालामणि ईश्वर त्रिचि एस गणेशन की कर्नाटक संगीत शैली में राग आलापना के लिए सुप्रसिद्ध हैं। पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से गायन प्रस्तुत करती आ रही श्रीमती बालामणि ईश्वर अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं।
4: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इन टुनाइट्स प्रोग्राम यू कैन लिसन टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। श्रीमती बालामणि ईश्वर hails from the lineage of renowned vocalist Musiri Subramanya Iyer. Initially, she learnt music from her mother, Srimati Sushila Ramaswamy. Further tutelage was from renowned musician Tiruchi Sri S. Ganesan. After completing Music Senior Certificate course from Thrissur Sri Rama Varma Music School, Srimati Balamani joined Akashwani Madurai in the year 1992. Acclaimed for her Raga Alapana style rendition, she has travelled extensively for performances. Srimati Balamani Ishwar is an A-grade artist of Akashwani and is the recipient of several awards and accolades.
3: आज के कार्यक्रम में श्रीमती बालामणि ईश्वर के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का शुभारंभ संत त्यागराज की रचना ब्रोव बारमा से कर रही हैं। राग बहुदारी पर आधारित ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
4: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट श्रीमती बालामणि ईश्वर इज अकॉम्पनीड बाय श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। द कॉन्सर्ट बिगिन्स विद ब्रोव बारमा कंपोज्ड बाय सेंट त्यागराजा इन राग बहुदारी सेट टू आदिताल।
5: ब्रोव

0: सुनेंगे मुथुस्वामी दीक्षितर की रचना शेषाचल नायकम, वराली राग और रूपक ताल में।
1: लिसन नाउ टू शेषाचल नायकम कंपोज्ड बाय मुथुस्वामी दीक्षितर इन राग वराली सेट टू ताल रूपकम।

विश्वासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एम के

0: अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। लीजिए अब प्रस्तुत है करहर प्रिया राग और मिश्र चाप्ताल में संत त्यागराज की रचना पक्कल निलपड़ी।
1: इंद रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी इज अकॉम्पनीड बाय परूर श्रीमती एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। लिसन नाउ टू पक्कल निलपटी, कंपोज्ड बाय सेंट त्यागराजा, इंद्रा करहर प्रिया सेट टू मिश्र चापुताल।

0: रचना के अंत में आपने सुना तनी आवर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रही हैं रचना मनदिर कुहंदद। सिंधु भैरवी राग और आदि ताल में रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की।
1: दैट वाज अ तनी आवर्तनम परफॉर्म बाय श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। श्रीमती बालामणि ईश्वर कंक्लूड्स द कॉन्सर्ट विद मनदिर कुगंदद कंपोज्ड बाय तंजावूर शंकर अय्यर इन राग सिंधु भैरवी सेट टू ताल आदि।

0: रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इन द रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा यू जस्ट हर्ड वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी वॉज अकम्पनीड बाय परूर श्री एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। Recorded in the studios of Akashvani Madurai, this broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष।

0: समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of Parliament and engaging in constructive discussions on key issues.
2: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let Parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed? That has to be decided in the Business Advisory Committee.
1: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people ties. The Union Ministry of Road Transport and Highways will develop over 160-kilometre long Rameshwar-Paradip Highway along Odisha's coast at a cost of over 8,000 crore rupees. The ministry said the project will transform Odisha's coastal region by improving road infrastructure and boosting tourism and economic activity along with spiritual journeys.